एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: FM 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
0: आस्था के स्वर।

अभी आपने सुना संवेत स्वर में देशगान। इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए सुनिए हरिहरन के स्वर में भक्ति रचना।

ये भक्ति गीत अभी आपने सुना जगजीत सिंह के स्वर में। इस समय आप सुन रहे हैं आस्था के स्वर। लीजिए अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी के स्वर में भक्ति गीत।

ये भक्ति गीत अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी के स्वर में। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण के स्वर में भक्ति रचना।

0: उदित नारायण के गाए भक्ति गीत के साथ आस्था के स्वर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
0: जी हाँ श्रोताओं, इस समय आप हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के साथ। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए चिंतन, निवेदक है चंद्रहास दलाल।
3: विश्वास हमारे दैनंदिन जीवन का आधार विश्वास है, जिसका कोई विकल्प नहीं। विश्वास किसी का किसी को नहीं है, फिर भी विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास का उद्गम आत्मा से है। आत्मा जिसे मान ले, स्वीकार ले, विश्वास की परिधि में आ जाता है। विश्वास अंतर में बैठी एक ऐसी गांठ है जिससे अधिक परिचय होकर अपनत्व छलक जाए, वह खुलती जाती है। विश्वास जन्म से मृत्यु तक गतिशील होकर समय समय पर अविश्वास के गलियारों में भटकता भी जाता है, कभी संदिग्धता के घेरे में भी आ जाता है। आदमी अपने निजी जीवन में, घर परिवार समाज में बहुतेरे संबंधों के प्रति जीता है। माता पिता, बंधु बांधव, मित्र गुरु आदि ऐसे संबंध हैं

0: की बुनियाद विश्वास पर ही है। जन्म लेने पर किसे मालूम है कि उसके माता पिता कौन है? सार्वजनिक विश्वास उसे माता पिता का बोध करा देता है और अंतिम क्षण तक बना रहता है। गुरु पर विश्वास भी ऐसा ही जीवन गढ़ता है। स्कूल के प्रथम दिवस शिक्षक पढ़ाता है अ अनार का। यदि विद्यार्थी उसे मानने से इनकार कर कहे अ ऐसा नहीं, तब शिक्षक क्या कहे? संपूर्ण जीवन के अर्जित विश्वास को बटोर कर पहले दिवस ही शिक्षक उस बालक को अ अनार का सिखा देता है और बालक का जीवन प्रारंभ हो जाता है। विश्वास ही गतिशीलता है, बहता पानी है, प्रगति है। अविश्वास हुआ नहीं कि सब कुछ अवरुद्ध होकर संदिग्धता पल पल पर भ्रमित कर बाधक बनती जाती है। अतः विश्वास ही एक ऐसी बुनियाद है जिस पर खड़ा होते आ जाना चाहिए। क्षण क्षण ऐसा घटता रहता है जहाँ संशय आ ही जाता है। यह खेल संसार के किसी रिश्ते से अछूता नहीं है, किंतु एक रिश्ता ऐसा भी है जिस पर विश्वास यदि हो जाए तो वह कभी टूटता नहीं, वह है ईश्वर पर। परंतु उस पर भी विश्वास इतना आसान नहीं कि उससे भरोसा बन जाए। जीवन के अनगिनत थपेड़ों के बाद वह केवल बोलचाल में आता है। रोज कहते रहते हैं भगवत इच्छा, इंशाअल्लाह, पर यह बोलचाल में आम बात है। एक रोज जब वह अर्थगम्य हो जाता है तब इसका वास्तविक आनंद अनुभूत होकर जीवन निर्बाध गति से बहने लगता है। यदि विश्वास की पैठ अपने अंतर की गहराई से हो तो वह कभी करवट नहीं बदलती। आइए विश्वास को समझ लें कि बोलचाल में हम कैसे बोलते रहते हैं और अंतर में वह कैसे उतारते हैं। अंतर में उतरता है यदि कथनी करने में साम्य हो। कथा श्रवण कर रही गोपी ने श्रवण किया, कृष्ण कृष्ण मन से चित्त से स्मरण करें, भवसागर तर सकते हैं। कृष्ण और भवसागर पार लगाने वाला सुनकर गोपी की आस्था श्री कृष्ण की ओर मुड़ी। कृष्णमय चिंतन भवसागर पार कराने के लिए दृढ़ से दृढ़तर होता गया। वह नित्य सवेरे उस पार माखन बेचने को जाती थी। आज यमुना पार करने के लिए नाव की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि उसे भवसागर पार कराने वाला कृष्ण इसी पार मिल गया था। सोचा, कहाँ भवसागर और यह यमुना, चलो कृष्ण यमुना पार चलें। और वह नदी में आगे बढ़ी। प्रत्येक कदम पर गहराई बढ़ती जा रही थी। घुटने, उससे ऊपर कमर, वक्षस्थल, गला, परंतु वह घबराई नहीं। गोपिका का तो एक ही आश्रय था, कृष्ण। अंतर मन से कृष्ण का स्मरण ही नहीं, उस पर आचरण भी। कृष्ण ने समझ लिया, यह गोपिका तो मेरे नाम के परम विश्वास के साथ बढ़ती ही जा रही है। यदि अब रक्षा नहीं करूँगा तो उसका विश्वास खो जाएगा। जैसे जैसे गोपी बढ़ी, कृष्ण चट्टान सदृश बन आगे होते गए। गोपिका पार उतर गई। यह क्रम नित्य का हो गया। रोज गोपी आती और कृष्ण नदियाँ पार करा देते। बहुत दिन हो गए, गोपिका को सुधि आई। अरे मैं कैसी बांवरी, वे पंडित जी जिसने कितना सच कहा था, मैं तो उन्हें भूल ही गई। क्यों न मैं उन्हें अपने घर बुलाकर यथोचित सम्मान करूं, भोजन प्रसाद दिलाऊं। गोपिका ने स्नेह से आग्रहपूर्वक पंडित जी को निमंत्रित किया। निश्चित तिथि पर गोपिका पंडित जी को लिवाने गई। गोपिका आगे, पीछे पंडित जी। पीछे आते पंडित जी की ओर देख यमुना में कृष्ण कृष्ण कह गोपी उतर गई। पंडित जी भी उतर तो गए, किंतु अनुभव किया कि पानी गहराता जा रहा है। गोपिका निर्बाध बढ़ती जा रही है। पंडित जी को लगा कि अब समय करीब आ गया है, यदि वापस होते हैं तो प्रतिष्ठा और आगे अंत। पंडित जी ने सोचा, क्यों न हरि नाम लेता मरूं। हे कृष्ण, अंत पुकार हरि ने सुन ली। पंडित जी पार उतर गए। पंडित जी हरि नाम की कथा तो रोज कहते थे, हरिस्मरण का अनुभव उन्हें आज हुआ। उन्होंने समझ लिया कि गोपिका का गहरा विश्वास है, मैं तो मात्र कथा वाचक। प्रेम से भोजन प्रसादी पाकर विदा समय गोपी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उसे अपना गुरु मान लिया। बिना स्वार्थ के लिया नाम व्यर्थ नहीं जाता, समय पर चट्टान बन जाता है, पंडित जी ने जान लिया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर हमें विश्वास के दर्शन होते हैं। मीरा ने विषपान किया, भरी सभा में द्रौपदी की लाज बची, नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकारी, तो प्रहलाद, ध्रुव ऐसे चरित्र हैं जो विश्वास के प्रति विश्वास दिलाते हैं। एकलव्य का विश्वास, सब कुछ जानते हुए भी अपने द्वारा बनी मिट्टी की मूर्त में द्रोणाचार्य की आस्था, विश्वास का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें उस विश्वास में बांधता है। विश्वासस्य फलदायकम्।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख था चंद्रहास दलाल का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज का

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग, स्वर था ए हरिहरन का। FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए कृषि चर्चा, वर्षा जल संचयन

0: वाचक स्वर है स्मिता बरोले का।
1: भाई बहनों हुनी राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे वर्षा जल संरक्षण। वाचक स्वर स्मिता बरोले। भाई बहनों हुनी फसल उत्पादन के लिए उपजाऊ मिट्टी, पोषक तत्व न पानी आवश्यक छे। प्रकृति न हमख पर्याप्त मात्रा में पानी दियोज। वर्षा द्वारा प्रतिवर्ष 7 से 12 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर पानी जमीन पर बरसज। अगर ई पानी का समुचित संरक्षण किया जाए तो पानी की हमख कोई कमी नहीं होएगा। पानी का बहाव से न केवल जल बल्कि ओका साथ साथ उपजाऊ मिट्टी को भी क्षरण हुई जाए। न एका लेना खेत न सभी क्षेत्र में पानी ख बही कर नष्ट होने से रोकने का लेना प्रयास करनु होएगा। खेत में खड़ी फसल वर्षा का द्वारा होने वाली मिट्टी क्षरण का रोकने के लिए एक कवच को काम करज। फसल की जड़ मिट्टी ख बांधने को कार्य करज। न वर्षा जल ख जमीन में रिसना ख सुलभ बनावज। अतः खेत व आसपास की जमीन में वैज्ञानिक तरीका अपनाई न जल व मिट्टी को संरक्षण न जल संवर्धन उकासी होएगा। एका लेना हम ई उपाय करी सका। पहलो छे भूमि प्रबंधन। एका लेना गहरी जुताई आवश्यक छे। गहरी जुताई से जमीन में जल रिसना की क्षमता में वृद्धि हो क्योंकि ये भूमि की निचली सतह ख भेदी देज। एकासी जल प्रवाह में कमी भी आवज। फसल की उपज भी बढ़ी जाए। एका बात छे गर्मी की जुताई। वर्षा जल से पहले यदि गर्मी का मौसम में जुताई करी दी जाए तो भूमि अधिक पानी सोखज। अब हम बात करें जुताई की संख्या का बारा में। आमतौर पर किसान भाई ज्यादा से ज्यादा जुताई करी ख मिट्टी ख खूब भुरभुरो बनाने में विश्वास रखज। किंतु एकासी मिट्टी को क्षरण बढ़ज, उपलब्ध नमी भी खत्म हुई जाए। एका लेना पैदावार को ध्यान रखी कर जुताई कम से कम करनु चाहिए। अब हम बात ढलान का विपरीत जुताई का बारा में। समतल व बिना जुते खेत की अपेक्षा जुताई की हुआ खेत से पानी को निकास धीमो होज। वर्षा होना से पहला ट्रैक्टर या बैलन से हली न बखरी कर ढलान ख विपरीत दिशा में यानी आड़ा चलाई कर जुताई करनी चाहिए। एकासी पानी को बहाव में अवरोध हुई जाएगा न पानी ज्यादा देर तक खेत में रहेगा न धीमी गति से एको निकास होएगा। अब हम बात करें फसल का प्रकार का बारा में। आच्छादन फसल। अनाज फसल जैसा की मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास आदि फसल न सीधी ऊपर की ओर बढ़ज। भूमि ख थोड़ो ढकी दे। अच्छी उपज के लिए लाइन से लाइन की दूरी अधिक रखी जाए। एकासी मिट्टी क्षरण ज्यादा हो और जल बहाव की मात्रा व वेग ज्यादा रहे। जबकि दलहनी फसल जैसो की सोयाबीन, घास आदि जमीन काफी समय तक वर्षा का मौसम में ढकी न रखज। न जड़ का अपेक्षाकृत अधिक फैलाव मिट्टी ख बांधी रखज। जेकासी वर्षा जल की गति कम होकर मिट्टी को क्षरण कम हुए। अब हम बात करें फसल की जड़ का प्रभाव का बारे में। पौधा की जड़ का जाल मिट्टी का अच्छी तरह से बांधी न रखज। न जल खरिसना को मार्ग तैयार करज। साथ जड़ सड़ना पर भूमि को पोलोपन अरु भी बढ़ी जाए न मृदा संरक्षण में सुधार भी होए। अब हम बात करें फसल प्रबंधन का बारे में। तो किसान भाई फसल चक्र अपनावा। मिट्टी की विभिन्न परत न की उर्वरा शक्ति व जल को सही उपयोग अधिक लाभ फसल सुरक्षा व वर्षा की कमी का निदान हेतु फसल चक्र ख किसान भाई अपनाई सकज। हर वर्ष एक जैसी फसल लेना सी फसल में विशेष कीट न रोग न को प्रकोप बढ़ना लगी जाए। फसल चक्र में भूमि को कटाव अवरोधक फसल जैसा कि घास तिलहनी दलहनी फसल न आदि को पूर्ण समावेश करनु चाहिए। पौधा की प्रति हेक्टर सही संख्या व पौधा अरुपंक्ति की उचित दूरी रखना सी मिट्टी की नमी उर्वरा शक्ति व प्रकाश को उचित उपयोग होएज। न जेकासी उपज में वृद्धि भी होएज। खरीफ मौसम में फसल की बुआई जितनी जल्दी करी सका किसान भाई उतना अच्छो रहेज। एकासी फसल आच्छादन जल्दी बढ़ेगा जो कि जल व मृदा संरक्षण में सहायक होएगा। अग्रिम बुआई से फसल जल्दी पकी जाए। जेकासी वर्षा अगर जल्दी बंद हुई जाए तो मक्का फसल ख पानी की कमी महसूस नहीं होती हुई। अब हम बात करें पलवार यानी मल्चिंग का बारे में। फसल की कतार का बीज घास पुआल भूसा कड़वी पत्तियां खाद कागज पॉलीथीन आदि बिछाना सी भूमि में नमी अधिक समय तक बनी रहे। खरपतवार भी नियंत्रित हो। तो भाई बहनों ये तो थी आज की कृषि चर्चा। राम राम।
0: अभी आपने सुनी कृषि चर्चा वर्षा जल संरक्षण। वाचक स्वर था स्मिता बरोले का। FM 101.2 MHz पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत जल की हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की

अब से कुछ ही देर में 7 बजे होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे श्रोता। इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे जिला बुल्ढाणा के हमारे श्रोता नारायण हागे और इनसे बातचीत की है श्वेता सोनी ने।

7:20 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। राग है कलावती, तबला संगति उस्ताद शफाद अहमद खाकी है।

0: सुनहरे पल कार्यक्रम में सुनेगा सदाबहार नगमे सुबह 7:30 पर। आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार है अदनान सामी। फरमाइशी फिल्मी नगमे सुनिएगा सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम है आपके मीत ये गीत। नौ बजे से लेकर 10 तक हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम। दस बजे सुनिएगा आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी। दस बजकर 5 पर सुनिएगा हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति है पंकज लाड़ की। सुबह 10:35 पर बच्चे सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल जगत। दिन में 11 से लेकर शाम 5:30 तक हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम। शाम 5:30 पर आनंद लीजिएगा निमाड़ी लोकगीतों का। युववाणी कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:00। आज का आकर्षण होगा क्रम हेलो फ्रेंड्स। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 7:21 पर होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम। रात्रि 8:15 पर हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। रात्रि 8:30 से 11 तक हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम। ये थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 और दोपहर 12:30 DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
2: FM बैंड 101.2 MHz पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
3: आज की ताजा खबर।

आज की ताजा खबर में प्रस्तुत है समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। रेडक्रॉस सप्ताह के अंतर्गत 2 से 8 मई तक जनसेवा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और जागरूकता से जुड़े विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शिवनेरी वैकुंठ नगर में रक्तदान के लिए गूगल फॉर्म का विमोचन किया गया। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा रविवार को शहर के 5 सेंटर्स पर होगी। इनमें एसएन कॉलेज, उत्कृष्ट विद्यालय, नेहरू विद्यालय, सूरजकुंड, एमएलबी स्कूल में कुल 1925 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। जनगणना के लिए शहर को 307 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में बांटा गया है। इस चरण में 1 मई से 30 मई तक मकानों के सूचीकरण और गणना कार्य को किया जा रहा है। आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार दस्तावेज सत्यापन 4 से 9 मई तक होगा। चॉइस फिलिंग अपडेट 11 से 16 मई तक और ऑनलाइन लॉटरी 20 मई को होगी।

उज्जैन सिंहस्थ 2028 के तहत ओंकारेश्वर में पार्किंग की समस्या से होने वाली परेशानी के निराकरण के लिए सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। अब खबर खेल की। खंडवा जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के 5 मई से शुरू हो रहे समर कैंप आरोह 2026 में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को 30 दिनों में खेलों की बारीकियां चरणबद्ध तरीके से सिखाई जाएंगी। इच्छुक प्रतिभागी 5 मई तक माय भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।

0: एक नजर मौसम के हाल पर। कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस। ये थी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। संकलन युवराज सिंह चौहान का।
1: आज की ताजा खबर।
2: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
2: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
3: क्यों?
2: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
3: वो कैसे?
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
3: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
2: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
3: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
2: आप कब आ रहे हैं?
3: आकाशवाणी खंडवा पर।
4: पीछे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
0: इस समय सुबह के 7 बजे हैं। निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से आप सुनिए कार्यक्रम हमारे श्रोता, इस संदेश के बाद।

0: नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हमारे श्रोता कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं जिला बुलढाणा के हमारे श्रोता नारायण हागे और इनसे बातचीत की है श्वेता सोनी ने।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, कार्यक्रम है हमारे श्रोता। इस कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हमारे नियमित श्रोता जिला बुलढाणा से नारायण हागे जी। नमस्कार नारायण जी।
3: नमस्कार मैडम।
2: नारायण जी, हम बहुत से कार्यक्रमों में आपका नाम सुनते हैं, लेकिन हमारे बहुत से श्रोता और हम खुद भी आपके बारे में जानते नहीं है, तो हमारे श्रोताओं को और हमें आपका पूरा परिचय दें।
3: मैडम, मेरा नाम नारायण हागे, मैं कोवट बकाल बुलढाणा जिला में रहता हूँ और मेरा जो परिवार है, पत्नी, दो बच्चे, एक बेटी है और एक बेटा है।
2: नारायण जी, तो बुलढाणा जिला में रहकर आपका खंडवा आकाशवाणी से कैसे जुड़ा हुआ, आपने कैसे खंडवा आकाशवाणी सुनना शुरू किया?
3: सबसे पहले तो मैंने दोस्तों से भी सुना कि आकाशवाणी में पत्र लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, पते लिए आजू बाजू श्रोताओं के, पत्र व्यवहार चालू हो गया है। सबसे पहला गीत मेरा आपकी पसंद में लगा, दूसरा आपके मीठे गीत, फिर वैसे सिलसिला चालू हुआ पत्रों का, अब इस तरह आकाशवाणी खंडवा में जुड़ गया है।
2: कितने वर्ष हो गए आपको आकाशवाणी सुनते सुनते?
3: कम से कम मैडम जी, मैं 1994-95 से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। मेरे पास रेडियो था मैडम
2: जी,
3: दिन का रेडियो था, मेरे पास दो रेडियो है अभी भी, तो वो रेडियो के माध्यम से सुनता था मैं। अभी तो मोबाइल पर भी, ऐप पर भी सुनता हूँ, रेडियो पर भी सुनता हूँ।
2: अभी आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं?
3: सबसे पहला कार्यक्रम मेरा फोन इन कार्यक्रम, फोन करे गीत सुने, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सुनने में और फोन करने में।
2: अच्छा।
3: दूसरा आपकी पसंद, आपके मीठे गीत, और सुनहरे पत्र उत्तर, सुनहरे पत्र उत्तर, ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुबह 7:20 पर चालू होता है और सुनने में बहुत मजा आता है।
2: कभी आपका पत्र शामिल हुआ है सुनहरे पत्र कार्यक्रम में?
3: बहुत बार शामिल हुआ मैंने।
2: अच्छा, और फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में आपका फोन शामिल हुआ या नहीं?
3: बहुत बार शामिल हुआ और वो 2 महीने के बाद भी मैं लगाता फोन, जो बताते कि बाद 2 महीने बाद फोन करो, तो वो भी जैसे रूल्स के हिसाब से चलता मैडम मैं भी।
2: बहुत अच्छी बात है, हमारे श्रोता हमसे जुड़े भी हैं और हमारे रूल्स को भी फॉलो करते हैं कि सभी श्रोताओं को मौका मिले, इसलिए 2 महीने के बाद कॉल करते हैं हम।
3: जी मैडम जी।
2: और नारायण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में खंडवा आकाशवाणी सुनना कौन कौन पसंद करता है?
3: बिल्कुल, मेरी जो लड़की है मैडम जी, सवेरे से 7 बजे चालू करती है वो रेडियो।
2: अच्छा।
3: वो ज्यादा से ज्यादा आकाशवाणी खंडवा भी सुनती है, काम करते बैठते सुनती हो, घर के सभी लोग रेडियो सुनते हैं, बड़े शौक से सुनते हैं और बोलते हैं कि देखिए आपका नाम आ गया रेडियो पर।
2: हाँ
3: हाँ, हमारा नाम आ गया है
2: जी, तो खुशी होती होगी अपना नाम सुनकर?
3: बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी।
2: आपने बताया कि आप बुलढाणा जिले में रहते हैं, तो कुछ जानकारी दीजिए अपने क्षेत्र के बारे में, आपके आसपास कोई दर्शनीय स्थल हो या कुछ विशेषता हो आपके क्षेत्र की।
3: जी मैडम, मेरे गांव के आगे 25 किलोमीटर सेगांव गजानन महाराज संस्थान, वो जो संस्थान है मैडम, एक नंबर संस्थान है, वहाँ पे बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वहाँ पे हजारों लोग दर्शन के लिए आ जाते हैं, बहुत बढ़िया धर्मालु स्थान है वो, रोज लोग आते हैं वहाँ पे।
2: तो आप जाते हैं, कभी आपका जाना हो पाता है?
3: बिल्कुल जाते हैं मैडम, एकादशी रहती ना, जैसे वारी बोलते हैं, तो हर एकादशी के दिन जाते हैं हम गजानन महाराज के दर्शन के लिए। वैसे भी 25 किलोमीटर वारी हनुमान है, वहाँ पे भी बजरंग बली का मंदिर है, वहाँ पे बहुत अच्छा स्थान है, वो भी बोला जाता है रामदास स्वामी ने वो मूर्ति की स्थापना करी थी हनुमान जी की, और वहाँ पे जो डैम बना हुआ है
2: जी,
3: उनका जो पानी आता है हमारे इधर 140 गांव में, वो पीने के वास्ते बहुत ही अच्छा करे हमारे नेताओं ने।
2: मतलब आपके यहाँ पानी की व्यवस्था उसी डैम से होती है?
3: हाँ, उसी डैम से होती है।
2: तो एक तरह से वो डैम भी दर्शनीय स्थल हो गया आपके पास का?
3: हाँ मैडम, शेगांव में भी भीड़ रहती, वारी हनुमान पर भी भीड़ रहती, खासतौर शनिवार के दिन वारी हनुमान पर भीड़ रहती ज्यादा।
2: और अपने बारे में कुछ बताइए नारायण जी कि आप क्या करते हैं?
3: मैं वैसे तो मैं टेलर काम करता हूँ मैडम
2: जी,
3: टेलर काम के बीचों बीच मैं रेडियो सुनता हूँ, रेडियो चालू करके देता हूँ, सवेरे 7 बजे दुकान में जाता हूँ, 10 बजे घर को आ जाता हूँ, तो वो टाइम में मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके मेथी गीत रहा, निमाड़ी लोक संगीत रहा, ऐसे कार्यक्रम जो रहते हैं अपने, वो सुनता रहता हूँ मैडम जी। घर में भी रेडियो है मेरे मैडम, दुकान पर भी रेडियो है, और वैसे खेतों में गया तो मोबाइल तो है,

0: आप खेती भी करते हैं?
1: हाँ खेती भी करता हूँ मैडम। मेरे पास 2 एकड़ खेती है, बागायती है, ये सोयाबीन चना वगैरह बुनते हैं।
0: तो खेती के बीच में आप सुन पाते हैं रेडियो?
1: बिल्कुल मैडम, पॉकेट में रेडियो रहता है, ऐप चालू करके रेडियो सुनता ही रहता हूँ।
0: तो आपको कैसे लगते हैं हमारे खंडवा आकाशवाणी के कार्यक्रम?
1: बहुत बढ़िया मैडम, खासकर मैडम जी जो आपके जो आरजे अलोन सर है, उनकी जो आवाज है, आवाज के दीवाने हैं हम उनके।
0: क्या बात है। अच्छा, मतलब आप कार्यक्रम से ज्यादा आवाज सुनने को बेताब रहते हैं कि आज किसकी
1: बिल्कुल
0: आवाज सुनने को मिलेगी।
1: बिल्कुल, कुछ अलम सर है मैडम, मेरे से मराठी में बात कर लेते हैं, मैं भी
0: आपकी मातृभाषा मराठी है, जैसे
1: समझ
0: आपने
1: जाता।
0: कहा कि निमाड़ी लोकगीत भी आपको पसंद आते हैं, तो निमाड़ी लोकगीत आपको समझ में आ जाते हैं?
1: थोड़े थोड़े समझ में आ जाते हो,
0: अच्छा, मतलब उनके भाव सुन के आपको समझ में आ जाता होगा।
1: उनका जो संगीत है, संगीत कानों में बजता है, वो बिल्कुल अच्छा लगता है सुनने में।
0: ये बहुत अच्छी बात है, तो कि भाषा से परे होके आप कार्यक्रम को पसंद करते हैं।
1: हाँ मैडम,
0: आप बताइए कि आपने कहा कि आप खंडवा आकाशवाणी को इतने समय से सुन रहे हैं, तो खंडवा आकाशवाणी की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद है या जो आपको सुनने के लिए प्रेरित करती हो?
1: खासकर सुनहरे पत्र उत्तर कार्यक्रम और फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, फोन करे गीत सुने, क्योंकि फोन करे गीत सुने में हर एक श्रोता फोन करता है और उनकी जो आवाज, उनकी जो बोल भाषा रहती है, अलग अलग समझ जाती है।
0: श्रोताओं से भी एक तरह से जुड़ने का मौका मिल जाता है।
1: श्रोताओं से एक तरह से जुड़ने का मौका मिल जाता है, और खासकर मैडम मुझे दोस्ती करना पसंद आता है, सबसे
0: अच्छा,
1: मित्रता करता हूँ मैं। कुछ खंडवा के दोस्त मित्र है हमारे, महाराष्ट्र के है, अकोला जिला के, बुलढाणा के है, और हमारा हर साल एक रेडियो श्रोता सम्मेलन रहता है मैडम, वो समय में हम सब श्रोता लोग एक जगह आ जाते हैं, सब
0: सबसे मिलना हो जाता है।
1: सबसे मिलना हो जाता है मैडम एक ही जगह।
0: कोई ऐसा सुझाव जो आप हमारी आकाशवाणी खंडवा के लिए देना चाहें?
1: मेरा ये तो सुझाव, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम फरमाइशी चालू करें, सभी श्रोताओं के पत्र शामिल हो जाए, ईमेल शामिल हो जाए, यही सुझाव है मेरा।
0: और चलते चलते कोई गीत आपकी पसंद का जो आप गुनगुनाना चाहें?
1: बदलते रिश्ते फिल्म का गीत है,

0: को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे श्रोता। इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए हमारे श्रोता जिला बुल्ढाना से नारायण हागे, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नीति आयोग को मिले 2 नए सदस्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। 2360 करोड़ रुपए की है परियोजना। प्रदेश में देर रात कई जिलों के SP सहित 62 IPS अधिकारियों के किए गए तबादले। और IPL में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। आज शाम गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि पूजन करेंगे। ये कॉरिडोर इंदौर एयरपोर्ट के पास सुपर कॉरिडोर को पीथमपुर निवेश क्षेत्र से जोड़ेगा और इसकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर होगी। 2360 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना में 75 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क और 1316 हेक्टेयर में नियोजित विकास शामिल है। इससे क्षेत्र में उद्योग, लॉजिस्टिक और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने कल रात 62 IPS अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें ADG से लेकर DCP स्तर तक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। भिंड, शिवपुरी, रीवा, सागर और धार समेत करीब 20 जिलों के SP भी बदले गए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने प्रदेश के शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया है। अब शिक्षकों को पहले की तरह पूरा 100% वेतन मिलेगा, जो पहले घटाकर 70% कर दिया गया था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने तत्कालीन DPI कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के सारे पुराने आदेश रद्द कर दिए हैं। शिल्पा गुप्ता ने कोर्ट के आदेश को न मानते हुए शिक्षकों को नई नियुक्ति बताकर कम वेतन दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर कल जिला प्रशासन ने करीब 70 साल पुरानी आदिवासी बस्ती को हटा दिया। प्रशासन ने बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ परिवारों को विस्थापित किया। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन वन विभाग की है और विस्थापित परिवारों को PM आवास योजना के तहत फ्लैट दिए जाएंगे। बरगी डैम क्रूज हादसे में कल 2 और बच्चों के शव मिले हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। हादसे के बाद प्रशासन ने जबलपुर में नर्मदा के सभी घाटों पर नाव संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर अखिल भारतीय सेमिनार का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के बीच पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने राजा भोज की प्राचीन निर्माण परंपरा और भोपाल के बड़े तालाब का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर बेहतरीन नगर नियोजन किया था। इस मौके पर IIT इंदौर और लोक निर्माण विभाग के बीच निर्माण तकनीक पर MOU भी हुआ।
1: ने प्रयास किया है कि सरकार की बाकी सारे कामों के साथ साथ जल रचनाओं पे भी हर साल आग्रह के साथ काम करें। इसलिए गुड़ी पड़वा से लेकर के 30 जून तक हर साल 3-4 महीने जल रचनाओं पे काम करें। उसमें प्राचीन जल रचनाएं भी है, नहर, नदी, तालाब, नए कुएं, सब प्रकार के प्रबंधन पर। और मुझे खुशी भी है, इसलिए अभी देश के अंदर में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। खंडवा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया, बड़वानी हमारा 2nd आ रहा है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हिनौती गोधाम में 2 नए गौशाला शेड और भूसा हाउस का भूमि पूजन किया और निर्माणाधीन 3

कार्यशालाओं को जल्द पूरा करने के कल निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस गोदाम को प्राकृतिक खेती के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां गोबर गैस संयंत्र से ऊर्जा और खाद दोनों मिलेंगे। हर साल आज के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो पत्रकारों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति वैश्विक संकल्प का दिन है। इस दिवस की नींव 1991 में नामीबिया में पारित विंडहोक घोषणा से पड़ी, जिसमें पहली बार स्वतंत्र और निर्बाध प्रेस की जरूरत को वैश्विक स्तर पर रेखांकित किया गया। इसके बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को आधिकारिक रूप से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। स्नातक चिकित्सा प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश 1:30 बजे तक ही मिलेगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड जैसा कोई एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना आवश्यक है। प्रदेश में अब तक 6,91,000 किसानों से 34,73,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 5,462 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। किसानों की सुविधा को देखते हुए गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई तक कर दी गई है। सरकार 2,585 रुपये समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलाकर कुल 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। इन्वेस्ट इंडिया के ताजा आंकड़ों में प्रदेश ने रोजगार सृजन के मामले में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र को पछाड़कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साल 2025 को प्रदेश में रोजगार और उद्योग वर्ष घोषित किया था और देश विदेश में इन्वेस्टर मीट व रोड शो के जरिए निवेशकों को आकर्षित किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में इन्वेस्ट इंडिया ने 6.1 अरब डॉलर से ज्यादा की 60 निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में मदद की, जिससे 31,000 से अधिक रोजगार मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की द्वितीय परीक्षा 7 मई से शुरू हो रही है। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड एमपी ऑनलाइन के पोर्टल www.mpbse.mponline.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए, जिसके जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और 1 गेंद में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच 3:30 बजे से और अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब रुक करते हैं मौसम का। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। कल भोपाल समेत 20 से ज्यादा जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और कई जगह ओले व बारिश भी हुई। आज ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और बालाघाट समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के बर्राढाना गांव में कल शाम आंधी तूफान के दौरान लगी आग से 10 मकान जलकर राख हो गए और दर्जन भर मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए। खंडवा में 8 मई तक मनाए जा रहे रेडक्रॉस सप्ताह के तहत निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मजदूर कल्याण समिति ने 50 मरीजों को कल पोषण युक्त फूड बास्केट वितरित किए। आगरमालवा, झाबुआ और गुना में कल लाडमी लक्ष्मी उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिंगरौली में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 5 मई से शुरू होकर 4 जून तक संचालित किया जाएगा। रतलाम में राज्य शासन द्वारा नवनियुक्त रतलाम विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों का कल कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने सम्मान किया और जबलपुर के बर्गी डैम हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को कल एडवोकेट्स सोशल एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाते हैं पंडित शिव

0: अभी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपने संतूर पर सुना राग कलावती, प्रस्तुति थी शिव कुमार शर्मा की।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है सदाबहार नगमों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। स्वीकार कीजिए श्वेता सोनी का नमस्कार। आज कार्यक्रम में बातें उस अदाकारा की जिन्होंने मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत की थी। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अभिनेत्री नरगिस की, जिन्होंने आज के दिन ही इस दुनिया को विदा कहा था।

हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की, जो एक बेहतरीन और बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री थी। नरगिस एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी रही है। उन्होंने नेत्रहीन और विशेष बच्चों के लिए भी बहुत काम किए। उन्होंने एक सांस्कृतिक दल बनाया था, जिसमें तब के नामी कलाकार गायक सरहद पार जाकर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे और उनका मनोरंजन करते थे।

श्रोताओं, यूं तो नरगिस का वास्तविक नाम था फातिमा रशीद। शादी के बाद उन्हें निर्मला दत्त के नाम से भी जाना जाने लगा। आप सभी जानते हैं कि नरगिस मशहूर दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त की धर्मपत्नी थी। सुनील दत्त और नरगिस की प्रेम कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दोनों ने मदर इंडिया फिल्म में माँ बेटे का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि इसी फिल्म के सेट पर ही सुनील दत्त ने नरगिस को प्रपोज किया था और नरगिस ने ये प्रपोजल स्वीकार भी कर लिया। नरगिस हमेशा सुनील दत्त को मदर इंडिया के ऑन स्क्रीन नाम बिरजू के नाम से ही पुकारती थी।

नरगिस ने राज कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया। नरगिस ने हिंदी सिनेमा में करीब 3 दशकों तक राज किया। नरगिस के जीवन से जुड़ा एक खास किस्सा हम आपको बताते हैं। नरगिस की मां जतन भाई भी फिल्मों से जुड़ी हुई थी। एक बार किसी काम के सिलसिले में राज कपूर उनके घर गए। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजा खोला नरगिस ने, और जिस समय उन्होंने दरवाजा खोला वो अंदर पकौड़े बना रही थी और वही बनाते बनाते बाहर आई तो उनके हाथ बेसन से सने थे और कुछ बेसन उनके बालों में भी लगा था। जब राज कपूर ने उन्हें देखा तो उन्हें देखते ही रह गए और उन्हें यह सीन इतना पसंद आया कि इसी सीन को उन्होंने बॉबी फिल्म में रिपीट किया था।

नरगिस ने मदरहिनिया अंदाज अनहोनी जोगन आवारा रात और दिन श्री 420 चोरी चोरी जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया था। आप जानते हैं श्रोताओं की मदर इंडिया फिल्म के लिए महबूब खां पहले दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार उनके बेटे का किरदार निभाए, पर ये सुनते ही दिलीप कुमार तो भड़क गए कि वे नरगिस के बेटे का किरदार कैसे निभा सकते हैं, अब तक तो वे उनके हीरो बनते आए हैं। तब महबूब खान ने दिलीप कुमार को नरगिस के पति और बेटे दोनों का किरदार निभाने के लिए कहा, पर इस पर भी दिलीप नहीं माने और उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। यह रोल मिला सुनील दत्त को और सुनील दत्त और नरगिस की प्रेम कहानी भी इस फिल्म के सेट पर शुरू हुई। कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट पर आग लग गई थी जहां नरगिस को सुनील दत्त ने बचाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब सुनील दत्त की माँ और बहन की तबीयत खराब हुई तब नरगिस ने उनका बहुत ध्यान रखा। बस यहीं पर सुनील दत्त के दिल में नरगिस के लिए जगह बन गई और वो उनके घर में उनकी पत्नी बनकर आ गई।

श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली भी वह पहली अभिनेत्री थी। और आप जानते हैं, मुंबई में बांद्रा में उनके नाम पर एक सड़क भी है। कुछ वर्षों तक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता था। 3 मई 1981 को बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज के ठीक 4 दिन पहले नरगिस ने कैंसर के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर वे अपनी अदाकारा थी जो अपनी अभिनय के साथ हमारे बीच आज भी जिंदा है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से नरगिस को श्रद्धांजलि देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमों का कार्यक्रम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

0: अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
3: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है, जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

0: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी.डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सुरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले दो दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर तीन देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके

0: इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
1: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट्स लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी के गाए नगमे।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुगम संगीत में आज आपने सुने अदनान सामी के गाए नगमे।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
2: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता सोनी का नमस्कार। हाजिर है हम आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों को लेकर। शामिल करते हैं आपके ईमेल्स को, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद के गीत। तो शुरुआत करते हैं हमारे इन श्रोताओं के फरमाइशी ईमेल से। गांव जाखोद से शमुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक, अम्बागढ़ चौकप की छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान, जिला मुरादाबाद दुलापुर से है मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानुप्रकाश, गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, जुनापानी सनावत से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम, हीरालाल, साहिल, सुमन, हरिओम और भावना बड़ोले, विशाल बड़ोले, तनु, आस्था, लकी, वंदना और इमली, जमानिया, जिला गाजीपुर।

से है सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से है रोहन और आर्य जायसवाल, बुरहानपुर से है मोहन मुदलियार, आरुष, आर्शिया और राजेश, ग्राम शेटे सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता और ऋषिकेश और वसुंधरा, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित, पीयूष और हैप्पी आनंद, वाणा शाहपुर से है विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत चौहान, पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडी, उषा नुसरी और धनश्री बुरांडे, लखनादौन मध्य प्रदेश से है लाडला जी चौबे, लाडली जी, रिमझिम और सक्षम चौबे, बने बुजुर्ग टीकमगढ़ से है बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, जनकपुरी सहारनपुर से है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल और पूजा परिहार, ग्राम ममना हमीरपुर से है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, मोहनाद भंजन उत्तर प्रदेश से है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन वर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर नुसरत फतेह अली खां और राहत फतेह अली खां के स्वर में मनोज मुंतशिर का लिखा गीत। संगीत है तनिष्क बाग्शी का और फिल्म है बादशाह हो।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। शामिल करते हैं हम इन श्रोताओं के फरमाइशी ईमेल्स को। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार।

कुमार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीयूष वणकार, सोंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारुतराव पंचाल, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार, उच्चपट्टी बिलासपुर से है मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष, शिवन्या, अन्नु गोस्वामी, नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंधा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, धनोरी तिलीवाला से निशान सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयन बाबू, मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ, सायना और निवान शर्मा, सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, छत्तीसगढ़ से है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल, ये हमारे श्रोता है जिला खंडवा से, धर्मपुरी से शेख फई मोहम्मद, तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी, राजस्थान से रमेश चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान, राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, माटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी, सहारनपुर से है सुरेश नारंग, आशोर, सोनाली नारंग, नांदगढ़गांव छत्तीसगढ़ से है माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, अंबागढ़ चौपी छत्तीसगढ़ से है रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर तुलसी कुमार और आतिफ असलम की आवाज में कुमार का लिखा गीत। धुन बनाई है रोचक कोहली ने और फिल्म है सत्यमेव जयते।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके मित्र गीत कार्यक्रम में। अब सुनिए श्रोताओं के अनुरोध पर कार्यक्रम का अगला गीत। डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से जयशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा, राधिका और प्रभाव देवी तामुरिया। खंडवा से है सुदामा माहेश्वरी, सीता, आशीष, अमन और महाराज कुशवाहा। डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग। मलकापुर से है संजय पाटिल, उषा पाटिल। अयोध्या नगर जलगांव से है अरुण खर्चे। छत्रपति संभाजीनगर से राजेंद्र और राधिका कोटवार। दीपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। नई दिल्ली से आमना नसरीन, बागवान, आसमा परी, राबिया, आशु, अहमद फुलवाले। छत्तीसगढ़ से है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से है नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, बेबी जोई, यामिनी और रूमा तिवारी। जसपुर उत्तराखंड से है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। खंडवा से है ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर एमेकर, प्रमोद और प्रदीप एमेकर। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तानी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आकोला से है अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा और इनके परिवार के सदस्य। बाटापारा से है के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। बागबारा बद्रसी से है पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल सेन। वाशी महाराष्ट्र से मास्टर बिट्ठल सुरेशे, सुषमा और मायरा सुरेशे। दिल्ली से है बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी। सरदना मेरठ से अनिल जैन, यम जैन, मुस्कान और मास्टर जीवीएम जैन। एयरपोर्ट कॉलोनी से है कौशल्या जोशी, प्रमिला जानी और सोनाली जोशी। वाराणसी से है प्रभाबाई, दुर्गाबाई, द्वारका और राकेश भाई। गंडे पंडरिया से है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की और रविंद्र रौनक सेन। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गरिमा बहल और सिद्धार्थ सिंह का लिखा गीत। धुन बनाई है विक्की प्रसाद ने और फिल्म है टॉयलेट, एक प्रेम कथा।

शामिल कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के ईमेल्स को। ओंकारेश्वर और थापना से है ठाकुर राजेंद्र सिंह भदौरिया, ज्योति उदयराज अश्विनराज सिंह भदौरिया, ग्राम खंगवाड़ा से है दगड़ूजी सेन, धर्मेंद्र राम, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशु, आरुषि और लक्षिता सेन, जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, सिंहभूम चाईबासा झारखंड से है शिवा गोप, प्रेम, शिवान, संगीता, लिपि और दिवाली गोप, पहाड़ा छत्तीसगढ़ से है नीतीश कुमार, लखनलाल देवांगन, सावित्रीबाई, ईशांत और तनुजा देवांगन, कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, पुनावले पुणे से है अजय सोनवनी, करिश्मा और रविका सोनवनी, दुर्गा कॉलोनी हासे से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी और बबू डब्बू, खंडवा से है अब्दुल गफ्फार डाबर, अब्दुल हक डाबर, जियाउलक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, तेलंगाना निजामाबाद से है शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और रहीम मन्ना, नर्मदा नगर से है सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, महेश्वर से है प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा, जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी, नजमुल होदा, एस एम जावेद और शगुप्ता अंजुम है गुमला झारखंड से, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गबाणकर, सरिता।

प्रणीता सिद्धांत और टुक टुक गवाणकर, माधुर नागपुरा से है, वैशाली शैलाज गवाणकर, एकांश सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, जुनापानी से है हमारे श्रोता आस्था लकीर वंदना, लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, बेबी हमीना फातिमा और मोहम्मद हसनैन पवार, ग्राम दीवार से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, वामिका गंगराड़े, जामली कला से माणकचंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा और तन्वी बोट। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर हर्षित सक्सेना की आवाज में सईद कादरी का लिखा गीत। धुन बनाई है हर्षित सक्सेना ने और फिल्म है मर्डर 2।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनिए श्रोताओं की फरमाइश पर गीत। बड़वा से है प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, शिवकोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, ओम सेन, कुमारी सपना, धर्मेंद्र, मुकेश सेन। इंदौर लिम्बोदी से है गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा भाई चौधरी। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी। पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और बीबी सिया जाधव। छोटे बलिया मुंबई से है अहमद भाई फुलवाले, दुखनी, सफद, जूही, इकबाल, इमरान और अहमद फुलवाले। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी। जिला मुरादाबाद दुलापुर से है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव। चंडीगढ़ शहर से सतीश, अनिजा, बिमला, अनिजा। ऊंचे गांव नांदेड़ से है देवानंद शिंदे।

पटेल, आदिपुर अंजार से सुभाष सोनार, राधिका रूपल, राजेश और सरोज सोनार, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल, प्रगति नाचानी। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर जावेद अली की आवाज़ में ये गीत। शब्द रचना और संगीत निर्देशन है राशिद खान का और फिल्म है राज 3।

0: इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत संपन्न करने की अनुमति दे श्वेता को नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत
0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब से लेकर 10 बजे तक हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम।

चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ हम उपस्थित हैं। तमाशा फिल्म का गाना मोहित चौहान की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: स्वतंत्रता दिवस है। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस वर्ष की जो थीम है वो है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, यानी कि शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस, ये इस वर्ष की थीम है। यूनेस्को ने 1991 में इस दिन की घोषणा की थी, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई, और ये दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर है जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाई है। तो आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसके अलावा आज अभिनेत्री नरगिस को हम याद कर रहे हैं। नरगिस को बहुत प्रतिभावान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। फिल्मों में उनके अभिनय में हमें विविधता दिखाई देती है और उनकी उपस्थिति बहुत गरिमामय है, दिल को छू लेने वाला उनका अभिनय रहा है। जो उनकी जो फिल्में हैं उनमें हमने इस चीज़ को महसूस किया है। 1950 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से वो थी और 1948 से 1957 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में वे दिखाई देती हैं। 1950 के दशक में नरगिस की साड़ियां एक बहुत प्रमुख स्टाइल स्टेटमेंट थी। वैसे तो उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, पर मदर इंडिया फिल्म में उनका जो अभिनय है वो काफी सराहा गया। महज 28 साल की उम्र में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की माँ का जो किरदार उन्होंने निभाया है, तो वो किरदार निभाकर उन्होंने हर किसी को चौंका दिया। उनके अभिनय की बहुत तारीफ की गई इस फिल्म में। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हमारा विनम्र नमन। गीत हम आगे और सुनेंगे, उससे पहले संदेश सुनते हैं।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अगला गाना सुनते हैं सुई धागा। इस फिल्म का गाना पेपोन और रोनकिनी गुप्ता की आवाजों में वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनु मलिक का।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं हैप्पी न्यू ईयर इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल, संगीत विशाल और शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह जीनियस फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, कुमार के बोल हिमेश रेशमिया का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल, गणेश और साथियों की आवाजें, सिद्धार्थ गरिमा, नासिर फराज और गणेश का लिखा हुआ गाना, शैल, प्रीतेश और नितिन शंकर का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

जन्नत का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू हो

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया, बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थी शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

तीसरी 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

0: नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।
1: खटपुट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी

इस जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन, जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई।

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आइए हम सुनवाते हैं आपको शिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख है फिरोज खान का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सिवनी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। जिले में इस बार हुई जोरदार बारिश का सीधा फायदा किसानों को मिला है। जमीन का वाटर लेवल बढ़ने से रबी फसल का उत्पादन इस साल बंपर रहा। पिछले वर्ष सिवनी जिले में करीब 2,62,000 एकड़ में गेहूं बोया गया था, जबकि इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 2,65,000 एकड़ से ज्यादा का हो गया है। वहीं चना और मसूर जैसी दलहन फसलें भी पिछले साल 69,000 एकड़ में बोई गई थी, जो इस बार बढ़कर 69,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पहुंच गई हैं। विकास कार्यों की बात करें तो सिकोरा ग्राम पंचायत में करीब 5 करोड़ की लागत से बनने जा रहे अटल सुशासन भवन का भूमि पूजन बीते दिनों किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते विशिष्ट अतिथि रहे। दूसरी तरफ सामाजिक सरोकारों के तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सिवनी मिशन ग्राउंड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 100 जोड़ों की शादी कराई गई। इसी कड़ी में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने 2 दिवसीय पुष्प फल और सब्जी महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्नत खेती, फूड प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वैज्ञानिकों ने आम, अमरूद, सीताफल और नींबू वर्गीय फसलों की खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में किसानों को जानकारी दी। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव देखने को मिला है। कलेक्टर शीतला पटले के ट्रांसफर के बाद नई कलेक्टर नेहा मीणा ने पदभार संभाल लिया। पद संभालते ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर साफ कहा कि आम जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इसी दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर जिले में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अम्बेडकर चौक

पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें भी जिले का प्रदर्शन अच्छा रहा। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें हाईस्कूल का रिजल्ट 79.04% और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 81.85% रहा। खास बात यह रही कि कई छात्रों ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में जगह बनाई। पूर्वी गुलहानी ने 12वीं में 97% अंक लाकर प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया, जबकि खुशी राजपूत ने 10वीं में 99.20% अंक लाकर 4था स्थान प्राप्त किया। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जिले में पोषण पखवाड़े के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इनमें गर्भवती महिलाओं, बच्चों और माताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और जरूरी दवाइयां वितरित की गईं। इधर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 7 केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गए हैं, जो पूरे मई महीने तक चलेंगे। इसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक समेत कई खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जन सुनवाई कार्यक्रम भी लोगों के लिए राहत का माध्यम बन रहा है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, जिनमें जमीन विवाद, मुआवजा, पेयजल, आवास और घरेलू हिंसा जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि इस बीच जिले में सड़क दुर्घटनाओं और प्राकृतिक घटनाओं से चिंता बढ़ी है। मार्च के दूसरे सप्ताह से अब तक 12 सड़क हादसों में 17 लोगों की जान जा चुकी है और 22 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत बिजली करंट लगने से भी हुई है। इन सबके बीच सिवनी में साहित्यिक गतिविधियां भी लगातार जारी हैं। यहां हर महीने काव्य और विचार गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। हाल ही में हुई एक काव्य गोष्ठी में स्थानीय कवियों और शायरों ने अपनी रचनाएं सुनाकर श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी। आखिर में बात उन लोगों की जिनकी कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है। सिवनी जिले के लुघरवाड़ा गांव की रंजीता धुर्वे ने 2023 में महज एक मशीन और 10 लाख रुपए से अगरबत्ती का उद्योग शुरू किया था। आज रंजीता 10 मशीनों और 25 लाख रुपए सालाना टर्नओवर तक पहुंच गई हैं। उन्होंने 10 स्थानीय महिलाओं को रोजगार देकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। वहीं घनसौर अंचल के राजेश पटेल ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 19 लाख से ज्यादा का ऋण और अनुदान पाकर दूध बेचने वाले से गोमुख मिल्क ब्रांड के मालिक बनने तक का सफर तय किया है। अब वो पनीर, मावा, दही और घी जैसे उत्पाद तैयार कर बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शिवनी जिले की चिट्ठी। ये
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी FM 101.2 MHz पर। यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति है पंकज लाड़ की।
2: फोन करें गीत सुने। आपकी आवाज, आपके जज्बात, आपकी ही पसंद। फोन करें गीत सुने।
3: वेलकम फ्रेंड।

0: ज्येष्ठ का महीना, तपती धरती, बढ़ता ताप, रविवार का दिन, आकाशवाणी खंडवा, जुड़े हैं हम और आप। नमस्कार, आज के फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में मैं पंकज लाड़ आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हेलो।
1: हाँ, मैं बड़ा बम चौक खंडवा से संजय मारकंडे बोल रहा था सर। पंकज जी नमस्कार।
0: बड़ा बम चौक खंडवा के संजय मारकंडे जी, हमारे नियमित श्रोता, आपका बहुत स्वागत है आज के फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: हाँ सर, मेरी शादी की सालगिरह है।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां आपको।
1: ममता मारकंडे और संजय मारकंडे पति पत्नी दोनों के लिए एक गीत चुना है मैंने।
0: ऐसे सूखे सूखे ही गीत सुन लेंगे और सुना देंगे या कुछ
1: मीठा मुँह करवाएंगे ना सर? आकाशवाणी खंडवा तो हमारे लिए प्रिय है, पूरे आकाशवाणी को मीठा मुँह करवा देंगे, ऐसी क्या बात है।
0: चलिए, हमारी ओर से हम आपके कानों में मीठी मीठी स्वर लहरियां भेज रहे हैं जो आपके मन मस्तिष्क को भी मधुरता प्रदान करेगी। दोनों को हमारी ओर से ये सांगीतिक मिठाई।
1: सर 27 साल पहले मेरे दिल पे फूल खिला था, मेरे मन और घर आंगन को महका के रखा है, उसी के लिए मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ।

0: मैंने चांद देखा है झिल मिलाते सितारों में, वो दिन याद करो फिल्म का गाना है रफी साहब की आवाज में।
1: आपकी शादी भी गर्मियों में ही हुई थी?
0: जी जी, ये अखाती तीज थी उस समय सर,
1: अक्षय तृतीया
0: 30 अप्रैल को, सॉरी सर।
1: जी जी, गर्मी में शादी जब होती है तो आपको कुछ याद होगा, क्योंकि अभी 27 साल ही हुए हैं, 27 वर्षों के बाद कम से कम इतनी शादी की तो बातें याद रहती हैं।
0: जी जी,
1: तो गर्मी की शादी में किस तरह की दूल्हे की परेशानी होती है, फजीहत किस तरह से होती है?
0: सर चारों तरफ से पसीने में तर हो रहे थे, इधर से भी तपन, उधर से भी तपन, और सामने से मैडम की भी तपन। मैडम के सामने ही बैठी थी, हाथ लगन लग रहे थे। हमारे इसमें परंपरा है कि हाथ से हाथ मिलते हैं उसके बाद ही लगन लगाए जाते हैं स्तुतियों के साथ,
1: पाणी ग्रहण संस्कार।
0: जी जी, दाम्पत्य जीवन में परिणय सूत्र में बनने के लिए।
1: जी जी हाँ। काल्पनिक रूप से सोचिए कि यदि आपको दोबारा हमारी ही भाभी जी से विवाह का अवसर मिले, तो क्या फिर से गर्मियों में ही शादी करना पसंद करेंगे या ठंड की ऋतु चुनेंगे?
0: नहीं सर, फिर तो मैं अपने जनवरी फरवरी चले।
1: चलिए,
0: अभी तो इतनी जबरदस्त गर्मी चल रही है, और मैं एक सलाह भी दूंगा सभी श्रोताओं के लिए, एक बात कहना चाहूंगा कि गर्मी में पानी खूब पिए ताकि शरीर का तापमान बना रहे, और ठंडे पेय पदार्थों का ही सेवन करें। पना हुआ, गन्ने का रस हुआ, नारियल पानी हुआ, ऐसे पेय पदार्थों का ही सेवन करें। धूप में कम निकले, जरूरत हो तो ही काम के लिए निकले।
1: संजय मार्कंडे जी, आपकी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों के साथ हम आपको एक बार फिर बधाई देते हैं विवाह वर्षगांठ की, और सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के साथ। मैं पंकज लाड़ आपका स्वागत करता हूं।
0: नमस्कार भैया, मैं बद्री पटेल बोल रहा हूं, छोटी बोरगांव।
1: ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में आज?
0: मेरे को भैया अनाड़ी पिक्चर का गीत सुनना है। क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी कुर्बाई चली।
1: गर्मी का मौसम आपको अच्छा लगता है?
0: हाँ जी भैया, इसलिए पंखे में बैठे। अरे भैया अच्छा तो लगता है, पर ज्यादा गर्मी भी नहीं होना, क्या है सही खराब होता है उसे।
1: अच्छा कितनी होना
0: गर्मी? एक की भैया, कम से कम उसका तापमान होना कम से कम 25-26-28 के बीच।
1: अच्छा मतलब आप जो हैं वो एयर कंडीशन वाली गर्मी चाहते हैं?
0: हाँ ज्यादा गर्मी में क्या है कि भैया ठंडा लाते कहाँ से, पैसे भी तो होना।
1: नहीं उसकी तो खैर कमी सबके पास रहती है, लेकिन ये बताइए कि ये गर्मी का मौसम जो रहता है, यदि आपको पसंदीदा मौसम बना दिया जाए सारे मौसम को तो क्या होगा?
0: अरे भैया फिर उसकी बात मत पूछो, फिर क्या होगा?
1: मतलब सब मौसम एक जैसा, पूरा साल भर एक ही मौसम?
0: हाँ, नहीं देखो भाई, 4 महीने तो ठंडी पड़ती है, 4 महीने गर्मी पड़ती है, 4 महीने बारिश होती है।
1: तो होना चाहिए कि नहीं? ऐसा होना चाहिए।
0: नहीं होना चाहिए कि भैया जब देखो जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी बारिश भी होगी। भैया
1: क्या किसानी करते हैं आप वहाँ पर?
0: नहीं भैया जी, अपन को थोड़ा कम दिखता है तो घर पे रहते हैं, पहले काम करते थे अपन। अभी क्या है कि घर पे रहते हैं, कोई काम मिलता है तो करते भी रहते, फिर आराम से करते हैं।
1: चलिए बद्री पटेल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा।
0: बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भैया जी, है ना।
1: अच्छा आकाशवाणी खंडवा के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
0: मैं कार्यक्रम भैया युवा नहीं सुनता हूँ, सवेरे का जो कार्यक्रम आता है ना, वो भक्ति बंद ये कार्यक्रम आता है, भक्ति का ये कार्यक्रम सवेरे से आता है, फिर रामायण आती है, फिर उसके बाद सुनहरे पल, फिर आपके मिलेगी युवा, जितने भी कार्यक्रम आते हैं सब सुनते हैं हम।
1: आपको क्या अच्छा लगता है इनमें?
0: मेरे को भैया सब कार्यक्रम अच्छा, पर पूरे किसी के नहीं करते।
1: चलिए आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ, आकाशवाणी खंडवा।
0: आकाशवाणी खंडवा से मैं पंकज लाड़ आपका स्वागत करता हूँ फोन करे गीत सुने कार्यक्रम।
1: नमस्कार सर,
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: मैं खातेगांव से बोल रहा हूँ, गोविंद जलोदिया,
0: खाते गांव कौन सा? क्या
1: कन्नौज खातेगांव।
0: करते हैं आप?
1: मैं अभी तो कुछ भी नहीं करता सर, एकदम फ्री है सर। 73 साल की उम्र हो गई, आप कब तक करे कुछ भी? यही आजकल आपके भरमाइश वगैरह यही भी कर, 1-2 महीने में आपका नंबर लग जाता है, बैतूल का लग जाता है
0: हाँ,
1: और इंदौर का, यही काम करते हैं, गुना तक लगा देते हैं।
0: फुर्सत में बैठे बैठे सब जगह के नंबर लगाया करते हैं।
1: तो कोई भी तो समय तो काट।
0: ये आपकी जो जीवन की अवस्था है, हमारी भारतीय परंपरा में जो 4 आश्रम बताए गए थे ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो आप जीवन का और उस अवस्था का पूरा आनंद लीजिए। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं फुर्सत के इन पलों में?
1: सर ये है सर, अब ब्याह शादी का कार्यक्रम चल रहा है सर, आप चोरी चोरी का है, मन भावन के घर जाए गोरी।
0: आकाशवाणी खंडवा के इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: यही प्रोग्राम ज्यादातर सुनता हूँ मैं सर, ज्यादातर तो, और ये आपका कभी कभी वो खेती वाला भी सुन लेता हूँ, और इसके बाद फिर वीरवार भी चलता ही है।
0: रेडियो दिन भर सुनते हैं आप?
1: हाँ, रेडियो आपका क्या है, खटवा हमारे यहाँ से एयर मार्क से नजदीक पड़ता है, तो हमको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आती।
0: तो रेडियो पर सुनते हैं कि मोबाइल पर सुनते हैं आप?
1: मोबाइल पे भी सुनते हैं और वो रेडियो से भी वो है, वो लगा रखा है।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ईश्वर करे आपके जैसी वृद्धावस्था सबकी हो, सबकी सेवानिवृत्ति आपके जैसी रहे, और खाते पीते और सारी जगहों पर फोन लगाते हुए, रेडियो पर गाने सुनते हुए आप जीवन यापन करें, और आप दीर्घायु हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
1: सर आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं पंकज लाड़ बोल रहा हूँ।
1: अच्छा पंकज लाड़।
0: गोविंद जी आपको खाते गांव कन्नौज में सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का चोरी चोरी फिल्म का

0: महाचंद जी राठौर जामली कला से बोल रहा हूँ।
1: माणक राठौर जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में?
0: मैं वो दाता फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ।
1: दाता फिल्म का
0: बाबुल का गाने बिना
1: विदाई गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: हाँ।
1: ये बताइए कि आपके परिवार में कोई विवाह का अवसर है तो आप ये गीत सुन रहे हैं?
0: अपने छोटे भाई के बालक का है, अभी चार तारीख में।
1: आपके यहाँ विवाह का आयोजन है, बहुत शुभकामनाएं हमारी वर वधु को। आपको सुनवा रहे हैं आपके गांव जामली कला में दाता फिल्म का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ, पंकज सर जी गंडी पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: आपका बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में आप?
1: शंकरा फिल्म का गीत सुनवा दीजिए सर, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज में, जाना ना नैन मिला के मेरी नींदिया चुरा के वाला।
0: पवन कुमार जी,
1: जी
0: आप आकाशवाणी खंडवा सहित देश के तमाम आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रम सुनते हैं और संगीत में रुचि रखते हैं?
1: बहुत ज्यादा, बता नहीं सकता सर मेरे।
0: तो जरा ये गीत गुनगुना के बताइए ना।
1: नहीं सर, अब नहीं गुनगुना सकता।
0: अच्छा, क्यों?
1: क्या बताऊं?
0: क्यों अच्छा लगता है ये गीत आपको?
1: क्या है, तो एक दो बार सुना तो बहुत अच्छा लगा। दरअसल सर मैं ना भजन मंडली के गायक भी हूँ, लेकिन थोड़ा आवाज दब गया सर, इसलिए असमर्थ चाहता हूँ मैं आपसे कि अगले आने वाले समय जब भी आपसे बात होगी बिल्कुल एक भजन गुनगुना कर सुनाऊंगा। आप
0: किस तरह के भजन गाते हैं आप?
1: जय श्री राम प्रभात फेरी भजन मंडली चलाता हूँ सर, रोजाना सुबह 4:30 बजे राम मंदिर से पूरा भजन गाते हुए नगर भ्रमण करते हैं सर जी हम लोग।
0: कौन कौन से भजन गाते हैं? छत्तीसगढ़ी में गाते हैं कि हिंदी के गाते हैं?
1: कुछ छत्तीसगढ़ी भी है, कुछ हिंदी भी है सर जी, और रिहर्सल करके गाता हूँ। कम से कम 40-45 ऐसा भजन है सर जी जो मेरे दिमाग में माता सरस्वती देन है कि मैं बिना कापी देखे गाता हूँ सर।
0: कोई छत्तीसगढ़ी का मौलिक गीत, जो लोक गीत वहाँ का लोक भजन हो वो सुनाए?
1: कौन सा सुना, एक भजन सुना देता हूँ सर जी आपको।
0: जी।
1: धरती से गगन तक ढूंढ लिया मेरा राम, न जाने कहाँ गया मेरा राम, न जाने कहाँ गया मेरा राम, न जाने कहाँ गया धरती से गगन तक।
0: ये तो आपने हिंदी का सुनाया, छत्तीसगढ़ी का कोई लोक भजन सुनाइए।
1: दरअसल आवाज दब गए सर जी।
0: नहीं नहीं, आवाज अच्छी आ रही है आपकी, अभी आपने बहुत बढ़िया गाया है।
1: तोर दो दिन के जिंदगानी झनकर अभिमानी, माटी मा काया मिल जाही रे, माटी मा चोला मिल जाही ना, ते राम गुण गाले हृदय मा ते बसाले, काया ला मुक्ति मिल जाही रे, चोला ला मुक्ति मिल जाही ना।
0: पवन कुमार सेन जी, छत्तीसगढ़ी इतनी मीठी बोली है और चूंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और अविभाजित मध्य प्रदेश का अंग हुआ करता था छत्तीसगढ़, तो बहुत कुछ बोलियों में समानता है और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर शंकरा फिल्म का ये गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ये था आज का फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे नीरज पाटिल, बिशन तांगोड़े और मनोज गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग सोनाली दशोरी का था और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में पेश किया आपके साथी पंकज लाड़ ने। अब दे अनुमति, नमस्कार।
1: फोन करें गीत सुने। आपकी बात आपकी ही पसंद के साथ सुनते रहिए, फोन करें गीत सुने।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति थी पंकज लाड़की। FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:35 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम बाल जगत।

गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम बाल जगत में। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी मुक्ता दीदी। कैसे हो बच्चों आप, और कैसी चल रही हैं आपकी गर्मी की छुट्टियाँ? गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होते ही मन करता है कि बस खेलें, मस्ती करें और खूब आनंद लें, है ना? पर आनंद लेने के लिए स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है बच्चों, और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है अपना ध्यान रखना। बच्चों, गर्मी अपने पूरे जोर पर है और कई जगहों पर लू यानी कि हीट वेव चल रही है। तेज़ धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लू से अपना बचाव करें। इसलिए बच्चों, कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज़ होती है। अगर बाहर जाना ज़रूरी भी है तो सिर ढक लें, कैप, गमछा, सनग्लासेस आदि का इस्तेमाल ज़रूर करें। गर्मियों में हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनें और कॉटन के कपड़े पहनें। पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें, क्योंकि इस मौसम में खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खूब सारा पानी पिएं, छाछ, लस्सी, नींबू, गन्ने का रस, नारियल पानी, इन सभी चीज़ों का सेवन आवश्यक रूप से करें, ताकि पानी की कमी ना हो शरीर में और आप डिहाइड्रेशन से ग्रस्त ना हो। मौसमी फल, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, प्याज, इनका सेवन ज़रूर करें, ये शरीर को ठंडक देते हैं। ज़्यादा तला भुना, मसालेदार खाना, बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि ये सब शरीर को गर्म करता है। जब भी धूप से आप घर आएं तो एकदम से पानी ना पिएं, 5 मिनट तक रुक जाएं ताकि शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाए। उसके बाद ही आप पानी पिएं और उसके बाद ही आप एसी और कूलर में जाएं, नहीं तो सर्द गर्म से आप बीमार पड़ सकते हैं और आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। बच्चों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप तेज गर्मी में भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ बीमार होने के लिए नहीं हैं। नानी घर जाकर नाना नानी का लाड़ पाने के लिए, मस्ती करने के लिए और परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए हैं। तो अपना ध्यान रखें और खूब इंजॉय करें।

बच्चों, अब कार्यक्रम में क्रम है आज की कहानी का। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक और सीख देने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है नकलची सदा दुखी।

हमेशा उसका साथ देती और उसे हिम्मत देती रहती थी। बलदेव अक्सर गांव-गांव जाकर चमड़े इकट्ठे करता था, फिर शहर जाकर उन्हें बेच देता था। उसका रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए कभी कभी उसे देर भी हो जाती थी और जंगल में डर का सामना भी करना पड़ता था। एक दिन बलदेव थोड़ी देर से घर से निकला। शहर में भी उसका काम ठीक से नहीं हुआ और कुछ चमड़े बिक नहीं पाए। जब वह वापस लौट रहा था तब तक रात हो चुकी थी। जंगल में पहुंचते ही उसे डर लगने लगा। उसने सोचा कि कहीं कोई जंगली जानवर या चोर डाकू न मिल जाए। डर के कारण उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा और उस पर चढ़ गया। उसने अपने सारे चमड़े भी साथ ले लिए ताकि नीचे रखने पर कोई जानवर उनकी गंध से आकर्षित होकर न आ जाए। अब वह पेड़ पर बैठकर सुबह का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक उसे नीचे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो कुछ डाकू वहां आकर बैठ गए। वे लोग कहीं से लूट का सामान लाए थे और उसे आपस में बांट रहे थे। सोने चांदी के गहने और पैसे देखकर बलदेव हैरान रह गया। इसी बीच अचानक उसके हाथ से कुछ चमड़े फिसलकर नीचे गिर पड़े। यह सब इतना अचानक हुआ कि डाकू डर गए और उन्हें लगा कि पेड़ पर कोई भूत है। वे भूत भूत चिल्लाते हुए अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग गए। बलदेव ने जब देखा कि नीचे कोई नहीं है तो वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और सारा पैसा और गहने इकट्ठा करके अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी पहले तो डर गई लेकिन बाद में इतनी सारी दौलत देखकर खुश भी हुई। उनकी यह बात पड़ोसी ने सुन ली। पड़ोसी का नाम था शंकर। वह हमेशा बलदेव के घर पर कान लगाए रखता था। शंकर लालची था और उसने सोचा कि वह भी ऐसा ही करेगा और बहुत सारा धन कमाएगा। अगले दिन शंकर भी कुछ चमड़े लेकर उसी पेड़ पर चढ़ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात में फिर वही डाकू वहां आए। वे अपना पिछला सामान ढूंढने आए थे। शंकर डर के मारे कांपने लगा और उसके हाथ से भी चमड़े नीचे गिर गए। लेकिन इस बार डाकू समझ गए कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है बल्कि कोई आदमी है। उन्होंने ऊपर देखा और शंकर को पकड़ लिया, फिर उसे नीचे उतारकर उसकी खूब पिटाई की। किसी तरह शंकर अपनी जान बचाकर घर भागा। उसकी हालत देखकर लोग इकट्ठा हो गए। उसने सारी सच्चाई बता दी। तब लोग हंसते हुए बोले, नकलची सदा दुखी। बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें कभी भी किसी की नकल बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। आपने देखा कि बलदेव के साथ जो हुआ वह एक संयोग था और उसने बहुत ही समझदारी से काम लिया, इसलिए उसे उसका फायदा भी मिल गया। लेकिन शंकर ने बिना सोचे समझे सिर्फ लालच में आकर वही काम दोहराने की कोशिश की, इसलिए उसे नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए बच्चों, हमेशा अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करो। हर इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है, इसलिए जो किसी और के साथ सही है वह ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए भी सही हो। अगर हम सोच समझकर काम करेंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और सफल भी होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ दूसरों की नकल करेंगे तो हमें परेशानी और नुकसान ही हो सकता है। इसलिए याद रखो, नकल नहीं समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। और अब कार्यक्रम में क्रम है एक प्यारे से गीत का।

एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में बलदेव नाम का एक मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था। वह जानवरों के चमड़े का व्यापार करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बलदेव बहुत समझदार था और अपने काम को पूरी लगन के साथ करता था। उसकी पत्नी भी

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बाहर तेज़ धूप और लू चल रही है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम खेलना बंद कर दें। आज की जिज्ञासा में हम आपको बताएंगे कुछ मज़ेदार इंडोर गेम्स जिन्हें आप घर के अंदर आराम से खेल सकते हैं और अपनी छुट्टियों को बना सकते हैं और भी शानदार। बच्चों, लूडो और सांप सीढ़ी ये हमारे सबसे पारंपरिक खेल हैं जिन्हें आप घर बैठे अपने दोस्तों, भाई बहनों, मम्मी पापा, दादा दादी सभी के साथ खेल सकते हैं। ये दोनों गेम्स हमें हर घर में मिल जाते हैं। लूडो खेलने से न केवल मज़ा आता है बल्कि हमें धैर्य और रणनीति भी सीखने को मिलती है। वहीं सांप सीढ़ी भी दिल थाम कर खेला जाता है और डर के आगे जीत है, यही सिखाता है ये गेम। अगला गेम है कैरम। जी हाँ बच्चों, कैरम खेलने से हमारी एकाग्रता और हाथ आँख का तालमेल बेहतर होता है। और अब बात करते हैं शतरंज की। यह खेल बच्चों दिमाग को तेज़ बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हर चाल सोच समझकर चलनी होती है जिससे आपकी सोचने की क्षमता ज़रूर बढ़ेगी। इसके अलावा बच्चों पजल गेम्स भी खेल सकते हैं। न्यूज़पेपर्स में रोज़ क्रॉसवर्ड और सुडोकू आते हैं जिन्हें सॉल्व करने से दिमाग भी तेज़ होता है, नॉलेज भी मिलता है, मज़ा भी आता है और साथ ही इनसे आप समस्या को सुलझाने की आदत बनाते हैं। और भी गेम्स जैसे ऊनो

जिंगा, राजा मंत्री चोर सिपाही, दमशराज, अंताक्षरी, ये सारे गेम आप खेल सकते हैं घर बैठे बैठे। इनसे आपका मनोरंजन भी होगा और साथ ही आप अपने परिवार के साथ समय भी व्यतीत कर पाएंगे। बच्चों, अगर आप कुछ एक्टिव और मज़ेदार खेल खेलना चाहते हैं, जैसे म्यूज़िकल चेयर, ट्रेजर हंट यानी कि खोजो और ढूंढो, जो कि बहुत ही रोमांचक गेम्स हैं जिनमें आपको क्लूज दिए जाते हैं और आपको चीज़ों को छुपाकर ढूंढना होता है। इस तरह के खेल खेलने से आप गर्मी की छुट्टियों में मोबाइल और टीवी से दूर रह सकेंगे। तो आप सब इन इंडोर गेम्स का आनंद लें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं और हर दिन को खास बनाएं।

इसी के साथ बच्चों अब कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है। आपको हमारा आज का बाल जगत कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिखकर ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए नोट कर लें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बाल जगत, द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम, आकाशवाणी सिविल लाइंस, खंडवा। खंडवा का पिन कोड है 450001। अब कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी मुक्ता दीदी को दें इजाज़त। जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल जगत। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, अब से लेकर शाम 5:30 तक हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम।

आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र, वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 बरस हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी, सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ, तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है, वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ मैं, पर आज 15 बरस बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है, इसलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मछली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, अरे मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज भी निपुण हैं, उनकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी, माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर की देवता को गांव का पूजा

सारे क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मृत्यु नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो हजार रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को दो परीक्षकों की दो जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ कर रखने के लिए निगरानी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का व्यवरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया। लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी ब्राह्मण ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने न केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है। वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको। तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपाकर कविता लिखा करती थी। वो भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे भीतर तुम लोगों की मछली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था उसे तुम लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूं, ये बात 15 बरस में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने की बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नींद थी। सवेरे नौकर तरह तरह के काम करते रहते, इसलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती और मेरा मन इसे देखकर रोने लगता था। और मैं गांव गवई की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे दो गायें और तीन बछड़े चिरपरिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो बच्ची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है

जो कुछ सत्य है वो सब मुझे ला देती, तब मैं मझली बहू से एकदम एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है। पर मुझे मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, सिर्फ वेदना, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था, और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहां टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है, आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है, अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है, वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूं, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी दुख को पाना ही होगा, तो फिर जहां तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हाँ, आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है, ये बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है भला? हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती। लेकिन लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है, और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है, और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा, तभी से दरार शुरू हो गई।

जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई है ना? देखा, तुम लोग सब मन

ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी। पतिव्रता, उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थी मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थीं, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता, और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था, इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई, लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया, शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ हो।

तुमने कहा शीतला, क्यों ना हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया, दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा, शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे, कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया, हुआ कुछ नहीं। लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जी जी, तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का ओर छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूं कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी, इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा ना आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था, प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए

मैं जो कपड़े देती थी उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने 125 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है, भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली।

0: बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगी थी, बोली थी,
1: जी जी जी जी, मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो।
0: मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसके यहां जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था, सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो, उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी

0: भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं, नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारे जठराग्नि से बचाकर नीचे वाले कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु? बोला,
1: दीदी तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी वो पागल है, वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया।
0: मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती, कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है। लड़का पागल है तो हो, है तो पुरुष ना, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी, अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी ससमणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वो भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भाग कर चली आए। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता।

बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह। देखूं तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा, बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा, वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा, क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था, तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम। हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था, क्या वकील के घर तक दौड़ोगी। हाँ, इस बात का क्या जवाब होता। सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा, करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना, संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे, उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी, फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चयपूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं।

मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास

0: देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहां आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुप गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहां गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहां आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी जी अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु।
1: आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है। अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहां खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा

कर दी। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबा कर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा, तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवन, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है, वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुद्बुद है, वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी षठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले, कितना ही क्यों न कोई पुकारे, मैं उस अंतापुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला? क्यों? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी? और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहां गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार? कहां गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। तरी मझली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की, अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघाड़ दिया। आज बाहर आकर देखती हूं, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप, जिनकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी। उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था,

बाप छोड़े माँ छोड़े, जहाँ कहीं भी जो भी है सब छोड़े, लेकिन मीरा की लगन वहीं रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी, मैं बच गई हूँ, जीवित रहूंगी। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मैं जीवित रहूंगी।

इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
3: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
2: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।

0: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं लेकर यादों की महफिल।

और वे ऐसे गीतों से तो हर किसी को आशिकी हो जाती है ना। बहरहाल, यादों की महफिल कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना बरसात फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़, जलाल मलिहाबादी के बोल थे और शंकर जयकिशन की यादगार बड़ी ही प्यारी सी तर्ज। चलिए आपको बता दें कि आज यादों की महफिल कार्यक्रम में गाने बज रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों से।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना हमने आपको सुनवाया आशा भोसले के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा था और फिल्म थी लाजवंती। चलिए अब यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ें। शकील बदायूनी की रचना है, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर। क्या कहता है ये गाना, आइए सुने।

0: मतवाला जिया, आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से ये गीत। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद की तर्ज, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के युगल स्वर। लता मंगेशकर का गाया एक और गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं, सखा भी सुनते।

0: है सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
1: सखी सहेली।
2: तो चलिए इस संदेश के बाद अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत है, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज।

लता मंगेशकर की गायकी और अभिनेत्री नरगिस का अभिनय दोनों ही कमाल। आपको बता दें, चोरी चोरी फिल्म का ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। एक और फिल्म अभिनेत्री नरगिस की, इसमें लता मंगेशकर की आवाज है इस गीत में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज़।

और अब हम बढ़ेंगे अदालत फिल्म के गाने के बाद आह फिल्म के गाने की ओर। आह फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में है, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला है संगीतकार शंकर जयकिशन ने।

0: आग फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, स्वर शमशाद बेगम का था, बेजाद लखनवी के बोल थे, राम गांगुली का संगीत। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ये संदेश।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सलिल चौधरी के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर, फिल्म थी जागते रहो।

शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का स्वर था। फिल्म का नाम रात और दिन। अब आवारा फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है और आवाज लता मंगेशकर की।

अंदाज फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल नौशाद अली की तर्ज। और अब अगले गाने में भी नौशाद अली की तर्ज है, लेकिन इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, फिल्म का नाम बाबुल। यही है आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों के गीत।

बाबुल फिल्म का ये गाना था। आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आपने सुने अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माए गए फिल्मों के गाने।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो चलिए आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आपको बता दी जाए। आज हमने एक टेक्स्ट पोस्ट किया और वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो भाई, इसी में से हमने कुछ शब्द चुने हैं। अब आपको पहचानने हैं वो शब्द और उनसे जुड़े गीत। देखते हैं हमारी आपकी पसंद कितनी और कहां तक मिलती है। वैसे अभी मैं इस टेक्स्ट को एक बार और पढ़कर आपको बताऊंगी और थोड़ा सा उन शब्दों पे जोर भी दूंगी ताकि आपके लिए और भी सहूलियत हो जाए। आपको बता दें, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो भाई, ये धुन बज गई और एक लिसनर हमारी लिखती हैं कि आज लिसनर्स ये भी नोटिस करेंगे कि न्यू प्रोग्राम में बैकग्राउंड म्यूजिक दिल तो पागल है की जगह कौन सा सुनाई देगा। तो भाई, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रोग्राम नया है, लेकिन हमारा अंदाज वही रहेगा। एक साथी ने लिखा है कि हम भी एक सुहाने सफर में हैं और रास्ते से कमेंट कर रहे हैं, प्रकृति के बीच विविध भारती का साथ, मधुर संगीत आनंद ही आनंद है। तो चलिए एक बार उस टेक्स्ट को मैं फिर से पढ़ती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहां कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते

मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो चलिए, अब आप समझ ही गए होंगे। और आज भाई दिल की बातें हो रही हैं, तो क्यों ना की जाएं। साथियों, जब बात दिल की हो तो आपको कौन सा गाना याद आता है? वैसे जरा ये तो बताइए कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है।

तो भाई आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने से। हमारी एक लिसनर ने लिखा है कि आपने बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में मौसम के बदलते मिजाज और जज्बातों को बयां किया है, गर्मी की तपिश से लेकर सावन

की फुहार तक का सफर वाकई किसी प्रेम कहानी से कम नहीं। यूं तो मौसम का हर रंग एक अलग अलग कहानी है और बारिश की हर बूंद किसी की याद का छोटा सा दर्पण, लेकिन तपती गर्मी में छांव जैसी मुलाकातें ही तो जीवन को सचमुच हसीन बनाती हैं। और आज के इन्होंने शब्द दिए हैं, ठंडी हवा, छुपा, रिमझिम, सावन, इंतजार, कतरा कतरा, पानी, अधूरी कहानी, मौसम, रंग, मुलाकात, पल, धूप, छांव और मुस्कुराहट। क्या बात है भाई, आपने खुद ही इतना प्यारा टेक्स्ट लिखकर भेज दिया।

बार एक साथी लिखते हैं तो कि आज तो आपकी आवाज में सिर्फ कार्यक्रम को सुना जाएगा, इस तपती धूप में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप कार्यक्रम सुनिए, एंजॉय कीजिए। वैसे साथियों, कुछ साथी हमारे इस नए कार्यक्रम का शय स्वरूप अभी नहीं समझ पाए हैं, और वैसे भी परिवर्तन तो संसार का नियम है। कुछ तो परिवर्तन हर जगह जरूरी होता है, हम अपनी जिंदगी में भी तो परिवर्तन करते हैं ना। तो बस ये परिवर्तन शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बाद में यही चेंजेस बहुत इजी और बहुत आसान और मनोरंजक हो जाते हैं। एक साथी लिखते हैं कि हैव अ नाइस सैट संडे, और गर्मी चली गई है और यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, शायद इन्होंने कहीं उत्तराखंड साइट की बातें लिखी हैं। और एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़ने पर 1978 में चौथी कक्षा में पढ़ी हुई एक कविता याद आ गई है, मैं लिख रहा हूँ। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल, रिमझिम बूंदें बरसा बादल, झमझम पानी बरसा बादल, लो घनघोर घटाएं छाई, टप टप टप टप बूंदें आई, बिजली चमक रही चमचम, बिजली चमक रही चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। वाह, क्या खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथी एक लिखते हैं कि सुहाने सफर को आज मौसम के रंगों में रंगकर आपके साथ हो चलेंगे, और कहेंगे कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, और अभी तपती गर्मी हम राजस्थान से दो बूंद पानी को सहेजते हुए, इसी फिल्म का गीत, दो बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं, कुछ बूंदें बारिश की कितनी सुखद एहसास दिलाती हैं, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, और ये सब गीत इन्हें याद आ रहे हैं, और भी इन्होंने गाने लिख भेजे हैं। तो एक साथी ने कुछ गाने लिखे हैं कि आज के शब्द हैं गर्मी ठंडी हवा धूप छांव रिमझिम बारिश कतरा कतरा पानी मौसम वगैरह वगैरह, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, और आज मौसम बड़ा बेईमान है। यकीन मानिए साथियों, गर्मी बहुत प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, और इतनी तपिश में सभी को शीतलता की जरूरत है, यानी ठंडी हवाओं की। और ये हवाएं हैं ना, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए ना, ये हवाएं ना होती तो क्या होता। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है, फटाफट उसका जवाब दीजिए। और वैसे अब जो गाना आप सुनेंगे, आप में से कुछ साथियों ने वही गाना चुना जो मैंने भी चुना, तो आइए हम ये गाना सुने, साथ साथ आप हमें सवाल का जवाब दीजिए।

ठंडी ठंडी हवा का आनंद देता ये गाना प्रिंस फिल्म से हमने लिया था लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में। और हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। बेहद खूबसूरत गाने से प्रोग्राम का शानदार आगाज हुआ। तो एक सखी ने लिखा है कि दिल तो है दिल, मैं लिख रही थी फिर रह गई क्योंकि सब्जी वाला आ गया और भूल ही गई। क्या बात है, लेकिन हमारी और आपकी पसंद मिल तो गई।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसे दिल का कोई एतबार नहीं, वैसे सुरीले सफर में कौन सा गीत आप पेश कर दें कोई नहीं कह सकता। पहला गीत ही हमारी सोच में नहीं था, तो भाई हमारी और आपकी सोच यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा गई। और हमने आपसे पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितने करीब है, तो हमारे ढेर सारे साथियों ने जवाब दिया। एक साथी लिखते हैं, जितना लबों के करीब हंसी है, जितना फूलों के करीब महक है, बस उतना ही दिल के करीब विविध भारती है।

एक साथी ने कमेंट में लिखा है कि आज के सुरीले सफर में आप आई हैं, तो भाई आज तो इस सफर का और भी मजा आएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में आप आए। सफर का अंदाज सुरीले गानों से होगा, आप गाने बहुत सुरीले और मधुर बजाने वाली हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज के इबारत के सुलझे अनसुलझे रहस्यों के बीच गानों का मजा है। विविध भारती से दिन शुरू होता है, सुबह की शुरुआत भी विविध भारती के गाने न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनता हूं। विविध भारती को कई पीढ़ी से सुना जा रहा है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मेरे दिल के इतने करीब है कि सुबह 9 बजे जब दुकान का शटर खोलता हूं और बिजली चालू करता हूं तो पहला स्विच होम थिएटर का होता है, जिसके अंदर विविध भारती रेडियो स्टेशन है जो रात को 9 बजे तक चलता है। जब दुकान का शटर बंद होता है तो आखिरी स्विच रेडियो का बंद होता है। वाह क्या बात है। वैसे साथियों, आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में जो सुरीला सफर एक कार्यक्रम है, इसमें सवाल जरूरी नहीं कि हम गीतों से या टेक्स्ट से रिलेटेड लें। सवाल कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक साथी लिखते हैं कि सबको नमस्कार करते हुए कि हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में हवा पानी का दौर चल रहा है, मौसम बहुत सुंदर है, गर्मी से बहुत राहत है। तो भाई गर्मी से राहत है तो ठंडी हवाओं का आनंद लेते रहें आप। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आज बहुत ठंडी और तेज हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, तो छाए हुए बादलों का भी आनंद लीजिए। और एक साथी लिखते हैं, भाई हवाएं ना होती तो जीना ही मुश्किल हो गया होता। तो दूसरे साथी लिख बैठे हैं कि दिल के करीब नहीं, दिल में है जी विविध भारती। और एक साथी ने लिखा है, आपके साथ सुरीला सफर की शुरुआत होने वाली है और हम सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए धन्यवाद। एक साथी ने लिखा है, पानी शब्द पर गाना होगा, पानी रे पानी रंग तेरा कैसा, शोर फिल्म का गाना। दूसरे साथी लिखते हैं कि तपती गर्मी में सावन का इंतजार, कतरा कतरा पानी की बूंदें अधूरी कहानी पूरी करती हैं। इस मौसम पर तो ये गाना एकदम फिट बैठता है, रिमझिम गिरे सावन। साथियों, रिमझिम बारिश की बूंदें, सौंधी मिट्टी की खुशबू, पहली बारिश का एहसास, सब कुछ बड़ा ही प्यारा लगता है ना। बात रिमझिम शब्द की हो तो एक गाना जो आप सभी पसंद कर रहे हैं वो जहन में आता ही आता है। ये वो गीत है साथियों जिसका फिल्मांकन, जिसके बोल, गीत, संगीत, आवाज हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देती है। तो ये गाना सुनिए और बताइए जरा इस गाने के संगीतकार का नाम।

भाई मंजिल फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज में हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देता है। आपका क्या कहना है बताइएगा। वैसे हमारे एक साथी ने लिख भी भेजा है कि चलो मेरी बनी हुई इबादत का एक गीत तो शामिल हुआ फिल्म मंजिल का, रिमझिम गिरे सावन लता दीदी की आवाज में। यहाँ हमारी और आपकी पसंद मेल खा गई। और इस गाने के लिए आप सभी ने लिखा है कि मंजिल फिल्म का गाना, अमित ताब बच्चन और मौसमी चटर्जी मरीन ड्राइव पर बारिश का आनंद लेते हुए। और एक साथी लिखते हैं, रिमझिम गिरे सावन योगेश जी का लिखा हुआ ये गाना, सावन और बारिश की बात हो और ये गाना न बजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी साथी इस गाने को लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग और एक बड़ी ही प्यारी सी इमोजी बना के भेज रहे हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कुछ इन शब्दों से होकर गुजरेगा, ठंडी हवा, रिमझिम सावन, इंतजार, पानी और मुलाकात। एक साथी ने लिखा है कि सुरीले सफर में शामिल हो रहे सबको नमस्कार भेजा है। लिखते हैं कि शुरू में ही आपको ईमानदारी से मैं कह दूं कि मेरे इम्तिहान के दिन कब के लग चुके हैं, लेकिन जब आपके इस सफर में शामिल होने जा रहा हूं तो लग रहा है कि फिर से इम्तिहान के दिन लौट चुके हैं। खैर, ये तो जरूर कहूंगा कि आपकी आज की इबारत इतनी खूबसूरत है कि उसकी इबादत करने की दिल में चाह है, और क्यों ना हो, उसमें एक तरफ तपती गर्मी है तो दूसरी तरफ ठंडी हवा है, कहीं रिमझिम सावन है तो इसी मौसम में किसी का इंतजार है। भाई बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। आगे लिखते हैं, ये इंतजार खत्म होने के बाद मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात के इस पल में मुस्कुराहट लेकर हम उससे मिलते हैं तो दिल में भी ये डर रहे कि कहीं कहानी अधूरी न रह जाए। तो कहते हैं आगे कि देखा, बातों बातों में मैंने कितना कुछ कह डाला कि सांस फूल रही है। गानों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा ब्रेक के बाद, तो चलिए फिर भी सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट और पढ़ देती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुअन के लिए तरसने लगता है, और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो।

हमारे एक साथी लिखते हैं, शुभ दोपहरिया, वेरी गुड आफ्टरनून सुरीला सफर प्रोग्राम में आज दोपहर 1 बजे तपती गर्मी में संडे की छुट्टी के दिन आपके साथ ठंडी हवा की हल्की सी छुअन का बेसब्री से हम सभी श्रोताओं को इंतजार है। तो आपका इंतजार पूरा हो गया, कार्यक्रम चालू है विविध भारती पर। एक साथी ने कुछ गाने लिख भेजे हैं जो रिलेटेड हैं आज के टेक्स्ट से। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रिमझिम गिरे सावन, ये मुलाकात एक बहाना है, अल्लाह मेघ दे पानी दे, इंतजार और अभी गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कड़ी कड़ी, कतरा कतरा पानी है, वगैरह वगैरह शब्द, और ये मेरे गीत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म थी जैसे को तैसा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म मंजिल का गीत जिसे आरडी बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया, चलो पहले तीन गीतों में ये गीत तो हमारी पसंद का आ ही गया, आगे देखते हैं कौन सा गीत हमारा चुना हुआ बचता है। और एक साथी ने लिखा है कि रिमझिम गिरे सावन इस गीत की खासियत है कि ये मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन में कर्णप्रिय है, आज के दौर में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

खाती हैं, पर आम की मीठी खुशबू से मन में ठंडक आ जाती है। गर्मी की ये तपती बेला, सिखा जाए धैर्य का खेला। बिल्कुल सच्ची बातें लिख भेजी आपने। गर्मियों से राहत के लिए हम सभी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं कि गर्मी से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन थोड़े से गीत संगीत भी तो ऐसे होते हैं जो हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं, थोड़े से सावन का एक एहसास दिलाते हैं कि हाँ अब बस सावन करीब है, बारिश करीब है ना। एक साथी लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, मुझे लगता है कि आज के शब्द सावन, तपती गर्मी और मुलाकात हो सकते हैं और इन शब्दों पर कुछ रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती सुनने से बहुत फायदा है, प्रोग्राम का आनंद लेते हुए काम करना, काम में कोई बाधा नहीं होती। और मंजिल फिल्म के गाने के लिए एक साथी लिखते हैं कि नारीमन पॉइंट के किनारे बरसात में मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन भीगते जा रहे हैं और गाना बज रहा है, बरसात पर ऐसा कोई गीत इतना रोमांटिक अभी तक नहीं बना। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बीते एक सप्ताह से हमारे बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का मौसम गीला और शीतल हो गया है। मध्य अप्रैल में जून की गर्मी का प्रवेश हो गया, अभी शीतल पूर्वी के झोंके सुरूर के लग रहे हैं। ये सच में साथियों बहुत जरूरी है, ऐसे में पानी का बचाव भी करना और जहां तक हो सके हम अपने को हाइड्रेट रखें, भरपूर पानी पी के। और वैसे भी साथियों पानी के साथ साथ अन्न हो या कोई भी चीज हो, उसका एक एक कतरा हमारे लिए कीमती होता है। कहते हैं ना कि पानी की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है और वो अमृत के समान होती है। तो चलिए अब आपका मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आने वाला है और हम उस गाने की ओर बढ़ेंगे जिसमें अभिनेत्री रेखा के बड़े ही सहज अंदाज हैं। अब बताना आपको है कि इस गाने में उनके साथ अभिनेता कौन है।

यकीनन साथियों, गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे गीत गर्मी से थोड़ी सी राहत तो दे ही देते हैं। एक साथी ने कुछ पंक्तियां लिख भेजी हैं कि गर्मी आई, धूप सुनहरी, आंगन में फैली लू की लहरी, पेड़ खड़े हैं चुपचाप जैसे ढूंढ रहे हों ठंडी पहरी, पसीने की बूंदें मोती बनकर चेहरे पर चमकती

कतरा कतरा मिलती है, आशा भोसले की आवाज में इजाजत फिल्म का ये गाना था। एक साथ ही लिखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ग्रीष्म की तपन के पश्चात आकाश में बादल छाने लगते हैं, श्वेत शाम बादलों के समूह, और ये संदेश देते हैं जन जन में प्राणों का संचार करने वाली वर्षा ऋतु के आगमन का। आकाश में छाई श्यामल घटाओं के साथ ठंडी ठंडी बयार के साथ झूमती आती है, जन जन को राहत पहुंचाती है जीवन देने वाली वर्षा की पहली फुहार। और वैसे कई जगह पर अब थोड़े थोड़े बादल छाने लगे हैं, आज मुंबई का मौसम भी थोड़ा सा बदला है। एक साथ ही लिखते हैं, हमारे प्रांत का मौसम बेहद खुशनुमा है, आज तो सुबह से बादल है और लगता है कि कब रिमझिम जेठ की दोपहरिया बरस जाए। और एक साथी ने लिखा है कि दो अमलतास के पेड़ हमारे घर के फ्रंट पोर्शन के गार्डन में हैं। अमलतास के इन पेड़ों से चाहे बाहर तपती धूप की गर्मी हो या रिमझिम बारिश, और हम उन पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, या सड़क की तरफ कोई राहगीर इन पेड़ों की छांव में रुक जाए, ठंडी हवा की हल्की छुअन का एहसास कराते हैं ये। बात तो बिल्कुल सही है साथियों की, हम चाहे एसी लगवा लें या कूलर लगवा लें, लेकिन जो आनंद, जो सुकून, जो राहत पेड़ की छांव तले मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। कहते हैं ना कि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद और कहीं नहीं मिलता, तो बस वही हाल है पेड़ की छांव का। तो लीजिए भाई, दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में से तीसरा गाना बज रहा है, क्या बात है। और सभी ने लिखा है कि कतरा कतरा गाने में नसीरुद्दीन शाह जी थे रेखा जी के साथ। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई क्या बात है, हमारी इबारत का लिखा हुआ दूसरा गीत भी शामिल, इजाजत फिल्म का रेखा जी के साथ, कर्मा फिल्म के खेरू भाई यानी कि नसीरुद्दीन शाह जी, बहुत ही शानदार नशी

दिलकश अमर आवाज आदरणीय आशा ताई की। तो एक साथी ने लिखा है, आज का सुरीला सफर का प्रोग्राम बहुत लाजवाब। और एक साथी लिखते हैं, बहुत प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी पड़ रही है, अभी आसपास मौसम खुशनुमा हो गया है गाने सुन सुनकर। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपका गुड आफ्टरनून भाई बहुत अच्छा लगता है। तो भाई आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड आफ्टरनून। एक कमेंट आया है, हमारे साथ ही लिख रहे हैं कि हमने शब्द तो सही पकड़ लिए हैं लेकिन अभी तक एक भी गीत नहीं मेरी पसंद का आया या मेरे सोचा हुआ आया। तो दूसरे साथी लिखते हैं, आपकी इबारत को लेकर मेरे मन में हजारों गीत उमड़ रहे हैं, मैं किस किस गीत का जिक्र करूं, हैरान हूं परेशान हूं, लेकिन दो गाने तो शायद आपको सुनाने ही पड़ेंगे। और इन्होंने लिखा है कि हो सके तो मेरी पसंद जरूर शामिल हो। आगे लिखते हैं हमारे दूसरे साथी कि यहां धर्मशाला में सुबह से बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ गई है, पंखों की जरूरत नहीं, सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। यकीनन साथियों, बात मौसम की हो तो हर मौसम अपने में निराला है, खास है। वैसे बारिश के रंग तो अलग ही होते हैं लेकिन प्यार का मौसम हमें हमेशा ही जवां रखता है। कभी इंतजार, कभी मिलन, कभी जुदाई, तो कभी बेईमान सा हो जाता है मौसम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाने का जिक्र कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं उस गीत की ओर।

कभी धूप कभी छांव लिए ये मौसम भी कभी कभी बेईमान हो जाता है। बहरहाल मोहम्मद रफी की आवाज लोफर फिल्म का गाना सुना आपने और आप सबको ये गाना बहुत पसंद आया। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि भाई, एक साथी लिखते हैं, लो आ गया मेरी पसंद के चुने हुए गानों का आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो एक साथी लिखते हैं, मौसम कोई भी हो, सुरीला सफ़र चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे साथी ने लिखा है, आज के सुरीले सफ़र के कार्यक्रम के गीतों से कोटा राजस्थान में भी गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है, क्या बात है। तो यही तो होता है मुलाकातों का असर। एक साथी लिखते हैं, विविध भारती मेरे बचपन का साथी, विविध भारती मेरे वर्तमान समय का साथी, और जब तक प्रभु परमेश्वर ने मुझे जितनी सांसें दी हैं, विविध भारती मेरा साथी रहेगा। एक साथी लिखते हैं कि मैं थोड़ा कोचिंग क्लास में लेती हूं, इसलिए मैं गीतमाला में नहीं जुड़ पाई। आज संडे है, पिछले रविवार शादी में गए थे और प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया है, लेकिन साथ तो है फेसबुक के जरिए। बस इस सफ़र में ना जुड़ पाऊं, मगर फेसबुक से रेडियो जुड़े रखना मैम, क्योंकि आपके प्रोग्राम से जुड़कर ऐसा लगता है हम आपके साथ ही बैठे हैं और हम रेडियो चैनल और ऑफिस में ही बैठे हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है विविध भारती के साथ जुड़ने में। वाह, तो ऐसे ही विविध भारती के साथ जुड़े रहिए। हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि अरे वाह, प्लेलिस्ट में से चौथा गीत भी बज गया, आज मौसम बड़ा बेईमान, क्या बात है। भाई हमारी आपकी तो ये जो पसंद है वो मिल गई। एक साथी लिखती हैं कि आपकी आवाज़ सुनकर, मन स्वर सुनकर मन शांत हो गया, मेरे श्रोता मित्रों की मीठी कमेंट्स मन को सुकून दे रहा है, आज मैं कुछ गुस्से में थी और अब सब ठीक हो गया है, फिर पहले की तरह आनंद लेकर गाना सुन रही हूँ, पॉजिटिव थॉट्स जीवन को जिंदगी से भर देते हैं। तो भाई गुस्सा क्यों, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुस्से को एक साइड में कीजिए और मुस्कुराते रहिए। लीजिए भाई, हमारे एक साथी ने लिखा है कि अरे वाह, मेरा कतरा कतरा पानी गीत भी मैच कर गया। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि इजाजत फिल्म का जो गीत बजा कि मेरा तीसरा गीत भी आपने शामिल कर दिया, अब स्कोर 5 गीतों पे मेरा तीसरा गीत बच गया है, क्या बात है भाई। तो दूसरे साथी ने लिखा है, गुलजार साहब ने इस गीत को एक पेंटिंग जैसा फिल्मांकन किया है। तो दूसरे साथी लिखते हैं, कतरा कतरा जिंदगी प्यासी प्यासी।

रहने दो मौसम का अद्भुत संगम लिए ये गीत सुरीला सफर को और भी सुरीला बना रहा है, और साथ ही साथियों आपके कमेंट्स भी तो इसे सुरीला बना रहे हैं। तो भाई यही तो असर है विविध भारती के साथ मुलाकातों का। तो आप तो विविध भारती के साथ रोज ही मुलाकात करते हैं, हर दिन आपका खास होता है मुलाकात का विविध भारती के साथ। वैसे आपकी जिंदगी के सुरीले सफर की कोई एक मुलाकात जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और यादगार रही हो शेयर करना चाहेंगे?

एक साथ ही लिखते हैं, विविध भारती सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। आज भी सुबह से शाम तक हमारा FM चालू रहता है। आसपास कोई नहीं है, बस विविध भारती और मैं।

एक साथी लिखते हैं कि पेड़ों की छांव का कोई मोल नहीं, कई तपस्वी भी इनकी छाया में मोक्ष पा गए। दिव्यता का स्रोत है ये पेड़, सिर्फ तन की ही नहीं मन की थकन को भी हर लेते हैं ये पेड़।

तो ये मुलाकातें विविध भारती पर यूं ही होती रहें, हम और आप हमेशा विविध भारती के साथ जुड़े रहें। ढेर सारा शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम का आज का सफर बस यहीं तक। मैं शेफाली आपसे अब लूंगी इजाजत, ढेर सारे धन्यवाद के साथ। आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को, अपने इस कार्यक्रम के सफर को और भी दिलकश खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।

नमस्कार साथियों, जिंदगी में भागदौड़ और तनाव इतना बढ़ गया है कि इस बीच हम भूल ही जाते हैं कि मुस्कुराना कितना जरूरी है। हम अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुलकर हंसना क्या होता है ये भूल ही जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि एक छोटी सी मुस्कान भी हमारे मन को हल्का कर देती है। दोस्तों के साथ की गई मस्ती, परिवार के साथ बिताए हल्के फुल्के पल और छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कोशिश कीजिए कि आप खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करें।

इस दुनिया में हर इंसान रोते हुए ही आता है, लेकिन असली मायने उस जिंदगी के हैं जो मुस्कुराते हुए जी जाएं और हंसते हुए विदा हो जाएं। जीवन में मुश्किलें, दर्द और संघर्ष तो हर किसी के हिस्से में आते हैं, पर जो इंसान हर हाल में मुस्कान बनाए रखता है वही सच में जीना जानता है। हंसी सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि जीने का नजरिया है, जो खुद को भी सुकून देता है और दूसरों के जीवन में भी उजाला भर देता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी पहचान हमारी मुस्कान से हो।

0: जिंदगी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बस कभी कभी हम उसे बहुत ज्यादा गंभीर बना देते हैं। अगर थोड़ा ठहर कर देखें तो हर दिन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें मुस्कुराने की वजह दे सकता है। कभी
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण

0: परियोजना इंदौर पीथमपुर को इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का ग्राम नैनोद जिला इंदौर में आयोजित भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्हें इस परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि
1: 17 गांवों के किसानों के द्वारा इस कॉरिडोर के माध्यम से पूरे देश में सच में 60% भागीदार कहीं नहीं बनाया, और ये जो क्षेत्र बन रहा है इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही, और ये रोड केवल पीथमपुर से इंदौर नहीं है, इंदौर से जुड़ा हुआ हमारा उज्जैन और उज्जैन से गरोड़ तक का जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ेगा।
0: आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने, विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे। प्रदेश में अब तक 6,91,000 किसानों से करीब 35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 5,462 रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। किसानों की सुविधा को देखते हुए गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई तक कर दी गई है। सरकार 2,585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलाकर कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। जबलपुर जिले में बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बरगी सिटी CSP अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में आज सुबह 2 और शव निकाले गए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की द्वितीय परीक्षा 7 मई से शुरू हो रही है। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड MP ऑनलाइन के पोर्टल www.mpbsc.mponline.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से दोपहर 3:30 बजे होगा। एक अन्य मैच में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी के बीच कहीं कहीं गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। प्रदेश में यह स्थिति 6 मई तक बनी रह सकती है। विभाग ने आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कल रात प्रशासनिक बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 62 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। बड़वानी में 9 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। लोक अदालत का डोर टू डोर एवं लीगल एड क्लिनिक में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी जिले में समस्त राजस्व अधिकारियों को उपार्जन व्यवस्था की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। इस दौरान समस्त राजस्व अधिकारियों द्वारा टोकन वितरण, बारदाने की उपलब्धता, गेहूं का परिवहन, भुगतान और गेहूं की गुणवत्ता की जानकारी ली जा रही है। वहीं आगरमालवा में यातायात जागरूकता अभियान के तहत ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए तथा किसानों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए भी जागरूक किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम

0: बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
2: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिक्काल, यानम और माहे में होगी।
2: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
3: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
4: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से गणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
5: जनादेश 2026।
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
5: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
6: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
5: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने

0: पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित 1 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
2: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने

0: के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
1: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38 लाख घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सहमत, आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस वाद्य संगीत ने संकेत दे दिया कि विविध भारती पर अब शुरू होने वाला है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

युगल स्वर शैलेंद्र की रचना को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। साथियों, जब ऐसा साथ हो दो दिलों का तो हसीन वादियां भी मुस्कुरा उठती हैं।

सूरत है भोली सी कातिल हर कदा दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने मैं तो कहता हूँ उनको खुदा।

गली से है नाजुक, फूलों से भी हंसी, मेरे यार जैसा कोई भी जमाने में नहीं। उस जैसी नाजनी, उस जैसी दिल नशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना कहीं। मेरा यार, मेरा प्यार।

लाल बंगला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गुलशन बावरा के बोल, उषा खन्ना का संगीत। साथियों, ऐसा खूबसूरत साथ जिसे देखकर कुदरत भी मुस्कुरा दे, तो फिर प्यार तो होना ही था। महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है।

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, आप सुन रहे थे श्री 420 फिल्म का गाना।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977, दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981, बसेरा।
4: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984, दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
1: 1993, फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
4: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तेरे घर के सामने फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर, हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत। और अब अगले गाने में कौन सी बात होगी? कुछ तो जादू था उसकी नज़र में, कुछ तो जादू था उसकी नज़र में, पहली ही नज़र में हम दिल हार बैठे।

अनपढ़ फिल्म का ये यादगार गीत जो आज भी सुनते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम के समापन हम एक ऐसे गाने से करेंगे जो थोड़ा सा चंचल है। मुकेश का स्वर, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुने क्या कहता है ये गीत।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओ नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। कार्यक्रम शुरू हो मन चाहे गीत, उससे पहले ये छोटा सा संदेश आपके लिए।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

साथियों, हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर आपके मनपसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। आप सभी के पत्रों का बेसब्री से इंतजार है हमें। वैसे आज है संडे, रविवार यानी छुट्टी का दिन। आप में से कुछ साथी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो कुछ मंडली में बैठकर बातचीत, तो कुछ साथी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मोबाइल या फिर ट्रांजिस्टर सिरहाने रख के बस इंतजार कर रहे होंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम का। क्यों, है ना? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये है आज का आपका अपना पहला मनचाहा गाना।

यकीन मानिए, मनचाहे गीत कार्यक्रम में भी आपके पत्रों से बहार आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश पूरी हुई, हमारे इन साथियों ने फरमाइश भेजी थी और फिल्म के नाम जो है वो था जीने की राह। मोहम्मद रफी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिवानी श्रीमाली। तो आपकी फरमाइश पूरी हुई साथियों। आज है दोबारा शुरू हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत का दूसरा दिन, तो फटाफट पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए और इंतजार कीजिए अपने पसंदीदा गीतों के शामिल होने का। बहरहाल अब हम बढ़ेंगे आज के कार्यक्रम में आपकी दूसरी पसंद की ओर, जो है गुनाहों का देवता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद किसकी, हितू रांची से हमारे श्रोता प्रवीण कुमार की।

0: पापा कहते हैं फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रही। अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: मनचाहे गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक

0: भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े रह गए, बैठिए ना।
2: मेयर साहब
1: जी, आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और मैं समझा था कि आप मुझे
3: डॉबचिंस्की, जहां तक मैं सोचता हूं ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं,
4: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा।
3: तुम ठीक कहते हो
2: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
1: नहीं, नहीं, कहिए कहिए।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अपने को इसी योग्य नहीं।
1: अरे आप कहिए तो।
2: देखिए, वो मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है, अगर आप वहाँ, देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
1: क्या बात करते हैं, मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
2: अब आपसे क्या कहूँ, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
1: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई।
5: हुजूर ने मुझे याद किया।
1: हाँ बिल्ला,
5: वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
1: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बना?
2: जी आप क्यों खामखा परेशान होते, वेटर तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे।
5: जी बहुत अच्छा।
2: हुजूर आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
1: मुआयना
2: जी?
1: आपका मतलब?
2: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है।
1: आप क्यों खुश? डॉबचिंस्की, मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को दे।
2: जी बात है, आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख दे।
1: जरूर जरूर, पर यहाँ कागज तो होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी।
1: डॉबचिंस्की ये लो,
2: चलिए।
1: आसिफ तुम मेरा सामान लेकर आ जाना।
2: हाँ, तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुजूर, आइए।
6: ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉबचिंस्की, उसकी उम्र कितनी होगी?
7: उसकी आंखें काली हैं या भूरी?
6: मारिया तू चुप रह।
8: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी,
6: ये ला मुझे तो
8: लीजिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूँ अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
6: मिश्का मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
8: लो वो लोग आ गए।
1: जी सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते
2: हैं।
1: दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
2: जी दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, और एक मैं
1: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेयर साहब। सुनिए, हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना?
3: जी जी हाँ श्रीमान,
1: लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयाँ खाली थी, मेरा मतलब है मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
3: जी बात यह है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
2: हुजूर मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है, दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
1: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है।
2: जी, जी, जी।
1: इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
4: देखा डॉबचिंस्की, इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना विद्वान आदमी।
1: मेयर साहब
2: जी,
1: आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताश वाश खेलने का शौक नहीं?
2: वाह बेटा, मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना।

0: लेकिन बच्चों मैं अभी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
1: साहब ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ।
2: बड़े लोगों के बड़े शौक।
0: अरे आओ आओ आओ इधर आओ इधर। ये मेरी पत्नी है एना और ये मेरी बेटी मारिया।
1: तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
3: ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए।
1: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
3: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा होगा।
1: क्या क्या कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन
4: जी।
1: लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है, बताइए बताइए बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो देखो देखो, इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्कोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया।
3: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि
1: नहीं
3: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
1: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
3: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास। पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो हैं। मारिया तू बीच में मत बोला कर।
1: नहीं नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं। लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है।
3: अच्छा।
1: मैडम आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
3: काश हम जा पाते।
1: मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है, क्या रखा है? हाँ हाँ हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ सिर्फ सिर्फ 700 रूबल।
4: 700 रूबल
1: मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बंद डिब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डरद डरद डरद डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिट्ठियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया
4: जी।
1: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। मैं तो जैसे घबरा गया, सोचा मना कर दूं। लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत। हाँ हाँ, जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बनाकर रहेंगे। मुझे बहुत मानते।
5: हुजूर
1: क्या हुजूर लगा रखी है, क्या कहना है
0: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
1: आराम
0: जी,
1: आराम। खैर आराम ही करते हैं। साहिबान साहिबान, खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था।
3: मैं कहती हूँ

0: आर्या, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
1: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
2: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेंचे मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है, इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
0: देखो जनरल साहब का नौकर आ रहा है। आसिफ, आसिफ
3: जी,
0: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
3: जी हाँ।
2: अच्छा आसिफ, साहब को क्या क्या बातें पसंद है, मेरा मतलब है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
0: आसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई?
2: ओ, तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं? भागो यहाँ से तुम दोनों,
0: हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं देते।
3: मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते।
2: अच्छा।
3: वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जाएं उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो।
2: ये तो होना ही चाहिए, ये तो
3: मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।
2: ये तो होना भी चाहिए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आ गई थी ना?
3: जी हाँ जी हाँ, खूब सोया।
2: अच्छा तुमने चाय वाय भी पी है?
3: जी जी।
2: खैर एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।
3: आपकी बहुत कृपा है।
2: भैया तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो।
3: अच्छा मैं जरा देखा हूँ कहीं मालिक जाग ना गए।
2: जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूँ।
4: कुछ फरमा रहे थे
5: जैसा भाई? मेरा ख्याल ये है, ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें। इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे।
2: ठीक है ठीक है।
5: स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
2: जी
5: आप इधर आ जाइए।
2: जी
5: हेल्थ अफसर साहब आप इनके पीछे, और पोस्टमास्टर तुम इस तरफ आ जाओ।
2: जी बहुत अच्छा। और हम,
5: हमारा क्या होगा?
2: हमारा क्या होगा?
5: मिस्टर बॉब डॉब आप क्यों आए हैं? आप सरकारी मुलाजिम थोड़े ही हैं।
4: जज साहब मेरा एक सुझाव है
5: जी,
4: किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए।
5: अरे भाई यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा? कहिए क्यों पोस्टमास्टर साहब?
6: एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें साहब हमारे डाकखाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है।
4: सुनिए सुनिए, ये सब तरीके गवारू हैं। सभ्य प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के बीच ही रहेगी। जज साहब पहले आप जाइए।
5: नहीं नहीं नहीं, पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब। सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है।
4: बाप रे, किसी बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं।
7: तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा है।
4: हाँ बिल्कुल जज साहब, जज साहब पहले आप ही जाइए।
5: अच्छा तो मैं ही चलता हूँ
4: जी।
2: कमबख्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई है, लेकिन आसिफ प्यारे मजा आ गया। दो चार दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी।
7: देखो तो मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है।
2: ये तुम नहीं समझोगे प्यारे।
7: अच्छा,
2: इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है।
7: अच्छा,
2: कि मैं कोई बहुत बड़ा असर
5: हूँ। तशरीफ लाइए आसिफ, तुम जाओ।
8: मैं जिसका शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ।
5: बैठे बैठे, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। सुनाइए आपका काम कैसा चल रहा है?
8: हुजूर ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था। और
5: अरे मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है?
8: नहीं नहीं नहीं हुजूर, भला मुझ जैसे छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है।
5: मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है।
8: नहीं कुछ नहीं गिरा हुजूर।
5: ये कितने सारे नोट हैं? अरे भाई आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए।
8: यह दिन हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं।
5: तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस।
8: बाद में? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमून समय खराब नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा है।
5: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं, बेचारा 400 रूबल दे गया।
4: श्रीमान मैं अंदर आने की

0: हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है।
1: मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ।
0: कहिए, हाँ आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं?
1: जी है।
0: यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह
1: जी
0: मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया और नतीजा ये कि तब से जेब में एक पैसा भी नहीं है
1: जी। हो हुजूर, अगर आप कुछ और ना समझे तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए।
0: ठीक है ठीक है, ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार
1: जी, मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा मुझे आगे दीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन साहब हैं
2: जी?
0: अरे आप खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं, अंदर आ जाइए
2: जी। मेरा नाम जिमलानी का है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था।
0: हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जिमलानी का मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
2: हो सकता है हुजूर, हो सकता है, खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास कीजिए, मैं जज, स्कूल सुपरिंटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ, जिनका न कोई ईमान है न चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार ने भर्ती कैसे
0: कर दिया। मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए, ऐसा कीजिए एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइएगा।
2: जरूर।
0: देखिए, यहाँ आते हुए रास्ते में ना जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया। अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
2: जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा, मैं फिर आपके दर्शन करूंगा।
0: जी हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
3: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंस्की हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार।
4: श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
2: जमींदार?
0: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए, आपके पास कुछ पैसे होंगे?
3: पैसे?
0: हाँ, अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
3: विश्वास कीजिए, मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
4: क्षमा कीजिए, मैं तो घर से ही नहीं आया हूँ।
0: कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूँ।
3: डॉबचिंस्की, तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 है।
4: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
3: अरे ध्यान से देखो, तुम्हारी बाई जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में नाटक।
0: अरे अरे, आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ, आप लोग यहाँ किसी काम से आए?
3: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो, उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं
4: और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
0: इसमें क्या है, मैं जरूर कह दूंगा, दो तीन बार कह दूंगा, कई बार कह दूंगा। कितने गधे हैं ये लोग, मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं, वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूं।
5: मालिक मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए।
0: उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हूँ तो लेना मत भूलना।
5: बहुत अच्छा मालिक।
0: अरे सुनाओ से
5: जी,
0: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
5: बहुत अच्छा।
0: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है।
5: बहुत अच्छा
0: अच्छा, जरा रुको जरा रुको, ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
5: बहुत अच्छा।
0: बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को। मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
5: लाइए सर।
0: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई। आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत। मिस मारिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था।
6: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर।
0: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध बुध भूल जाता हूँ।
6: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
0: क्यों नहीं, काश काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
6: प्यार? वो क्या होता है?

0: ये भी जान जाएंगी मेरे मेरे नजदीक आइए।
1: हम सीधे सादे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, मुझे जाने दीजिए।
2: मारिया तू यहाँ, ये क्या बदतमीजी है?
0: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता, मैं इन्हें जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ।
1: ओह सुन लिया मारिया, तेरी जाति और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
0: मैडम हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
3: हुजूर, हुजूर, हुजूर मेरे ऊपर दया कीजिए। शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
1: ओफो, इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना। जानते हैं साहब ने हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
0: मूर्ख कहीं की। हुजूर आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, ये तो शुरू से ही मूड मती रही
4: पर
0: है।
4: ये सच कह रही है,
0: मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ।
5: हुजूर इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं,
0: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
3: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से, इंस्पेक्टर जनरल से। ओ
5: एंटन एंटोनोविच आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
6: हुजूर गाड़ी तैयार,
0: हम अभी आते हैं।
5: क्या हुजूर यहाँ से विदा हो रहे हैं?
0: हाँ वो एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ, मेरे चाचा बीमार हैं, बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
5: ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल है हुजूर इस वक्त आपके पास पैसे कम हो।
0: नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल
5: तो सेवा में कितना पेश कर दूं?
0: आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
5: ये लीजिए एकदम नए नोट है।
0: नए नोट, नई आशा। अच्छा मैं चलता हूँ,
1: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
0: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया,
5: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
0: शुक्रिया शुक्रिया।

0: शहर के बदमाश व्यापारियों की कैसी मट्टी पलीत करता है। बेईमान कहीं के मेरी शिकायत कर रहे थे।
1: छोड़िए जी, हमें इन कबूतरों के मुंह नहीं देखना।
0: अभी
1: अब आप अपना तौर तरीका बदलिए, इन घटिया लोगों के साथ बैठना उठना छोड़िए।
0: आपको और मैडम इन्हीं को बातचीत की ओर से बहुत बहुत
2: बधाई।
3: मेरी पत्नी ने आपको बधाई देने आई है,
2: मेरे लिए हार्दिक बधाई है।
0: आश्चर्य की क्या बात है, कैप्टन चैंपियन अक्सर पहली भेंट से ही मुझसे बड़ा खुश था। उसने मुझसे नारिया का हाथ मांगा,
1: लेकिन बहुत ही तहजीब से मुझे कहने लगा, मैं तो आपके गुरु तक मुक्त हो गया हूँ मम्मी। ये तो मैंने मुझसे कहा था, नारिया बीच में नहीं बोला करते। फिर कहने लगा, अगर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो मैं इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी से गौरव मम्मी। ये तो मैंने मेरे लिए कहा था।
0: मित्रों, अब मैं आपका साथ छोड़कर पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा। शायद वहां मुझे जंगल बना दिया जाएगी, अवश्य जाएगी। बड़ा जहाज गहरे पानी में चलता हुआ ही छोड़ा देखा। भगवान ने हमारी सुन ली है, परिश्रम और ईमानदारी का फल तभी

0: लेकिन जैसे जैसे मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, लिफाफा खोल ले, लिफाफा खोल ले, नहीं खोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोल ही
1: दिया। तुमने इंस्पेक्टर जनरल की चिट्ठी खोलने की जरूरत
2: है? मेरे साथ ठीक कहते हैं।
0: लेकिन चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ कि वो इंस्पेक्टर जनरल नहीं था।
1: क्या?
0: कोई लफंगा था?
1: क्या बकते हो तुम?
0: मैं सच कह रहा हूँ मेयर साहब, आप कहें तो वो चिट्ठी पढ़कर सुना दूं। सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, प्रिय मित्र टिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ। ये मेरी बहादुरी का नया किस्सा है।
3: अरे,
0: खाली जेब होने पर भी मैं किसी तरह इस शहर में पहुंच गया। होटल का मालिक मुझसे तंग आकर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा भाग्य जाग उठा। यहाँ के भौंदू अधिकारियों ने मेरी कीमती वेशभूषा और रौब दाब देखकर मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया, और नतीजा ये कि अब मैं ठाट से मेयर की कोठी आबाद कर रहा हूँ और लोगों से पैसा समेट रहा हूँ। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे लिखा है, तुम भी यहाँ के कार्टूनों से मिल लो। एक तो मेयर साहब हैं, एकदम गधे जैसा दिमाग, शक्ल उल्लू जैसा है।
1: ये कहीं नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से पढ़ रहे हो।
0: यहाँ का हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल सर्कस का जोकर है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट के सारे शरीर से हींग की बदबू आ रही है।
4: क्या बदतमीजी है ये?
0: एक जज है, वो अव्वल दर्जे का ऊंचा लगता है।
1: क्या कहा?
0: और यहाँ के पोस्ट मास्टर भी हैं, वो साहेबान, मेरा ख्याल है आगे पढ़ना
2: पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए, आप
5: यहाँ एक पोस्ट मास्टर भी है जो सख्त बेईमान है और तुम्हारे चपरासी की तरह घटिया शराब पीता है। खैर, कुल मिलाकर ये लोग।
1: बंद करो ये बकवास।
6: मैं तो कहीं कहा नहीं रहा, वो बदमाश सारी जगह मेरी बेवकूफी की कहानी सुनाएगा, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम लोगों को किस मक्खी ने काटा था जो इंस्पेक्टर आ गया कि नारे लगा बैठे? बताओ
5: मेयर साहब, सबसे पहले बाब और डाब ने ही ये गप उड़ाई थी।
4: जी हाँ, ये बाब और डाब की ही करतूत है।
7: नहीं नहीं, भला मैं ऐसी झूठी बात कैसे कहता?
8: भगवान का नाम लीजिए, मेरी इतनी जुर्रत हो सकती?
1: तुम दोनों ठग इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से। कम वक्तों ने मुझे चौपट करके रख दिया, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से।
6: हे भगवान, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा?
1: कौन?
9: मेयर साहब हाजिर हैं।
1: क्या बात है, तुम कौन हो?
9: सरकारी हरकारा।
1: सरकारी हरकारा?
9: पीटर्सबर्ग से इंस्पेक्टर जनरल साहब अभी यहाँ पधारे हैं, होटल में रुके हैं।
1: अच्छा,
9: उन्होंने आज्ञा दी है कि आप और दूसरे सभी अफसर फौरन उनके सामने हाजिर हो जाएं।
1: क्या? इंस्पेक्टर जनरल?

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल। दूसरा और आखिरी भाग, ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम बृजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को ए मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा, यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्ण चंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इस पे बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
2: जी।
1: तो कादर खान हमारे प्ले में, मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
2: अच्छा।
1: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट पे गेल आउट के बाहर, और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा, कहते यार मुझे दो मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले लो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चलो रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया, तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतना।
2: हाईजेक हो गया प्ले।
1: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
2: हाँ।
1: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन बंदर प्ले खेला
2: जी,
1: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
2: इस बार वो ले गए,
1: ले गए लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ वाइन स्टेज पे,
2: हाँ,
1: के एम मुंशी की वाइफ
2: जी,
1: भारतीय भवन की मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
2: हाँ हाँ हाँ।
1: और 13-14 साल से 52 से कंपटीशन चलता आ रहा था या 50 से चलता आ रहा था, और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
2: बाद में फिर शुरू हुआ,
1: फिर वो उधर फिर बहुत बाद में किया, अभी किया
2: जी।
1: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया, कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
2: जी,
1: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
2: तब तक आपकी उम्र क्या थी?
1: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था, समझिए 23 साल।
2: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल
1: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात होगी। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए, जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था मनमोहन कृष्ण जी के

0: अचला सिद्धदेव के साथ इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझाए तुझा पाशी शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
1: जी।
0: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे, और प्ले ख़त्म होते उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आओ, मैं मनमोहन जी के साथ मुझे ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था, मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूँगा फिर करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी
1: आगे
0: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा धुम्मस, संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे, और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर,
1: हाँ हाँ।
0: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वह कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पड़ी कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: Yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
1: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, विश्वनाथ की सारी,
1: मतलब
0: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था 5 आने में, वहाँ पे आगे कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे, जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो 5 आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

0: एक क्रिटिक भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे, बी आर चोपड़ा जी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती शूटिंग रहो सब। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमत भी देखा ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ, और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। अचानक वो बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, अरे कब कल का बच्चा, मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा, और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले तो कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार रखकर कोने में बैठा, साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपने उस तरह सोचने लग गया, जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं, इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ समझ आई, तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया, तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे, मैंने कहा ऐसा कर ले तो, सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
1: वाह
0: यही चाहिए था,
1: क्या बात है,
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे, और एंड में लोग सब थक के सो गए, कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने हैं विदाउट आर्टिस्ट है, उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे,
1: जी जी
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना, लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे जोश वाले, तो हमने वो शॉट जैसी के पेपर लिया और वो शॉट ले लिए,
1: वाह वाह,
0: तो जैसी की अचानक आंख खुली।

0: उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो, तो ये जी हमने लिए आप देख लीजिए, पर वो तो उस वक्त तो देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया है, ऐसा घुमाया कैमरा, ये यूँ गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर, तो नीचे लोग सोए थे इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया, और ये भी ले लिया वो चीज़, उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया। और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका जो ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ में थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीज़ें देखी वो पिक्चर में लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कम्प्लीट हो गई एक महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही, और मैं चला गया अपना, अपने आप को कुछ समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम में, तो कहीं और काम करने लग गया, कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ दो चार दिन काम कर लिया, एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे, तो इतने में मैसेज आया यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
1: शबाना आजमी की माँ,
0: हाँ, और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया, मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं, तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा आप देखने आइए, तो कह रहे हैं बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, चार पांच शो के बाद आता हूँ, मैं बोला आज देख लीजिए फिर पांचवें में फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
1: जी।
0: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल राजकमल स्टूडियो आ जाओ, फिर आहिस्ता से कहा मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरेन का एक आदमी आया वो चाहता है कि फिल्म बनाऊँ यहाँ पे, नहीं नहीं बेटा तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे में आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी, वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं तीन पिक्चर बनाऊँगा, एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेहरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे।
1: ओके,
0: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप थर्ड असिस्टेंट रख लीजिए पाँचवा रख लीजिए मैं आऊँगा। तो मैं उनको फॉरेन वाले को मना कर दिया कि साहब मैं इनकी रेगुलर कंपनी शुरू हो रही है तो मुझे नौकरी मिल रही है मैं जा रहा हूँ।

0: तो जैसी तप यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए, असिस्टेंटी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर मैंने बताया आपको सच्चे वाले में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना,
1: हाँ।
0: शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सच्चे वाले में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आप। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आज़ाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं कुछ नहीं। तो अब जो मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सच्चे वाले में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैं यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना आप दे दीजिए, मैं ले लूँगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा।
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपये में, तो 30 रुपये महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में उनकी गाड़ी होती थी।
1: हाँ।
0: उनके साथ राजकमल स्टूडियो जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पालील पे आते थे, फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की। वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी का, तेरे को छोड़ के आ जाएगा, वो मुझे वहाँ छोड़ देता था, मैं आ जाता। तो इन चीज़ों में जो लिंक वाले बातें याद आती हैं याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बम्बई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना, तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक BST की स्ट्राइक हो गई थी
1: जी जी,
0: तो ट्रक वाला 4 लेता था या 8 लेते थे। और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ज्ञान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे उसमें। जैसे हम ट्रक में बैठते थे, कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे इनके, डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए, एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए हम लोग सब जो है बैठे वो। तो हम दादर सब लोग उतरते थे, वहाँ से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहाँ भाजी पाव वगैरह खाते थे, फारूक शेख अपना चला जाता था बाइक वाला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहाँ से किंग सर्कल से घर पे। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी,
0: ये पहली स्वीट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर 1 थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज़्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे

0: क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, क्लर्की करना, मैं लिखता था कंटिन्यूटी, वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसका जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे। उधर बीए जब इन्होंने इनके संग की थी, वहाँ नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है, बचपन से साथ में थे उनके,
1: हाँ हाँ,
0: तो वो यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर,
1: हाँ
0: भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश, ये सब प्रोडक्शन, वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीज़ें कर, कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यू भी लिखता था, डायलॉग भी देता था,
1: हाँ,
0: तो वो सारी चीज़ों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।

आप चाहे लग जाए गड़िया में, तेरी बाह पकड़ ली मन तुझे।

दुनिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे

अब चाहे रब रूठे या दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझ पे नियत धर ली।

0: साहब करते करते पहले ही, और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहां कर लिया था, और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा, अपने आप खाओ, ठीक है, ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लग ले, और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसने आया, उसने कहा काका नाराज हो रहा है रमेश, तू क्या कर रहा है? मैंने खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तेरे लिए खाना मंगाया उसने, डब्बा घर से आया हुआ है, वो ले गए मुझे वहाँ पर। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी,
1: हाँ।
0: सिनेमा की बातें होती थी, चीज़ों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पर जाके अंदर लेट ना हो जाऊं। और एक दिन मैं लेट हो गया तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ, सॉरी आंदाजी होगा। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना
2: हीरो हो गई,
0: हाँ, और दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी, बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ। कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोलो रमेश लिख दो वहाँ पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो, अचानक में नजर मुझे पड़ेगी बहुत लंबे लंबे डायलॉग है, कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे, तो वो मैंने लिख दिए वहाँ पे। उन्होंने कोर्ट सीन में आता था ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना की यूं क्यों गया।
1: हाँ।
0: तो ऐसा भी था। तो अलबत्ता खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की, अब मुझे यश जी ने कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो, मैं तो
2: लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपर हिट हो गई,
0: सुपर
2: बहुत चली,
0: बहुत चली,
2: गाने बहुत चले,
0: बहुत चले।
3: आज

0: साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर यश जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी, और हम दार्जिलिंग में शूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया। तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था। तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले पहले जब हम देखने जाते हैं शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वही जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज़ ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे, वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन में एक निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते ना, वो कहते हैं आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो, उस तरह के पॉइंट होते थे
1: जी जी।
0: तो वैसे ही पॉइंट मैं बोल दिया करता था। तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वो ही है, तो इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं 5 आने में पिक्चर में बहुत देखी है, ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं हूटिंग हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंस नहीं रहे हैं, ये ऐसा है, ये आपको हूट कर रहे हैं
1: जी जी।
0: तो इंटरकॉलेजेट में भी हूटिंग होती थी हम लोगों के प्लेस में,
1: बिल्कुल
0: हमको पता था। तो अलबत् एनीवेज वहाँ देवानंद साहब के साथ दोस्ती हो गई थी, देव साहब ने कहा यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूं?
1: अरे बाप रे।
0: तो जज ने कहा पूछिए रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला है सब्जेक्ट, उन्होंने बोला हुआ था पहले मुझसे बोला हुआ, पूछो, मैंने बोल दिया कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो, तो बोले ठीक है, वरना रमेश मैं बैठा हूँ। अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली, तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने, तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाएं। तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया,
1: आप थे वहां पर जब
0: मैं था,
1: नरेशन हुआ,
0: नरेशन में था मैं,
1: तो दीवार का पहला नरेशन हो रहा है,
0: पूरा नरेशन में था मैं थ्रू आउट
1: जी।
0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई, उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप क्यों रहा, लिखा बच्चे के हाथ में, मैंने 15 श्योर ऐसा बोलता था मैं, तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है। फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई, मैं यहाँ बैठा हूँ वो फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ,
1: तुम मुझे
0: कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ

0: कहाँ बैठा हूँ जी,
1: समथिंग लाइक दैट। मैंने 25 हफ्ते फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश प्लीज निरीक्षण में ये सब मत बोलो, चुप रहो, पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
0: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी जी।
1: अब साहब कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटे नहीं थी, और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे यश जी को पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे, तलवार का इंग्लिश,
0: शॉर्ट
1: शॉर्ट शॉर्ट बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करे। अब तो मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी हो गई थी वो
0: जंजीर,
1: तो अब तो मैं हीरो हिट हो गया हूँ। तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर लें, समथिंग कुछ छोटा मोटा। सलीम जावेद भी साथ में थे, हमने कहा लेकिन ये शूट ज़्यादा करता है अमिताभ बच्चन, अगर आप जंजीर देखें उस हिसाब से ये ज़्यादा शूट करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए, और इनकी डेटे भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की। शशि कपूर जो थे
0: वो तो बड़े थे, लेकिन
1: बड़े वही, उनको छोटे भाई का रोल करना था। अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे। तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं
0: जी,
1: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है। अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना, उससे बेटर रोल है कभी कभी में आपका, दोनों पिक्चर यश चोपड़ा कर रहा है, एक खुद के लिए एक गुलशन
0: रहेगी,
1: ऐसा कुछ लोग बोल देते
0: कन्विंस करने के लिए।
1: हाँ कोई बोलते सर बीज डाल रहे कोई भी गया
0: जी जी जी,
1: जो सीनियर किस्म का आदमी है जो बोलने में ऐसा ना लगे कि
0: मैसे
1: बनावटी। तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया कि भाई देखिए लेंथ वाइज वो है, पर छोट लो मैं इसका बड़ा भाई लगूँ छोटा भाई लगूंगा कहीं, वो ऐसा कर लेंगे, बालों का ये कर लेंगे उसका ये कर लेंगे, जो यश जी ने कन्विंस किया वो मान गए। ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है, इन लोगों ने भी सलीम जावेद ने कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ देंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला, तो उनको मिला
0: बिल्कुल,
1: रोल भी मिला उसमें।
2: ये भाई मैं हूँ और ये भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास माँ है।
1: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट होगी साहब।
0: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट थे?
1: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना, अभी
0: आप चीफ असिस्टेंट हो गए।
1: अब हो गया सब जगह, तो वो मैंने कहा ना पहली पिक्चर करते करते दाग में ही चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे, जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
0: तो सारी चीजें सब
1: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट रमेश तलवार।
0: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत?
1: गाने शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम ढिल्लो, दो ही गाने थे। वो कौन थे उसमें उनकी हीरोइन?
0: नीतू सिंह।
1: नीतू सिंह, बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया, तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए, क्या होता था जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए अपने
0: मंगेश देसाई री रिकॉर्डिस्ट, बहुत बड़े
1: मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट कमाल की थी
0: जी,
1: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
0: वाह वाह वाह।
1: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था, अकेले होते थे, और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और यश जी खुद बस। उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात को करते होते फौरन कहने लगे भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
0: अरे बाप रे।
1: तो यश जी ने कहा क्यों भाई? बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्मों में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
0: हाँ, वो जो आपने नरेशन के समय
1: वही क्या? तो कहने लगे नहीं बेटा वो थ्योरी वाइज ठीक है, लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है। अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने 3-4 गाने रिकॉर्ड किए, 3 गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स में होता है देवन वर्मा, गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स पर गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

0: एक जो इनका था देवन वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट दिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो इसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो यश जी ने कहा भाई वैसा है मंगेश जी, नहीं नहीं नहीं हम देखिए हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, यश जी बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज़्यादा वो सब बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात कहलवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते 25 हफ्ते 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: क्या बात है। हाँ,
0: तो मैंने कहा चलिए वो सही। हाँ। तो आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज, तो कहने लगे ठीक है हम आपकी अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से कहा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इपटा के एक्टर हैं डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी।
1: ओ,
0: कवाली के बदले कवाली मार दी। कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पांव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में वो माने भी और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी।
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना।
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: नेक वाली नहीं थे, रही
1: जी।
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा के, शुरू में रिलीज से पहले काट दिए, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार,
1: हाँ हाँ,
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, अनाउंस हुई स्क्रीन में उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से होता था। बाद में कुछ आपस में जो भी होगा, नहीं बनी पिक्चर, इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके थे।
0: मैं बन चुका था,
1: तब तक तो बसेरा
0: बसेरा आ गई थी। हाँ। बसेरा आ गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए,
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा, और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
1: हाँ।
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है ख़राब हो चुका था, ख़राब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
1: हाँ हाँ
0: भाई, जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार था
1: जी जी,
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं, इसमें डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए
1: जी जी जी।
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे? कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे, हमारे पास है ऑलरेडी जो 2 लाख 2.5 लाख रुपये ले रहे हैं, तो

0: आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख, 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 जावेद साहब के, और डायरेक्टर 2-2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी।
1: क्या गजब बात है। फिर
0: तो साहब आप सोचिए। बोले नहीं, हमको 21 अभी मिले नहीं है, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं। अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा। ये उसमें पार्टनर भी थे उसको।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था।
1: हाँ।
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए या आप खुद प्रोड्यूस भाई? तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी। लेकिन एक छत्र छाया इनकी कंपनी, ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर। तो मैंने कहा भाई मैं, मुझे 7 ही दे दीजिएगा, मैं जाता हूँ। तो बोले आपने कहीं जाना था क्या? कहा आपने मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पर, जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं? थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के, एक वन लाइनर मार के मैं भी चला गया। तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे
1: जी,
0: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे। जावेद साहब को पता था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
1: पीछे से।
0: हाँ, थोड़ी देर के बाद जब मेरे हो गया काफ़ी बाद में, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी
0: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो। मेरी बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात यह है।
1: हाँ।
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज्यादा इच्छा नहीं थी।
1: करेक्ट है।
0: और मैंने बाकी पिक्चर जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो। ये अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था
1: जी,
0: और ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा। तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे।
1: ओए
0: मुझे समझ नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा उदास था कि वो मान गए हैं, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है।
1: हाँ।
0: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
1: जी,
0: ये पिक्चर अच्छी बने, और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर भी डेटे हैं,
1: हीरोइन भी हैं,
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
1: अब
0: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान।
3: उजाले उनकी यादों के।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की अनुपम भेंट लेकर मैं आपके साथ छाया गीत के सफर में दिलों की दास्तां बयां करूंगी। बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही है, आंखों ही आंखों में इशारों की बरसात हो रही है, बातों ही बातों में मोहब्बत के सिलसिलों की शुरुआत हो रही है। उनके आने की आहट से दिल की धड़कनें बेताब हो रही हैं।

कातिल अदाएं उनकी हैं, जरा बच के रहिएगा उनसे मुलाकातों में, कहीं दिल घायल करके वो दामन न छुड़ा लें। ये सोच के तबीयत बड़ी नासाज हो रही है, हाले दिल कुछ वो कहें कुछ हम कहें तो धड़कनों को सुकून मिले।

इंतजार के इंतहा हो गई। वो आए भी मगर चिलमन के पीछे से एक झलक दिखलाकर हौले से मुस्कुराकर जाने लगे। बड़ी बेताबी थी उनके दीदार की। गनीमत इतनी हुई कि दामन उलझ कर चिलमन से लिपट गया और आंखों ने पलकों को झपकाना छोड़ दिया। काश वो पल वहीं ठहर जाता।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। इंतज़ार के आलम में कुछ ख्वाब बुने थे, हकीकत में जब उनका सामना हुआ तो उलझ कर रह गया दिल उनकी निगाहों में, आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार हो रहा है।

वो रूठे रूठे से हैं, होंठ चुप हैं, पर नजरों से मुस्कुरा रहे हैं। वल्ला क्या अदा है, सितम भी ढा रहे हैं, प्यार भी जता रहे हैं। गिले शिकवे तो बेहिसाब थे, पर एक नज़र के वार ने सारे ढा दिए। बस अब प्यार है, इजहार है, दिले बेकरार

शमा ने कहा परवाने से, मत पास आ, जल जाएगा। शमा को क्या पता जलने में क्या मजा है। जल जल के फना होना तो फितरत है परवाने की, मोहब्बत को आजमाने की, जल जल के मिट जाने की।

एक तस्वीर उभरती है आंखों में, फिर अशकों में धुंधली हो जाती है। प्यार की कशिश ऐसी है कि कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता, जिससे होता है बस उसी से होता है। चोरी, चोरी।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत FM बैंड 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। आज की सुकून भरी शाम में आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। आप सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक आप एंजॉय करें कार्यक्रम।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्रम। हेलो फ्रेंड्स,

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं
1: जी? राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं प्रेम सिंह जी आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: हम लोग भी अच्छे हैं। और बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप, परिवार में कौन है?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। मैं, मेरी पत्नी प्रियंका और 3 बच्चे हैं मेरे, कृष्णा, बिंदिया और साक्षी।
0: अच्छा, और आप रेडियो सुनते हैं?
1: जी हाँ, मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, आकाशवाणी खंडवा के भी सुनता हूँ, आकाशवाणी लखनऊ भोपाल गंगटोक के जो कार्यक्रम आते हैं ना, फोन इन प्रोग्राम
0: जी,
1: उनको सुनता हूँ, पार्टिसिपेट भी करता हूँ। और मैं आकाशवाणी खंडवा से करीबन 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, आज आपने हमें फोन किया है, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम है कुली नंबर वन और गाने के बोले दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाए।
0: सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो मैडम, मैं बजरंग चौक गांधवा से संदीप तुरले बोल रहा हूँ। मैडम
0: कहिए, कैसे हैं आप?
1: जी जी मैडम, अच्छा हूँ, आनंद मंगल।
0: और क्या कर रहे हैं आजकल फिर आप?
1: आजकल तो अभी शादियों में घूम रहे हैं मैडम। आप
0: तो शादियों में आप घूम रहे हैं, गर्मी भी बहुत है, तो किस तरीके से फिर शादियों को एंजॉय कर रहे हैं?
1: सब रिश्तेदारों में जाना पड़ता है मैडम, सगे सगे रिश्तेदारों में सभी जगह जाना पड़ता है।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप परिवार रिश्तेदारों से जुड़े हुए हैं। आप रेडियो में कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: रेडियो में तो मैं सभी कार्यक्रम सुनता हूँ। फोन करे गीत सुने आपके में एक गीत 6:30 बजे भजन आते हैं ना विद्या धर्मुले के।
0: जी
1: जी वो भजन अच्छे लगते हैं हमको, पुराने गीत सुनने में बड़ा मजा आता है।
0: आज आपने हमें फोन किया है, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी आज नगीना पिक्चर का गाना सुनना है मैडम, आजकल कुछ याद रहता नहीं।
0: आपको सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ मैडम, बद्री पटेल छोटी बोरगांव।
0: जी बद्री पटेल जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम, आप क्या बताओ मैडम?
0: हम लोग भी सब अच्छे हैं। और क्या चल रहा है फिर आजकल?
1: आजकल कहीं नहीं मैडम, घर पे गर्मी पड़ रही है, आराम कर रहे हैं। और क्या,
0: गर्मियाँ हैं तो आप खेती किसानी का कोई काम नहीं कर रहे हैं इस समय?
1: नहीं मैडम, कोई काम हो तो करते हैं, नहीं तो अभी खेती में तो अब कहीं नहीं है मैडम। अभी इसके बाद अब क्या, बारिश लगने वाली है, खेत वेत उखड़ेंगे। और क्या,
0: अच्छा वैसे गर्मियों में आप खुद की और परिवार की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं?
1: मैडम परिवार की देखभाल के, ठंडा पानी पियो, आराम करो और सब पे ध्यान रखो। और क्या, देखभाल करो। और क्या, पानी की बचत करो। और क्या,
0: ये तो सही है, पानी की बचत बहुत जरूरी है। और आप आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी मैडम, सब पूरे पूरे जो भी कार्यक्रम आते हैं सुनते हैं कि मैडम?
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: ये आपके में दिए कि ये सवेरे से कार्यक्रम आता है ना, आस्था के सर
0: जी,
1: फिर रामायण, फिर कृषि चर्चा, फिर किसान वाणी, युवानी, फिर क्या अपना ये 10 बजकर 5 मिनट पे कार्यक्रम आता है, वो निवाड़ी लोक संगीत भी सुनते हैं।
0: अच्छा, आज आपने हमें फोन किया है हेलो फ्रेंड्स में, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे दिल पिक्चर का गीत सुनना है। ये मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया।
0: जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: अनिल कौचाली, इंदौर से।
0: जी अनिल जी, बताएं कैसे हैं आप?
1: आज बहन की छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की, तो घर पर ही है।
0: अच्छा, तो आप घर पर हैं, तो फिर आज छुट्टी को कैसे बिता रहे हैं आप?
1: ये तो क्या, इंदौर में तेज गर्मी पड़ रही है, 42 डिग्री तापमान है।
0: अच्छा,
1: अभी घर के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं निकलते।
0: ये तो बहुत जरूरी भी है। और आज आपने हमें फोन किया। हेलो फ्रेंड्स, में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज हमको धर्मवीर फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाजों में, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी।
0: जी हेलो फ्रेंड्स, में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें तकनीकी सहयोग प्रदान किया रुपेश कुमार शिवपुरिया और बिशन दांगोड़े ने। वहीं आपके समक्ष इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया लक्ष्मी ठाकुर ने।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का क्रम हेलो फ्रेंड्स।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अपनी शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। हमारा आज का पहला प्रश्न था, विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? इसका उत्तर है अमेजन वर्षा वन। और हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर है चिल्का झील। दोस्तों, आज का क्रम यही संपन्न करते हैं। अपने रेडियो दोस्त लक्ष्मी ठाकुर को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे नई बातों और गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में 62 और असम में 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु स्थित

स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने आज स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे भारत के निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये मिशन वैश्विक प्रक्षेपण मंच पर भारत के उन्नत स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अग्निकांड में हुए जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं
2: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित मिशन दृष्टि को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रमुख उपलब्धि बताया। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किया भूमि पूजन। रेखा यादव को बनाया राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष। और मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई द्वारा विकसित मिशन दृष्टि के अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक प्रमुख उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापक और पूरी टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर के ग्राम नैनोद में उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन किया। कुल 2,360 करोड़ रुपए की लागत से 6 लाख नए रोजगार सृजित होंगे और 17 गांवों के किसानों का जीवन बदलेगा।
1: इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आती है तो सरकार के साथ किसान का जितना खुलकर समर्थन आना चाहिए,

0: और किसान को उस विकास में पार्टनर बनाना, भागीदार बनाना, ये जमीन में किसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। एक किसान 650 करोड़ के भागीदार, 17 गांवों के किसानों के द्वारा इस कॉरिडोर के माध्यम से पूरे देश में सच में 60% भागीदार कहीं नहीं बनाया।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में 20,000 एकड़ के लैंड बैंक के माध्यम से 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
2: देश के अंदर भी 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनके नाम भी देखो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य विकास एक्सप्रेसवे, मालवा निवाड़ एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, और वो सोलर क्षेत्र में भी लॉजिस्टिक पार्क, ई वाहन फ्रेट कॉरिडोर, बैटरी स्वैपिंग केंद्र, हाइड्रोजन इधर स्टेशन, डिजिटल सप्लाई चेन मॉनिटरिंग सिस्टम, एक के बाद एक 8 हवाई अड्डे, 6 इनलैंड कंटेनर और कनेक्टेड रेल सुविधा।
1: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज इंदौर जिले के महू में एक निजी कॉलेज में आयोजित प्लेसमेंट प्रोग्राम को में संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में 10,000 स्टार्टअप धारकों ने अपना पंजीयन कराया है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को राज्य सरकार प्रतिमाह स्टाइफंड भी दे रही है। बाहर की कंपनियों को निवेश के लिए औद्योगिक समिट के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे। जबलपुर जिले में बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बरगी बांध में गुरुवार को डूबे क्रूज में सवार लापता पर्यटकों में से 48 घंटे बाद आज सुबह 2 और शव निकाले गए। बरगी सिटी एसपी सीएसपी अंजुल अयंक मिश्र ने बताया कि जबलपुर के बरगी क्रूज सर्च अभियान अभी समाप्त हो गया है। तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया था। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने रेखा यादव को राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि पूर्व विधायक साधना स्थापक को सदस्य बनाया गया है। दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। इस संबंध में शासन ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बताया कि करीब 6 साल बाद आयोग में इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, जिससे महिला संबंधित मामलों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। रेखा यादव छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा सीट से वर्ष 2008 में विधायक रह चुकी हैं। वहीं साधना स्थापक भी राजनीति में सक्रिय रही हैं। प्रदेश में आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए राजधानी भोपाल में 33 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में करीब 14,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की सख्ती से चेकिंग हुई, उसके बाद उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे समय अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं बड़वानी जिले में 10 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कुल 3,616 विद्यार्थी शामिल हुए और गुना में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियां के अंतिम दौर में हैं। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए भी सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने भी ये भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में खंडवा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जल संरक्षण के लाखों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 2,43,000 से अधिक कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी लागत 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

अभियान में खरगोन दूसरे, डिंडोरी तीसरे, राजगढ़ चौथे और बालाघाट पांचवें स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगे और उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी के बीच गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। प्रदेश में यह स्थिति 6 मई तक बनी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इस पहल से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बच्चों में मधुमेह की देखभाल को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की द्वितीय परीक्षा 7 मई से शुरू हो रही है। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड एमपी ऑनलाइन के पोर्टल www.mpbse.mponline.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पुलिस कर्मियों को बिना तनाव के आनंदपूर्वक अपनी सेवा देने के उद्देश्य से मंत्रालय वल्लभ भवन, सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के पुलिस कर्मियों के लिए अल्प विराम प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वयं की स्वयं से बात में विशेषज्ञों ने कई टिप्स दिए। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत जौनपुर जंक्शन पर होने वाले यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल कल से 27 मई तक कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है। गुना कलेक्टर ने आज जनगणना कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर फील्ड में कार्यरत प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति का सत्यापन किया। छिंदवाड़ा शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा रात के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोके जाने के उद्देश्य से यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुनी रहा नी माड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब किसान श्रोता सुने अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

भाई बहनों को स्वागत छे। आज कार्यक्रम में फिर से आपका साथ छे, आपकी बहन मनीषा चौबे। तो स्वीकार करो हमारी, राम राम भाई बहनों। अभी गर्मी को समय छे, न इना समय गर्म हवा न हवा का साथ लू भी लगज, यानी गर्म हवा शरीर में जब लगज तो असो लगज कि चक्कर खाई ना कहीं पड़ी नहीं जावा, जी घबराज। तो हम गरम हवा से बचा वो कसा, कहीं भी जावा तो कान बांधी कन रखा, शरीर को पूरो ढाकी कन रखा, न सूती कपड़ा ज्यादा से ज्यादा पहरा ताकि गरम हवा सीधा शरीर को नहीं लगा। ई दिन में काला कपड़ा नहीं पहना, ओका में गर्मी ज्यादा लगज। पानी तो खूब पीवा, थोड़ी थोड़ी देर में मटका को पानी पीवा। फ्रिज का पानी पीने से हमारी प्यास बुझती नहीं है, तृप्ति नहीं होती। तो तृप्ति कहाँ से होएगा, पानी पी लेगा चार छः गिलास थोड़ी थोड़ी देर में पियो, लेकिन असो लगा कि हमने पानी पियो नहीं है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा हम मटका को पियो। बीज बाजार में भी पानी का लेन मटका न रांझन रखेल रह, तो ओकोज पानी हम पीवा, न पानी की बाटल साथ में रखा ताकि पानी की कमी नहीं होए। न घर से निकलते समय भी कुछ खाई का न निकला, खाली पेट नहीं रहा। भाई बहन हो, खाली पेट रहने से भी लू लगी सकज। हमारा घरेलू सबसे अच्छो आहार न प्रोटीन युक्त काई छे, सत्तू। तो सत्तू तो रोज खावा, खेत में जावा कि ब्याव में जावा, खाई का न जावा, ये नियम बने लेवा। न फिरी बात तो आपने सुनी ज होएगा कि जो खाए कांदो वो तो कदी नहीं पड़े मांदो। तो कांदा को भी उपयोग ज्यादा से ज्यादा करा खाने में। सत्तू धानी, सत्तू परमल, ये सब नाश्ता में बनाई कर न रखी लेवा, न बच्चा न क उज देवा। बाजार का डब्बा बन खानो नहीं देवा, क्योंकि गर्मी का दिन छे। गर्मी का दिन न मैं ये चीज न खराब जल्दी हो जाए, तो बाजार से अगर हम ले भी आया तो भी घर आए कभी वो खराब हो सकज। एका से हम ये डब्बा बन चीज न को उपयोग नहीं करा ई दिन न मैं। तो घर में सत्तू परमल, सेव परमल, ये चीज को ज्यादा उपयोग करा, न खुली चीज को उपयोग नहीं करा। न खास करी का ना बहन हो, बासी खानो, बासी भोजन नहीं करा, क्योंकि गर्मी में हर चीज जल्दी खराब हो जाए, क्योंकि गर्मी पड़ी भी इतनी रही, तपन का मारे हमारो घर भी तपी जाए। तो बासी भोजन से बचा, ताजो खावा न मस्त रहा। भाई बहन होन, एक खास बात अरु कि पशु पक्षी का आहार न पीना का पानी को भी हम ध्यान रखा, उनका भी दुई तीन चक्कर दिन में पानी देता रहा। न अगर पशु पक्षी घूमता रहे अगर पशु, तो जगह जगह टंकी न रखा हमारा गांव न भी कि पशु आई का न काम पानी पी सक, न वो भी प्यासा नहीं रहे। न पक्षी न कालेन तो सकोरा रखा, एक कालेन सबको जागरूक भी करा, स्वस्थ रहा। न गर्मी को सामनो, गर्मी तो गर्मी छे वो तो करनो छे, न वो भी जरूरी छे, क्योंकि गर्मी पड़नो भी तो जरूरी छे हमारी खेती का लेन। न भाई बहन होन, इन्हें चिंचलाती धूप में अगर कई भाई बहन का ऐसी आदत रहे, मतलब आदत कई एक असो रह के नाक से खून बहने की शिकायत रह, एक नक्सीर भी कहे, तो ई मौसम में शरीर में अधिक गर्मी बढ़ने से भी ये हो सकज। हम ये भी कहा कि एक नक्सीर हो गई ना, नाक में से खून आवज, तो कुछ लोग न का अधिक गर्म पदार्थ को सेवन करने से भी ये नक्सीर निपटने का उपचार भी छे, मतलब नक्सीर हो। अधिकांश न का गर्मी अगर शरीर में ज्यादा बढ़ी जाए तो नाकोली फूटज। तो एक छे आयुर्वेदिक में अनमोल उपहार त्रिफला, एक अध्ययन से ये पतो चले कि त्रिफला को सेवन रेडियोधर्मिता से भी बचावज। न प्रयोग में देखे गयो कि त्रिफला की खुराक से गामा किरण का रेडिएशन को प्रभाव से होने वाली अस्वस्थता का लक्षण भी नहीं पाया जाता है। एकालेन त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद को अनमोल उपहार कहो जाए।
यानी हम ज्यादा से ज्यादा अगर गर्मी पड़ी

तो त्रिफला चूर्ण को उपयोग करा न साथ ज प्याज का रस को भी, प्याज तो राजा छे। कान वाय दर्द होय सूजन होय तो प्याज न अलसी का रस क पकाई कन दो दो बूंद कई बार कान में डालने से आराम मिलन। यदि कोई अंग आग से जली गयो हो तो तुरंत प्याज कुटी कन उना प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। विषैला कीड़ा कन खजूरा या बिच्छू काटने पर भी प्याज क कुची करना ओको लेप लगावा। बिल्ली या कुत्ता का काटने पर भी रोगी का डॉक्टर का पास जाना तक प्याज न पुदीना का रस क तांबा का बर्तन में डाले कर न प्रभावित स्थान पर लगावना से विष उतरने लगे। नभवेन होन एक अरुचि छे ये दिन नम पसीनो बहुत आवाज वो भी जरूरी छे। पसीनों ने आवा तो गर्मी हमको एहसास नहीं हो तो हम पानी भी नहीं पीवा तो पानी भी पीता रहा न। गर्मी में एक बार पहना हुआ वस्त्र क बिना धोए अलमारी में नहीं रखा क्योंकि धुला हुआ वस्त्र क अलमारी में रखना पर जो बिना धुला हुआ रह वो फिर पसीना का कारण ओका में दुर्गंध पैदा हो न बैक्टीरिया भी सक्रिय हो जाए तो वस्त्र में दुर्गंध पैदा करने का दे तो शरीर की साफ सफाई को विशेष ख्याल रखा न इन्हें गर्मी को इस तरह से हम सामना करा। आओ अब सुनी लेवा यो निमाड़ी लोकगीत।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अब आप से पूछे लेवांश कार्यक्रम संबंधी सामान्य ज्ञान को प्रश्न। तो आज को हमारा प्रश्न छे कि नींबू को डायबेक नामक रोग भूमि में किना तत्व की कमी से होय छे। प्रश्न एक बार और सुनी लियो कि नींबू को डायबेक नामक रोग भूमि में किना तत्व की कमी से होय। एना प्रश्न को उत्तर हम कार्यक्रम का अंत में जरूर देवांगा। तब तक आप कार्यक्रम का साथ बनेल रहो। फेबेनहोन, हमारो देश एक कृषि प्रधान देश छे, जहाँ दिनों दिन बढ़ती आबादी को सीधो प्रभाव खाद्यान्न की उपलब्धता पर पड़ज। न पिछला कई वर्ष में अनाज का उत्पादन तो बढ़ो ज, पण एको सावधानी से संरक्षित नहीं करे जाने एकाम घून कीड़ा सुंडी फफूंद लगने की संभावना बढ़ी जाए। तो ये खाना न बीज योग्य नहीं रहता है। खाद्यान्न का भंडारण कालीन जो कीटनाशी प्रयोग में लाया जाए वो प्राय जहरीला होज, जेका कारण मनुष्य न अन्य जीव पर एको दुष्प्रभाव पड़ज। तो भाई बहनों, एका से हम जैविक कीट को नियंत्रण करा। वैज्ञानिक न को भी ई अभिमत छे कि प्रकृति प्रदत्त नीम वृक्ष को कीटनाशक का रूप में व्यापक पैमाना पर उपयोग में लायो जा सकज। नीम की कई विशेषता रचे, जैसा कि पौधा की अपेक्षा एकाम अन्य या शून्य मात्रा में विषाक्तता पाई जाए, जो मधुमक्खी या गैर संक्रामक कीटाणुओं का लेन उपयोगी छे। एकाम करीब 300 किस्म का प्रचलित कीट क मारनो या प्रतिबंधित करने की क्षमता छे। कायम नीम भविण हमारा भारतीय वैज्ञानिक ने 106 सी अधिक कीट पर किया गया परीक्षण में एक प्रभावकारी पायो। ई एक सरल सहज प्राप्त न रासायनिक कीटनाशक की अपेक्षा सस्तो स्रोत छे। एक घरेलू स्तर पर भी आसानी से तैयार करो जा सकज। कीटनाशक जहाँ शत्रु कीट न का साथ मित्र कीट कभी मारी देज, जेका से जैविकी असंतुलन पैदा होज, नरू कीटनाशक की मांग बढ़ी जाए, नौको दीर्घकालिक दुष्प्रभाव भी बनेल रहे। वो नीम कीटनाशक मित्र कीट पर अल्प प्रभाव डालज, न अपनो काम करने का बाद शीघ्र विघटित हुई जाए, न भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि का साथ साथ फसल में हार्मोन संतुलन भी बनाए रखज। एकाम कीट का लाखों डिम्बक का रूपांतरण प्रक्रिया का विखंडित करीकन नया रोगाणु का विकसित होने से रोकज, कीट की प्रतिरोधी क्षमता का हास करज, कीट का विकसित नौक भरण को प्रतिबंधित करने की जबरदस्त क्षमता छे। एक ही सबसे बड़ी खूबी ई छे कि ये कीट कज खाने वाला लाभदायक कीट न मनुष्य न पशु

0: पक्षीनका प्रति हानि रहित छे। फसल पौधा न भंडारित अन्न का नष्ट करने वाला कीट मुख्यतः चार प्रकार का छे। फसल का कुतरी का न नष्ट करने वाला, डंठल न फल न परागकण का रस चूसने वाला, न बीज का अंकुरित होतज ओका जड़ से नष्ट करने वाला, न भंडारित अन्न का भीतर से खोखलो करने वाला, जैसा कि दीमक, पतंग, भ्रंग, घून, टिड्डी, मक्खी, ये सब 120 तरह का कीट का नियंत्रित करने में अकेलो नीम सक्षम छे। नीम का जैविक कीटनाशक का रूप में हमें को उपयोग कर सकान। अनाज की कोठी में सूखो नीम की पत्ती का जड़े करना, एक ढक्कन बंद कर देवा, जेका से पत्ती न का धुआं से कुटला में छिपिया हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए, न अनाज फफूंदी न अन्य कीट द्वारा नष्ट होने से बची जाए, न अनाज भंडारण का समय अनाज का साथ 3-5% सूखी पत्ती न मिलाना से ओका में घुन न कीट नहीं लगता है। अनाज भंडारण कालेन उपयोग में लाया जाने वाला बोरा का नीम की पत्ती न डाली का न पानी का साथ उबाली का न उपचारित करा, फिर ओका पानी में निकाली का न छाया में सुखाड़ देवा, एकासे अनाज भंडारण करा तो कोई कीट नहीं लगता है। न दाल का भंडारण का लेन भी 10 किलोग्राम दाल का लेन 10 ग्राम नीम का तेल का दाल में अच्छी तरह से मिलाई देवा, न जब दाल का फिर से प्रयोग में लावणो हो तो का अच्छी तरह से पानी में अधिक मात्रा में उपयोग करी का धोई का न फिर वापरा, तो ऐसो हम नीम को उपयोग करी सकान जैविक नियंत्रण में। अब चलान जानकारी की तरफ, न जानी लेवान कपास फसल की जानकारी के बारे में प्रगतिशील एक जानकारी दे रहा है प्रगतिशील कृषक गोविंद भाई। आओ सुना ई भेटवार।
1: भाई बहनों राम राम। आज हम कपास की उन्नत खेती, कपास भारत का महत्व खेती के बारे में बातचीत करेंगे। कपास भारत में महत्वपूर्ण कृषि उपज में से एक है। प्राकृतिक रेशा प्रदान करने वाली कपास हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण रेशे वाली नगदी फसल है, जिसका देश की औद्योगिक व कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है। इससे कपास की फसल व सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं गोविंद भाई से। गोविंद भाई, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
2: राम राम।
1: गोविंद भाई, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप कब से खेती कर रहे हैं?
2: मैं करीबन 12 से 15 वर्ष से खेती कर रहा हूँ।
1: अच्छा, आप 12 से 15 वर्ष से खेती कर रहे हैं। और आपके पास कितने एकड़ जमीन है?
2: मेरे पास 10 एकड़ जमीन है।
1: अच्छा,
2: जिसमें मैं मुख्य रूप से 5 एकड़ में कपास की खेती करता हूँ।
1: और आप कौन कौन सी फसल लेते हो?
2: मैं कपास के अलावा सोयाबीन और मक्का दो फसलें लेता हूँ।
1: कपास की बोनी के लिए क्या क्या तैयारी करते हो पहले आप?
2: अभी जैसे हमारे खेत मार्च के एंडिंग तक खाली हो जाते हैं, वैसे ही तत्काल हम खेत की गहरी जुताई करवा देते हैं। वो करीबन 1-1.5 माह तक खेत को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं मिट्टी को धूप खाने के लिए। मिट्टी अच्छी तगड़ी धूप खाती है। उसके पश्चात हम रोटावेटर चलवा कर खेत को अच्छा समतल व साफ कर देते हैं, और फिर उसमें लांडिया खिंचवा कर उन लागियों के द्वारा खेत में पानी छोड़ते हैं और
1: मतलब पहले पानी छोड़ते हो?
2: हाँ, पहले पानी छोड़ते हैं, और पानी छोड़ने बाद जब पूरा खेत गीला हो जाता है तो उसके 3-4 दिन बाद 4x4 की दूरी से मजदूरों के द्वारा कपास की बीज रोप देते हैं।
1: अच्छा, जैसे वो अक्षय तृतीया से कपास लगाना शुरू हो जाता है। तो ये कपास की कौन सी किस्म लगाते हो आप?
2: ऐसे तो कपास की कई प्रकार की किस्में हैं। पर जैसे हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक कपास एक यूएस का है, यूएस का 4708, मोक्ष, आशा 2, फिर सुपर कास्ट, ये सब BG2 किस्म के कपास हम लगाते हैं।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई, इस तरह के किस्में हैं कपास की। ये कितने समय में पक के तैयार हो जाता है वैसे कपास?
2: ये कम से कम 3-4 माह में।
1: 3-4 माह लगते हैं इसको?
2: हाँ, 3-4 माह।
1: अब और कौन से किस्म, मतलब कौन सा जो बीज अच्छा रहता है जिससे उत्पादन अधिक मिलता है, ऐसा कुछ है क्या?
2: इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि यूएस का 4708, इसका उत्पादन भी अधिक होता है, और दूसरा इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी रहती है गुलाबी इल्ली, इसका अटैक भी बहुत।

0: अच्छा हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई कि सबसे ज्यादा अटैक हमारे यहाँ गुलाबी इल्ली का ही होता है कपास पर। तो मैं आपसे ये पूछूंगी गोविंद भाई कि गुलाबी इल्ली का अटैक जो होता है तो वो पता चल जाता है हमको कि इस पे गुलाबी इल्ली का प्रकोप हो रहा है?
1: नहीं नहीं, ये एकदम पता नहीं चल पाता है, क्योंकि ये इल्ली ऐसी अटैक करती थी जब वो उसका घेटा बन जाता है कपास का, तो बेजाने के साथ वो अंडा उसके अंदर चले जाता है और वो अंदर से उत्पादन होता है उसका। उसका पता तो आता है, इतना है कि हम किसानों को उसकी सावधानी, जब कपास पुल पर आता है उसी समय से उसकी सावधानी रखना शुरू कर देना चाहिए।
0: जैसे हाँ, कैसे?
1: उस समय क्या है कि हमको ऐसा लगता है
0: हाँ?
1: तो क्योंकि कपास में सबसे ज्यादा एक तो रस चूसक की जैसे हरा मच्छर, सफेद मच्छर
0: हाँ?
1: और उसके बाद में श्रेष्ठ काटे भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसी समय से हम लोग एक इल्ली का अंडा आता है, अंडा दवा का स्प्रे करना शुरू कर दें। मतलब जब ये कपास में जब फूल निकलते हैं
0: हाँ,
1: उस समय से अंडा नाशक हम स्प्रे करना शुरू कर देंगे तो करीबन 65% हम लोग गुलाबी इल्ली के अटैक से बच सकते हैं।
0: अच्छा, ये बात भी आपने बहुत अच्छी बताई। गोविंद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये तो खैर कीट की बात हुई, ये बात और आगे भी पूछूंगी, पर खाद और उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में आप डालते हो?
1: खाद का, गोबर खाद का ये रहता है कि हर 3 वर्ष में एक बार तो कम से कम प्रति एकड़
0: हाँ
1: 3 से 4 ट्राली डालना चाहिए
0: हाँ
1: प्रति एकड़।
0: अच्छा।
1: और रासायनिक खाद तो डालना ही पड़ती है
0: हाँ।
1: तो जैसे हम 1 एकड़ में कम से कम 1 बोरी यूरिया, डीएपी
0: हाँ।
1: हाँ। वो पोटास
0: हाँ।
1: ये तीनों एक एक बोरी लेते हैं और इसका मिश्रण करके ये फसलों में हम डालते हैं
0: हाँ।
1: प्रति एकड़।
0: अच्छा, प्रति एकड़ हाँ। ये तीनों मतलब उर्वरक डालते हैं
1: हाँ। हाँ, तीनों का मिश्रण करके।
0: अब बात आती है कि खरपतवार की समस्या भी होती है जब हम कोई सी भी फसल लगाते हैं, तो उसका नियंत्रण आप कैसे करते हो?
1: सबसे पहले तो जैसे हमको कपास लगाना है
0: हाँ।
1: तो उसके पहले हम क्या करेंगे कि खरपतवार नाशक के लिए कपास बोने से पहले एक पेंडा मशीन खरपतवार नाशक दवा आती है
0: हाँ।
1: इसका स्प्रे करते हैं हम।
0: अच्छा।
1: कपास बोने से पहले यह कम से कम 25 से 30 दिन तक चारे को उंगली नहीं देता है, ये खरपतवार उंगली नहीं देगा। इसके पश्चात जब कपास 20 से 25 दिन का हो जाता है तो इसमें पोल पे चलना आरम्भ हो जाते हैं
0: हाँ।
1: जिससे खरपतवार नियंत्रित रहता है और पौधे के आसपास मजदूरों के द्वारा उसको निंदवा दिया जाता है। और यदि ऐसा भी कभी मौका आता है कि कुल्फी चलाने का मौका नहीं मिल पाता है, बारिश की बारिश हुआ करती है, तो उस दरमियान हम लोग जो पंप आते हैं पंप के नोजल पे टोपा लगा के जो कपास के पाटले रहते हैं उन पाटलों में फिर खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं।
0: अच्छा, ये बात।
1: जिससे कपास
0: हाँ,
1: जिससे वो चारा कुछ समय के लिए बड़ा होना कम हो जाता है, उसकी वृद्धि थम जाती है।
0: अच्छा, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई कि इस तरह से भी हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं
1: हाँ।
0: अब फसल लगाइए तो कीट और रोग का भी लगते ही है, जिसको आपने बताया हाँ। कि कपास की गुलाबी इल्ली, तो इसके नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवाई का स्प्रे करते हो आप?
1: कपास में सबसे ज्यादा अटैक तो होता है रस चूसक कीटों का, जैसे ये हरे मच्छर हुए, सफेद मच्छर हुए, इनका अटैक बहुत ज्यादा होता है, तो इनके लिए हम सबसे ज्यादा मोनोकोटोफास, कॉम्फिडोर, इन दवा का उपयोग करते हैं
0: हाँ।
1: इसके बाद में फिर जिस प्रकार से उमस का जब समय आता है कपास में, उमस के समय में थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा होता है, थ्रिप्स, महुआ और तेलिया हाँ।
0: तो
1: ये चीजें क्या है कि
0: हाँ।
1: कपास को वृद्धि नहीं करने देती है, तो उसके लिए हम फिर एसिटेट और भी कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयाँ रहती है उनका
0: हाँ।
1: स्प्रे करते हैं हम लोग।
0: कितनी मात्रा लेते हो ऐसा कुछ आप बता सकते हो? हाँ। 1 एकड़ पर इतने
1: ये हमारे पंप के हिसाब से रहता है, जैसे कि हमको यदि कॉन्फिडोल छिटना है तो 20 से 25 ml
0: हाँ।
1: मोनो लेना हो तो 50 ml, तो ये दवाओं का एक विशेष माप लेके उसके हिसाब से ड्रग में तैयार करके इनका स्प्रे करते हैं। और सबसे मेन चीज हमारा जब हम कपास लगाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है
0: हाँ।
1: कि इससे गुलाबी इल्ली का अटैक नहीं हो। जैसे कपास के ऊपर फ्लावरिंग शुरू होती है, फूल
0: हाँ।
1: लगना प्रारंभ होते हैं
0: हाँ।
1: तब से हम इल्लियों के अटैक के लिए एक अंडा, इल्लिया अटैक अंडा दे देती है तो अंडों को खत्म करने के लिए
0: हाँ।
1: इल्ली मार दवा का स्प्रे करते हैं हम लोग।
0: ये बात तो आपने बहुत अच्छे से बताई और जो कीट भी लगते हैं उसके बारे में भी बताया। अब बात आती है

0: जैसे अभी हमने गर्मी में कपास लगा दिया तो भाई पानी की भी आवश्यकता रहेगी, तो आपके पास सिंचाई के साधन है क्या?
1: हालांकि हमारे क्षेत्र में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, नदियाँ हैं, नहरें हैं, कुआं भी है।
0: अच्छा, तो आपके पास सिंचाई के साधन क्या क्या है?
1: हम लोग तो हालांकि मोटर के द्वारा कुएं से भी सिंचाई करते हैं।
0: हाँ।
1: और इसके अलावा हमारे पास हम लोग इसी से अभी पाइपलाइन के द्वारा ही हम सिंचाई करते हैं।
0: अच्छा, ड्रिप का भी उपयोग करते हो क्या?
1: हाँ, ड्रिप लाइन भी है हमारे पास, और ड्रिप लाइन से सिंचाई करने में बहुत ज्यादा फायदा है।
0: अच्छा, क्या क्या फायदे हैं?
1: तो कम समय में सिंचाई हो जाती है।
0: हाँ।
1: जो आपने बताया कि खरपतवार, तो इससे खरपतवार उगने का डर बहुत कम रहता है।
0: मतलब अगर हम ड्रिप,
1: क्या है,
0: हाँ, ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो खरपतवार की समस्या बहुत कम रहती है।
1: हाँ, बहुत नहीं के बराबर होता है खरपतवार, वैसे फसल उत्पादन में बड़ा अच्छा रहता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है।
0: अच्छा,
1: ड्रिप सिस्टम से। हाँ,
0: ये बात तो बहुत अच्छी बताई आपने, मतलब ड्रिप लगाना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर हम
1: बहुत लाभकारी है।
0: और जैसे अब सिंचाई हो गई, सिंचाई के साधन आपके पास कुआं है, तालाब है पास में, नहरों से आप पानी देते रहते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन अब प्रति एकड़ उत्पादन कितना होता है?
1: उत्पादन के बारे में तो एक ही बात है कि इससे परिस्थितियाँ भी साथ देना चाहिए, मौसम ने भी साथ देना चाहिए।
0: ऐसे
1: कपास का कम से कम प्रति एकड़ छह क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है इसका।
0: कितना बीज पे?
1: एक पैकेट पे, एक पैकेट जो इसका 400 ग्राम का आता है।
0: 400 ग्राम पैकेट पर, मतलब एक एकड़ में?
1: हाँ, कम से कम
0: छह से सात क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। और मौसम और परिस्थितियाँ साथ में दे तो सही बात है, अभी भी मौसम खराब चल रहा है, अभी भी बारिश की संभावना, गर्मी इतनी होने के बाद में बारिश हो रही है।
1: वही और इसमें रहता क्या है कि भाई मौसम बहुत अच्छा रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। और घेटे वेटे अच्छे पक गए, पानी नहीं गिरा, तो ये कम से कम 10-12 क्विंटल भी उत्पादन दे सकता है।
0: अच्छा,
1: पर अभी कुछ समय से ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इन समय से मौसम खराब होने के कारण, कपास के नुकसान के कारण इसका उत्पादन अभी आधा रह गया है।
0: अच्छा। अब बात आती है गोविंद भाई की, क्या आप बीजोपचार भी करते हो?
1: हम लोग जो बीज लेके आते हैं, हालांकि वो बीजोपचार जो सीराज के लाती है, वो बीजोपचार करके ही पेटे भरी जाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो हम लोग बीजोपचार नहीं करते हैं।
0: मतलब जो दुकान से सामान, जो बीज लेके आते हैं, वो उपचारित रहता है, मतलब बीज?
1: हाँ, वो ऑलरेडी उपचारित रहता है, उसे उपचारित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: और मिट्टी परीक्षण करवाते हो आप?
1: हम लोग 3 वर्ष में एक बार मिट्टी का परीक्षण भी करवाते हैं।
0: अच्छा।
1: अलग अलग, जैसे एक एकड़ है तो एक एकड़ में अलग अलग जगह से थोड़ा खोद खोद के मिट्टी इकट्ठा करके इसको मिट्टी परीक्षण केंद्र में हम लोग भेजते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, उससे बहुत लाभ होता है हमें, किस तत्व की कमी है, क्या है।
0: अच्छा।
1: जिस तत्व की भी कमी है, उस तत्व की पूर्ति के लिए फिर हम लोग उसकी कोशिशें करते हैं।
0: अच्छा।
1: और मिट्टी परीक्षण तो हर वर्ष करवाना ही चाहिए, बहुत जरूरी है।
0: और आप हमारे किसान भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे?
1: मेरा किसान भाइयों से एक ही मेरा सुझाव है कि कोई सी भी फसल लगाए तो इसी बर्तन में बार बार इसी फसल न लगाए।
0: अच्छा।
1: अपने बर्तन को बार बार चेंज करते रहे, जैसे मैंने इस साल 5 एकड़ में कपास लगाया है, तब उसको फिर साल भर के लिए मैं भूल जाऊंगा, वहाँ पे फिर दूसरी अगले साल फिर उस कपास में लगाऊंगा मैं।
0: अच्छा।
1: जिसको बोलते हैं फसल का चक्रण, फसल का चक्रण करता रहे।
0: हाँ।
1: तो इससे उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और फायदे भी मिलेंगे। और यदि हम ऐसी किस्म की फसल बार बार लगाते हैं तो उससे हमारा उत्पादन घटता है। और मैं कपास मुख्य रूप से लगाता हूँ, तो किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि वो गुलाबी इल्ली को रोकने के लिए कपास जब भी फूल पर आए तो इल्लियों के लिए अंडे नाशक दवाई का स्प्रे आरंभ कर दे रहे, और हर 15 दिन में, कम से कम 15 दिन में दवा का स्प्रे करते रहे।
0: फ्लावरिंग पे आने के बाद में?
1: हाँ, फ्लावरिंग पे आने के बाद में।
0: अच्छा। आपने

0: गोविंद भाई हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी और हमारे किसान भाई इससे जरूर लाभ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम। राम
2: राम। अभी हम सुन रहा था ये भेंट वार्ता कपास फसल के बारे में जानकारी दे रहा था और जानकारी जो दे रहा था वो था प्रगतिशील कृषक गोविंद भाई। अब आपका आज का मौसम की जानकारी बताई देवान। तो सूर्योदय हुयो प्रातः 5:50 पर न सूर्य अस्त हुयो शाम 6:50 पर। आज का दिन को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। ये तो था मौसम की जानकारी, क्योंकि मंडी भाव तो आज इतवार छे तो मिलेगा नहीं। तो एक साथ ज अब एक सुनी लेवा मारे लोकगीत जेक गायो साधना उपाध्याय नारू साथी।

भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था यो निमाड़ी लोकगीत जेक गायो थो साधना उपाध्याय नारू साथी नना। अब कार्यक्रम को समय पूरा हुई रोज। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न पूछो थो। प्रश्न तो हमारो कि निब्बू को डायबेक नामक रोग भूमि में किना तत्व की कमी से हो जाए, तो इना प्रश्न को उत्तर छे कि निब्बू को डायबेक नामक रोग भूमि में जिंक न तांबा की कमी से हो जाए। मतलब ये जो दो तत्व छे इनकी कमी का कारण निब्बू में डायबेक नामक रोग हो जाए। अब इना प्रश्न का उत्तर का साथ आज्ञा देव आपकी बहन मनीषा चौबे का। राम राम।

ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कुछ खाना वाना खाया कि नहीं?
1: अरे भाई
2: आप इतना अच्छा इंतजाम करे और हम बिना खाए ही रह
3: जाए। शादी के दावत के नाम पर दो

0: वरना इन जनाब का तो ये हाल है कि शादी के घर में जाते हैं और फिर पलंग पे ही लाना पड़ता है।
1: भैया भैया सुनिए तो
2: क्या है, रघु इधर तो आइए।
3: अरे बाबू साहब, अरे भाई उन पेंट वाले खड़े नहीं थे, कहाँ
4: हैं? अरे रुके रहो भाई, अभी तो दूल्हा दुल्हन को देवी के मंदिर ले जाना है।
1: अरे भैया अब जल्दी इधर तो आइए।
2: क्या है रघु, तुम इतने घबराए क्यों?
1: भैया हम लोग लुट गए भैया, हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे।
2: क्या कह रहे हो, दूल्हा दुल्हन तो ठीक है ना?
1: वही तो भैया, वही तो।
2: अरे क्या वही तो, वही तो, कहीं उषा की तो कोई बात नहीं?
1: भैया आपको कैसे बताऊं, मुझे पता चला है कि दूल्हे के भेष में राकेश नहीं कोई और है।
2: क्या भक्ति हो, अरे बाप रे, अरे मैंने खुद राकेश को ट्रेन से हाथ पकड़कर उतारा था। जनवासे में सहरा बंदी शुरू होने तक मैं वहां राकेश को देखकर आया हूँ। सुधीर भी वहीं था, राकेश उसका दोस्त है।
1: सहरा वही है भैया, लेकिन दूल्हा बदल गया है। सहरे के भीतर राकेश नहीं कोई और है।
2: अरे ये तो गजब हो गया, आप तो फेरे भी हो चुके हैं। जाओ जाओ जल्दी से अपनी भाभी को भीतर वाले कमरे में बुला लाओ, मैं अभी आया।
5: हाय हाय, ये क्या गजब हो गया, किस चोरों चक्के के साथ फेरे ले ली मेरी लड़की ने।
1: कहीं ऐसा तो नहीं भैया कि ये चोरों की हरकत हो और वो दुल्हन के गहने और शादी का माल लेकर भाग जाना चाहते हैं?
5: हाय, कहीं हमारे घर डकैतों का घेरा तो नहीं पड़ गया है? हा? अरे लड़के का बाप तो वही है ना कि वो भी बदल गया।
2: कैसी बातें करते हो, राघवेंद्र जी की तबीयत ट्रेन में ही खराब हो गई, तो भी जनवासे में ही लेट गए।
5: अच्छा,
2: मैं बड़े भैया को उसके पास छोड़कर आया था, सुधीर भी वहीं रुक गया। अरे अब डॉक्टर है तो कब काम आएगा, शादी का सारा काम तो लड़के के चाचा ने किया।
5: अरे वो तो असली है ना?
2: हाँ हाँ असली है, एकदम असली। वो तो पूरे समय लड़के के साथ ही लगा हुआ था, लड़के से कुछ बोलने ही नहीं दिया उसने। मुझे कोई शक नहीं हुआ, नहीं तो देख लेता उस कभी नहीं दगाबाज को।
1: दूल्हा भी कहाँ बैठा है भाभी?
2: अरे मत कहो दूल्हा उसे, मैं अभी उसे पुलिस के हवाले।
5: अरे सुनिए तो, क्या करते हो, हमारी लड़की का क्या होगा? अरे वो तो कहीं की नहीं रहेगी।
1: लेकिन भाभी अभी दूल्हा है कहाँ?
5: अरे वो अटारी वाले कमरे में दुल्हन और उसकी सहेलियों के साथ बैठा हुआ है।
1: क्या, वही तो मैं केश बॉक्स अलमारी में रख कर आया हूँ, शादी के चांदी के बर्तन भी उसी अलमारी में रख रही
5: हूँ। हाय राम, अरे देवर जी सबसे बड़ी बात तो उषा सारे गहने पहने वही बैठी है।
1: अच्छा,
5: और लड़कियों के बदन पर भी तो कितने सारे जेवर हैं।
1: सुना है आजकल चोरों के गिरोह इसी तरह चोरियां करते हैं, एक अंदर घुसकर सारा भेद ले लेता है और फिर मौका देखकर बाकी लोगों को अंदर बुला लेता है।
5: लेकिन वो असली दूल्हा कहाँ चला गया?
1: कुछ भी कहा भैया, मैं अभी पुलिस को फोन करके आता
2: हूँ। जाओ, जाओ।
1: ना जाने कितने लोग हैं, कौन है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है भैया। भाभी तुम जाकर उषा को संभालो जरा, मैं अभी आया।
5: ठीक है।
2: ये सुधीर भी अभी तक जनवासे से नहीं लौटा, कहने को लड़की का बड़ा भाई है पर पूरी शादी में एक बार भी दिखाई नहीं दिया। क्यों मनोरमा, क्या उषा को भी दूल्हे पर शक नहीं हुआ?
5: अरे दूल्हा तो जब से आया है सहरा हटा ही नहीं रहा है, उषा की सहेलियों ने बहुत जिद की, सहरा हटाकर मुंह दिखाने कहा तो उसने कहा कि उसकी माताजी ने कसम दिलाई है। अच्छा। कि जब तक फेरों के बाद दुल्हन के साथ मंदिर जाकर देवी पूज नहीं आएगा तब तक अपने चेहरे से सहरा नहीं हटाएगा।
2: वो क्यों?
5: अरे कहता है हम अर्जुन के वंशज हैं, अर्जुन ने जब सुभद्रा का हरण किया था तो अपने चेहरे को दाढ़ी और जटाजूट में छिपाया था और देवी के मंदिर में अपनी दाढ़ी और जटाजूट देवी को अर्पण की थी। हम भी इस रीत का पालन करते हैं पर दाढ़ी की जगह सहरा रखते हैं।
2: अरे बकार है, चालबाज है। उषा क्या कर रही है?
5: अरे वो कब क्या करेगी, वो बैठी है वहाँ। और क्या
1: भैया, मैंने पुलिस को फोन कर दिया।
2: बहुत अच्छे, बहुत
1: अच्छे। पुलिस आते ही मकान को घेर लेगी, डीएसपी साहब खुद आ रहे हैं।
2: अच्छा,
1: क्योंकि एक अंतर प्रांतीय चोरों का गिरोह यहाँ आजकल आया हुआ
5: है,
1: वो लोग इसी तरह बारात में फैल जाते हैं, फिर बिजली का फ्यूज उड़ाकर शादी वाले घर को लूट लेते हैं।
2: अच्छा अच्छा, तुम लोग सब अटारी पर चलो। रघु तुम मेरी पिस्तौल निकालो, होशियारी से कमरे के बाहर से ही दूल्हे को घेरे रहना।
1: हाँ।
2: मैं डीएसपी साहब से मिलकर फौरन ऊपर आ जाऊंगा।
1: अच्छा। लड़के वालों को ये बात बता दे भैया।
2: अरे नहीं नहीं, दुश्मन को खबर हो सकती है।
5: हाँ।
2: सब काम होशियारी से और चुपचाप होना चाहिए। तुम लोग चलो चलो, मैं अभी आया।
5: हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। अरे मैंने तो मंडप के दिन सारे देवी देवता पूजे, सब विघ्न बाधाओं को मटके में बंद किया कि शादी जरा राजी खुशी से हो जाए। हे भगवान,
1: पहले तो उषा शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, अब बड़ी मुश्किल से मानी तो ये मुसीबत आ गई।
2: रघु तुम भी क्या औरतों जैसी बातें करते हो, जाओ तुम लोग कमरे के बाहर से दूल्हे पर निगरानी रखो, मैं पुलिस के आते ही ऊपर आ जाऊंगा। जाओ जाओ, चलो चलो।
6: देखो देखो मरे को कैसे हंस हंस के बात कर रहा है, लड़कियों से देखो तो जरा, सेहरे में से सब

0: गहने ताक रहा होगा, बेहया चुट्टा।
1: भाभी आप तो चुप रहो।
0: अरे देवर जी पिस्तौल अच्छे से संभाले रहना, कहीं यूं ही ना चल जाए।
2: ऐसा हुआ कि बलराम सुभद्रा का ब्याह अपने शिष्य दुर्योधन से करना चाहते थे।
3: अच्छा?
2: हाँ, और कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से। तो अर्जुन सन्यासी के वेश में रैवतक पर्वत पर आकर रहने लगे।
3: अच्छा?
2: और जब सुभद्रा वहाँ देवी की पूजा करने आई तो उसे लेके चंपत हो गए।
0: इसका भी यही इरादा है, देवी पूजने जाएगा उषा के गहने लेकर भाग जाएगा।
3: क्या हुआ जी जी?
2: अरे फिर जाते जाते अर्जुन अपनी दाढ़ी और जटाजूट देवी के चरणों में अर्पण कर गए।
3: आप भी अपनी दाढ़ी यानी कि सहरा मंदिर में छोड़ाएंगे? हाय बेचारा, इतना प्यारा सहरा।
2: कहिए तो आपके नाम पर पहनने किसी को ये सहरा।
3: ऐसे फोकट में थोड़े ही हम अपना नाम दे देंगे किसी को। उषा ने क्या यूं ही अपने नाम का सहरा बंधवा दिया आपको? जीजा जी, आप भी कहीं सन्यासी के भेष में उषा से मिल तो नहीं चुके हो? हाँ भाई, एक फकीर आजकल उषा के दरवाजे पर अक्सर देखा जाता था। कहीं वो आप ही तो नहीं थे जिया जी? ठीक मानने के
2: थी। अच्छे गाजे बाजे धूम धाम से अपने आपकी आंखों के सामने से अपनी चीज ले जाएंगे।
0: यही था वो फकीर, वो चुट्टा।
1: उफ़ो, चुभी रहो भाभी, भैया अभी तक नहीं आए।
0: हाँ।
3: महंगा ना पड़ जाए जिया जी।
2: भैया हम सौदेबाजी नहीं करते, जो लेना है ले लेते हैं। डाका डाल।
0: ये चोर नहीं, डाकू है, डाकू।
1: भैया अभी तक नहीं आए। लो भाभी टार्च संभालो, टार्च।
0: टार्च?
1: कहीं बिजली चली गई तो तुम दूल्हे पर टॉर्च की लाइट फेंकना।
0: अच्छा?
1: और मैं हैंड्स अप करूंगा।
0: अच्छा अच्छा ठीक है। ये टॉर्च तो जली नहीं रही।
1: खबरदार दूल्हे भैया, खबरदार, मेरे हाथ में पिस्तौल है और निशाने तुम पर सदा हुआ है। वहीं बैठ रहो, हिलने की कोशिश मत करना, अगर वो हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। हाँ पकड़ो, चोर चोर चोर।
0: टॉर्च जल गई।
1: टॉर्च नहीं जली, लाइट आ गई।
0: ओहो, अरे ये पिस्तौल तो हटाओ देवर जी, आप तो मुझी पर पिस्तौल ताने खड़े हो।
1: अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, दूल्हा तो वहीं बैठा है।
0: अरे अरे देखो देखो उधर देखो, वो पुलिस पीछे के बरामदे से दो डाकुओं को पकड़ कर ला रही है।
4: साहब, इन दो लोगों को हमने पीछे से पाइप के सहारे अटारी पर चढ़ते हुए पकड़ा है।
5: अरे आपका लाख लाख शुक्र हवलदार साहब, आपकी होशियारी से हम चोर पकड़ने में सफल हो गए।
0: पर ये तो अपने सुधीर है।
1: और ये राकेश असली दूल्हा।
5: हवलदार साहब, ये हमारे ही घर के लड़के हैं, आप नीचे चलिए, मैं इनसे पूछताछ कर आपको अभी बताता हूँ।
1: ठीक है।
5: क्यों सुधीर?
6: जी पापा, मैं आपको अभी सब समझा देता हूँ।
5: समझाओ नहीं, सच सच बताओ, सब कुछ बताओ।
6: पापा, अब जब शादी हो ही चुकी है तो नाराज होने से क्या फायदा।
5: अच्छा?
6: राकेश के पापा भी नाराज नहीं है। क्यों राकेश?
5: यस यस अंकल, ही इज राइट। सुधीर, शुरू से और साफ साफ बताओ।
6: बिल्कुल पापा जी, वो पापा ऐसा हुआ कि वो जो दूल्हे के डिस्गाइज में नकली दूल्हा बैठा है ना, वो असली दूल्हा ही है। यानी कि अब हो गया है, वो मेरा और राकेश का फर्स्ट फ्रेंड है।
5: यस यस, फर्स्ट फ्रेंड।
6: हम तीनों एक बार कॉलेज से पिकनिक पर गए थे।
5: यस यस, पिकनिक।
6: वहां उषा और उसके कॉलेज की लड़कियां भी आई थी।
5: फिर
6: पापा, वो ऐसा हुआ पापा कि राकेश की बात किसी और से चल रही थी।
5: जी जी, फर्स्ट ईयर से ही चल।
6: इसके फर्स्ट ईयर से नहीं पापा, लड़की के फर्स्ट ईयर से।
5: आगे बोलो।
6: जी पापा जी, वो ऐसा हुआ कि पिकनिक पर उषा और विजय, अरे वो जो नकली दूल्हा है लेकिन अब असली हो गया है, एक दूसरे को भा गए।
5: क्या क्या ये वही विजय है जिसके बारे में तुमने और उषा ने मुझसे बात की थी?
6: बिल्कुल पापा, वही विजय, वही विजय है। इसने अभी अभी मेरे ही अस्पताल में पोस्टिंग करवाई है। अब तो पापा दोनों की शादी भी हो चुकी है।
5: अरे मूर्खो नालायको, अब तुम्हारे पिताजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राकेश? और तुम्हारे चाचा, क्या वे भी षड्यंत्र में शामिल थे?
7: जी जी, नहीं तो पापा को नींद की गोलियां कौन खिलाता?
5: नींद की गोली?
7: जी हाँ, ट्रेन में ही। भला उनकी आंखों के सामने से मैं किस तरह भाग सकता था?
5: लेकिन तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी?
6: अरे पापा, बात यह है पापा कि अभी अभी हम लोग मंदिर से इसकी भी शादी करा कर आए हैं।
5: क्या?
6: जी हाँ, इसकी प्रेमिका से।
5: और उसकी सहेलियां?
6: वो सब इस बात को जानती हैं।
5: अरे हद है चालबाजी की, अब मैं तुम्हारे पिताजी को क्या समझाऊं जाकर।

0: आप परेशान ना हो अंकल, चाचा जी ने उन्हें मना लिया है।
1: उन्होंने कहा है कि अब उसी सेहरे को बांधकर राकेश इसी मंडप में अपनी दुल्हन से विधिवत फिर शादी करेगा।
2: लेकिन तुम लोग चोरों की तरह पीछे से क्यों चल रहे थे?
1: आपके डर से। हम तो चुपचाप घुसकर ये देखना चाहते थे कि विजय पर क्या गुजर रही है। हमें क्या पता था आपने पुलिस भी बुला रखी है।
2: खामोश, उस अटरिया के चोर को मेरे सामने लाओ।
3: ठाकुर साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ मजबूरी में बड़ा धोखा किया। मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ।
2: जो हुआ सो हुआ जमाई जी, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा। लाइए, अब तो ये सेहरा उतार कर अपना चेहरा दिखा दीजिए।
3: लो भाई राकेश, अपना सेहरा संभालिए। मैं तो अपना चेहरा छुपाते छुपाते परेशान हो गया।
2: चलो चलो चलो असली दूल्हे, चलो लगन मंडप में, चलो चलो।
4: अरे चलो, जो नकली

नटरिया पे चोर। अभी आपने आशा मिश्रा की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशिका थी कमला सक्सेना और ये नाटिका आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: विषय है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ये कार्यक्रम आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति है।

0: श्रोताओं नमस्कार, डगर विकास की कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में आप जानेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। श्रोताओं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM भारत में एक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम तैयार करने वाली क्रांतिकारी पहल है, जिसे 27 सितंबर सन 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल स्वास्थ्य आईडी आभा, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और स्वास्थ्य पेशेवरों की रजिस्ट्री के माध्यम से डिजिटल रूप से मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। इस मिशन का कार्यान्वयन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना पर विस्तृत बातचीत करते हुए हमारे साथ हैं जिला सलाहकार समावेशी स्वास्थ्य गुना श्री सतेंद्र शर्मा।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको ABDM अपन बोलते हैं, ये भारत सरकार की एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। इस स्वास्थ्य पहल का उद्देश्य यह है कि जो अपन इसको एक सही मायने में बात करें तो डिजिटल हेल्थ लॉकर है
0: जी,
1: जो कि प्रत्येक हितग्राही के लिए आवश्यक है। और डिजिटल हेल्थ लॉकर एक्चुअली जैसे अपन बैंक अकाउंट रहता है, ऐसे ये हेल्थ का अकाउंट है
0: जी,
1: जो कि हितग्राही जो भी व्यक्ति यूज करेगा उसको।

0: बिना उसकी एक्सेस के, मतलब बिना उसकी मर्जी के उसको ओपन कोई नहीं कर पाएगा, और उसके लिए इसलिए उपयोगी है कि उसके पुराने जो दस्तावेज हैं या वर्तमान में उसका जो इलाज चल रहा है, इन सब स्थितियों को देख के डिजिटली उस डेटा में उसको आगे भविष्य में जो भी चीजें चाहिए वो सब उसको मिलेंगे। तो एबीडीएम एक बहुत एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम है जो कि प्रत्येक हितग्राही के लिए आवश्यक।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई इसमें कि एक प्रकार से ये हेल्थ कार्ड है।
0: हेल्थ कार्ड।
1: अच्छा, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किन उद्देश्यों को लेकर ये मिशन चलाया जा रहा है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, सबके लिए क्या होता है कि डेटा रखना आसान नहीं होता। जब डिजिटली लॉकर तैयार करने का उद्देश्य ये था कि कहीं अगर अस्पताल में आप जाते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को जाके अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका आवाईडी बताएंगे आप, ठीक है? तो आवाईडी बताने के बाद अगर आपने पूर्व में कोई जांच कराई होगी, ठीक है, तो उन जांचों का रिकॉर्ड उसके पास होगा। अगर जांच है आपकी कोई औषधियां या दवाइयां चल रही हैं उसका भी पूरा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा उसको ये देखना है कि आप किसी भी देश के किसी भी कोने में जाओगे तो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, प्रत्येक हॉस्पिटल में ये लागू है। और डिजिटली अगर अपन इससे अपडेट रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट ये भी हैं कि जैसे आवाईडी आपके पास है और आप कहीं गए अस्पताल में जांच कराने, तो आपकी जांच जो होगी ना, जैसे लैब, तो लैब रिपोर्ट आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। सबसे अच्छा एक्सेस ये है
1: जी।
0: और ये भी जरूरी है कि आप जांच कराने जा रहे हो तो आभा आईडी अगर नहीं बनी है तो आप आधार कार्ड लेके जाएं और रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर हो, उस पे ओटीपी आएगा तो आभा आईडी मुश्किल से एक मिनट में बन जाता है।
1: तो क्या ये कहीं भी बनाई जा सकती है?
0: यस, इसको आप इस पे आप ऑनलाइन भी करके आभा ऐप जो होता है उसको डाउनलोड कर लेंगे, और आप अगर अस्पताल में जाते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉई हैं, जो हमारे सेवा प्रदाता हैं, जो स्वास्थ्य सेवा देते हैं, उनके माध्यम से भी आभा आईडी बहुत बनाना आसान हो जाता है
1: जी।
0: एक्चुअली पुराने रिकॉर्ड रखना आसान नहीं है, सीधा सीधा उद्देश्य यह है
1: जी,
0: आभा डीएम मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, कि सुगम, सुरक्षित, समावेशी और पारदर्शी डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना है
1: जी।
0: आपका हमें कोई डेटा देखना है तो हम ये देख सकते हैं कि पूर्व में आपको ये बीमारी थी, पूर्व में आपको ये दवाई चल रही थी, आपकी जांच रिपोर्ट में ये उल्लेखित था, तो चिकित्सकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मेरा आग्रह ये है कि आभा आईडी प्रत्येक आयु वर्ग के लिए आवश्यक है और उसको बनवाना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। और अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे गुना जिले में इस मिशन का जो कार्यान्वयन है वो किस तरह से किया जा रहा है? आभा आईडी क्या तभी बनती है जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है या कभी शिविर लगाकर भी आभा आईडी बनाई जाती है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। प्रत्येक शिविर में हमारी एक पहल रहती है, प्रत्येक शिविर में आभा आईडी का एक काउंटर रहता है, और आभा आईडी के काउंटर पे एक व्यक्ति लैपटॉप लेके बैठा है, वहां पे आप जाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे एक ओटीपी जाएगा और मुश्किल से आपको 60 सेकंड में आभा आईडी बनके तैयार हो जाएगी
1: जी।
0: अब इसमें ये है गुना जिले की स्थिति कि गुना जिले में जैसे कोई लैब में जांच करने गया, अब उसके पास आभा आईडी है तो बहुत अच्छा है, आभा आईडी अगर नहीं है तो वहां जाके अपना वो दिखाएगा आधार कार्ड, और जैसे ही आधार कार्ड दिखाएगा तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो स्वयं बना देगा
1: जी।
0: तो ये क्या है कि सुरक्षित रखो इसको, अपने पास संभाल के रखो। मैंने आपको बताया कि आपकी अगर कोई लैब की जांच हुई है, ठीक है, या लैब की जांच कराने आए हो आप, तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, तो आपकी डेटा आपके पास रिकॉर्ड में बना रहेगा, ठीक है। आपको अगर कोई बीपी या शुगर की कोई दवाइयां चल रही हैं तो उसकी स्थिति से अवगत हो जाओगे आप, चिकित्सक को बहुत आसानी से वो देखने में सही लगेगा। तो कुल मिलाकर इसका मेरा उद्देश्य ये है और सबको संचार करना है, सबको एक मैसेज देना है कि आभा आईडी प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जरूरी है, जिसका आधार कार्ड है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है
1: जी, जी।
0: क्योंकि ये आपका डिजिटल हेल्थ लॉकर है। और गुना जिले में अभी 83% इसका टारगेट हम लोग कर चुके हैं, और हमने कोशिश ये भी की है कि चाहे वो प्राइवेट लैब भी हों, वहां भी अगर जा रहे हैं तो पूर्व से ही जो व्यक्ति मोबाइल यूज कर रहा है

0: ठीक है, और हर तरह से डिजिटली हो ही गया है, तो आप स्वयं भी उसको बना सकते हैं।
1: जी, शर्मा जी, दो प्रश्न मन में उठ रहे हैं कि एक तो ये कि आपने जो बार बार बातचीत में आप लैब का जिक्र कर रहे हैं
0: जी,
1: तो लैब अर्थात क्या पैथोलॉजी है या लैब अलग ही चीज है?
0: पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल जांच
1: जी,
0: पैथोलॉजिकल जांच आपकी जो रहती है, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे लीवर से संबंधित हो, सीबीसी हो, किसी भी प्रकार की जांच हो, उन जांचों में उससे पूर्व हमें आप आईडी बहुत जरूरी होती है।
1: और दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके कोई चार्जेस लगते हैं या ये निशुल्क है?
0: निशुल्क है।
1: बहुत ही सरलता से आप हमारे श्रोताओं को बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और इस जानकारी से निश्चित रूप से हमारे श्रोता भी जो है वो प्रेरित होंगे और आभा आईडी बनाने का प्रयास करेंगे वो, क्योंकि इसको बनाने की जो सरलता आप बता रहे हैं वो निश्चित रूप से सरल है। केवल एक आधार कार्ड चाहिए और एक मोबाइल नंबर
0: जो रजिस्टर्ड हो
1: जी। और अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, प्रत्येक वर्ष क्या कोई विशेष समय अवधि है जब इस आईडी को बनाने के लिए शिविर लगाए जाते हैं?
0: जहाँ जहाँ भी हमारे शिविर की प्लानिंग होती है, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य शिविर हो, ठीक है, सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से हो, महिला बाल विकास के सहयोग से हो, जहाँ भी हमारा सेवा प्रदाता होगा वो आभा आईडी वहाँ बनाएगा
1: जी,
0: क्योंकि वो सबके लिए जरूरी है और बहुत इजी गोइंग है, वो बनाने में आसान है। तो जो भी हेल्थ काउंटर होगा जहां हम स्वास्थ्य सेवाएं देंगे किसी को, वहां आभा आईडी भी बनेगी
1: जी,
0: ये सबके लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: पूर्व में एक यहां पे महाविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था, तो वहां बहुत छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे, तो हमने वहां डेमो करके उस स्थिति को बताया था कि प्रत्येक छात्र के पास मोबाइल है रजिस्टर्ड, ठीक है, तो स्वयं आप बनाओ और लोगों को प्रेरित करो
1: जी।
0: तो इस तरह से हमारे जैसे महाविद्यालय में कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, स्कूली छात्र हैं जिनके पास मोबाइल है, ठीक है, उनके माध्यम से कुल मिलाकर यह है कि हम यहाँ युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी आवश्यक है और सबके लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो घर जाकर अगर जिनकी नहीं बनी है तो अपने माता पिता को भी प्रेरित कर सकते हैं कि आपको भी आभा आईडी बनाना है
1: जी। जी, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, इस तरह से जो आप युवाओं को प्रोत्साहित करके आभा आईडी बनवा रहे हैं।
0: जो डिजिटल मिशन है इसके चार कॉम्पोनेंट है, चार घटक है इसके, ABDM जैसे आपका डिजिटल मिशन हो गया, ऐसे ही आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें 5 लाख तक का जो इलाज है, ठीक है, ऐसे ही हमारे जिले में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और चौथा हमारा जो है PM अभिम। तो इन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर स्वास्थ्य सेवाएं दी गई, डिजिटल मिशन में हेल्थ लॉकर जो रहा, और 5 लाख तक का उसका जो इलाज है उसकी पात्रता है, इन सब के माध्यम से ही हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि सभी का डेटा एकत्रित हो जाए। यदि उसको 5 लाख तक के इलाज की पात्रता है, उसके पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है तो भी आपको आभा आईडी बनाना है
1: जी।
0: तो ये मेरा उद्देश्य है कि इस घटक के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें प्रत्येक हितग्राही के लिए आभा आईडी बहुत आवश्यक है।
1: शर्मा जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि आभा की जो आईडी है उसमें आपने बता दिया कि 80% से ऊपर काम हो चुका है, और क्या आभा आईडी बनाने के लिए भी आप कुछ जागरूकता अभियान चलाते हैं?
0: जी बिल्कुल, जागरूकता अभियान जैसे आपके माध्यम से ही एक जागरूकता है, लोग सुन रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यह है कि आपको जो स्वास्थ्य सेवाएं लेना है उसके लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो हमारे जिले में है उन तक आप अप्रोच करें, वहां तक जाएं। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, ठीक है, हमारे ANM हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आभा आईडी बनाने की सुविधा है।
1: श्रोताओं, हमने कुछ लाभान्वितों से बातचीत की।
2: मेरा नाम नवीन धाकड़ है, मैं सोनी कॉलोनी में निवास करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ उपचार के लिए मैं गया था, तो मैं पैथोलॉजी लैब में गया, वहाँ मुझे पता चला जहाँ आभा आईडी बनाई जा रही थी, आभा आईडी 14 नंबर की होती है। उन मैंने पूछा जी आभा आईडी क्यों जरूरी है, उन्होंने बताया कि आभा आईडी हमारे जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एक सिक्योरिटी के लिए बनाई जाती है। तो मैंने भी आभा आईडी बनवाई, वहाँ पे आधार कार्ड दिया और जस्ट मिनटों में मेरे आभा आईडी बन के तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने भी आभा आईडी के थ्रू कुछ टेस्ट करवाए, जो मैंने टेस्ट करवाए हैं वे एकदम सिक्योर है, मैं कहीं भी 14 नंबर

0: नंबर का आवा नंबर दर्ज करवा के जो मैंने जो टेस्ट करवाए हैं उसकी रिपोर्ट हम प्राप्त कर सकते हैं।
1: मेरा नाम सूरज सिंह धाकड़ है, मैं गुना बंदर नगर में निवास करता हूँ। मैं अपने हेल्थ चेकअप के लिए जिला अस्पताल गया हुआ था, वहाँ मुझे पता चला कि कोई आभा आईडी बन रही है, तो उसके बारे में मैंने कुछ जानकारी ली, तो वहाँ से पता चला कि वो एक 14 डिजिट का नंबर है जो कि आपका एक डिजिटल लॉकर रहेगा जिसमें आपकी सारी मेडिकल्स रिपोर्ट्स दर्ज रहेंगी, जिससे आप जहाँ भी कहीं भी जाएंगे देश प्रदेश में तो आपको उसकी फाइल्स संभालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, तो मैंने जब आवा आईडी बनवाई अपनी उसमें जस्ट मिनट समय लगा होगा बनवाने में, और उसको बनवाने के बाद मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि अब मुझे अपनी जो है फाइल्स संभालने की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अब।
2: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखना है। मरीज अपनी सहमति से अपने डिजिटल रिकॉर्ड को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकते हैं। यह मिशन टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देता है जिससे डॉक्टर मरीजों के रिकॉर्ड तक सरलता से पहुँच सकते हैं। आभा आईडी बनवाने पर पुराने मेडिकल रिकॉर्ड खोने का डर खत्म होता है। सभी रिपोर्ट डिजिटल रूप से सुरक्षित रहती हैं। रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित और यूजर की सहमति पर आधारित होता है। तो मित्रों, डगर विकास की कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे डगर विकास की।
3: मेरे गानों का
2: स्वर था हरिशंकर शिवहरी का, प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल।

0: ये था कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मधुबन
1: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

सुनिधि चौहान की आवाज में धूम टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा था, प्रीतम का संगीत था। अक्सर फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं, हिमेश रेशमिया की आवाज है। समीर के बोल हैं हिमेश रेशमिया का संगीत।

समीर का लिखा गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की आवाज में। संगीतकार हिमेश रेशमिया थे और गीत समीर ने लिखा था। फिल्म का नाम था अक्सर। यह है मलाल फिल्म का गीत।

मलयाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। ऋत्विक तलाशिलकर की आवाज थी, प्रशांत धिंगोले ने इसे लिखा था और संजय लीला भंसाली का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले

0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
3: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
4: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
5: जनादेश 2026।
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
5: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
6: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
5: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
7: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में

0: 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिलाजुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य

0: परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का

सुमन कल्याणपुर की आवाज में पारस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना इंदिवर की थी, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों आपको याद दिला दें कि हमारा अगला कार्यक्रम 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री नरगिस पर, सुनिएगा जरूर। और अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसे हमने खानदान फिल्म से लिया है, लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

साथियों, अभी जो गीत आप सुन रहे थे ये कन्यादान फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज थी और इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और तर्स बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये है मेरे महबूब फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शकील बदायनी के बोल हैं और नौशाद की तर्स।

इंसान जाग उठा, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजें हैं, बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और धुन एसटी बर्मन ने बनाई है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू हुई।

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

इज्जत का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे।

इस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रहीं दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन, जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।
1: अरे तू

तड़पे तड़पे मेरी जवानी, प्यार

गया है भरू पागलों की तरह, जाने फिर क्यों फिर क्यों, जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन

0: प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी, अरे फैशन की

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी कहानी।

0: हमारी।
1: चाय गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भरभरा कर हो जाता है ठुस।

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

0: या फर्श पे छत।
1: प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले। आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले। हो कैसी भी राहें प्यार करने वाले हार क्यों माने। वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: जाना क्यों।
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
2: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
0: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
0: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
0: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
0: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: जाए रात। सुनिए
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरला में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब

अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।